मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948, श्रावण मास की पहली तिथि अर्थात 23 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः की 5:56:46 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सेया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। इस कोबजे में आकाशवाणी संवाददाता सुभश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संवेद सुर में गाए इस देश गान के साथ।

जिसके सर पर साईं का हाथ हो उसकी जिंदगी में कभी कोई पीड़ा नहीं रहती, ऐसी रहमत है मेरे साईं की। आइए जगत गुरु श्री शिरडी के साईं बाबा को नमन करते हैं।

नदी का पानी जिस प्रकार बहता रहता है और उसमें उपस्थित कचरा किनारों पर आ जाता है, ठीक उसी तरह यदि हम नेक काम करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे अंदर उपस्थित सारी बुराइयां एक दिन हमसे दूर चली जाएंगी।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे हरिओम शरण, मुकेश और प्रीति सागर के। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: एक बार अंधकार ने संसार बनाने वाले ब्रह्मा से ये शिकायत की कि आपने जितना देश और काल मुझे रहने के लिए दिया वो सब प्रकाश मुझसे बराबर छीन लेता है। ब्रह्मा ने प्रकाश से जवाब तलब किया, ऐसा क्यों करते हो भाई, सबको अपने अपने स्थान पर रहने दो। प्रकाश ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मेरी तो उससे कोई शत्रुता नहीं, सच पूछिए तो आज तक मेरी उसकी कभी भेंट ही नहीं हुई, पता नहीं कहाँ वो रहता है। ब्रह्मा जी हंस पड़े। अंधकार को सहज फैलने और प्रकाश को परिश्रम से उदय होने का फैसला देकर मामले की छुट्टी कर दी। अंधकार की तो बन आई, जहां चाहे जब चाहे फैल जाए। प्रकाश के आने में तो देर लगती ही है। किए जाओ प्रार्थना तमसोमा ज्योतिर्गमे, लेकिन इतना कह देने से ही प्रकाश में बिजली कहाँ से आ जाएगी। उस महाकाय अंधकार को मिटाने के लिए भागीरथी का आह्वान करना होगा। बड़े बड़े बांध बनेंगे, फिर वो धारा उसके भीतर से अपनी पूरी गतिमयता के साथ निकलेगी, तब चक्का घूमेगा, तब बिजली बनेगी और तब प्रकाश बनेगा। अक्सर आए दिन आप देखते हैं कि बिजली गायब हो जाती है, घुप अंधेरा छा जाता है। जल्दी जल्दी मोमबत्ती ढूंढते हैं, लालटेनें जलाते हैं, जलाते हैं, कुछ तो अंधेरा हटे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपने जनरेटर सेट हैं। बिजली गई तो उन्होंने अपने जनरेटर चला दिए। उन्हें अपना काम सुचारू रूप से करने में कोई परेशानी नहीं होती। शायद इस बात को हम मन ही मन में समझ रहे हैं कि अगर अंधेरे को भगाना है, यदि हमको उस शक्ति की जरूरत है जो अंधेरे को खत्म कर दे, तो हमें वो बिजली अपने आप पैदा करनी होगी। ये बिजली कैसे पैदा हो? ये बिजली पैदा होती है अपने आचरण से। हम जो कहते हैं उसे हमारे आचरण ऊर्जा से मंडित कर देते हैं, तब उन शब्दों में हमारे आचरण की ऊर्जा भर जाती है। वे शब्द जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ प्रकाश अपने आप पीछे पीछे चलता है। एक बार वो बिजली हमने अपने भीतर ही जगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो आपको अपने भीतर ही वो भागीरथ दिखाई देंगे जो कठिन तप से

गंगा को अपने लिए सुलभ कर रहे होते हैं। आप ही अपने भीतर मर्यादाओं के वे बांध बना रहे होते हैं जिनसे गुजरकर वो भागीरथी अनंत ऊर्जा का निर्माण कर रही होती है। वो आपकी अपनी बिजली है, आपकी अपनी विद्युत शक्ति है। आप उसके एकमात्र स्वामी हैं। आप उसके जरिए बल्ब जलाकर रोशनी कर सकते हैं, आप प्रेस चला सकते हैं, आप लिफ्ट से ऊपर कई मंजिलें चढ़ सकते हैं, आप आसमान तक उड़ सकते हैं। आप किसी के मोहताज नहीं हैं। आप समर्थ हैं तो आपको बराबर ये ध्यान बना रहेगा कि इस शक्ति का कहीं भी दुरुपयोग ना हो। आपने जो कुछ अर्जित किया है वो केवल लोक मंगल के लिए है। यही है उस विद्युत शक्ति की सार्थकता। भारतीय संतों की लंबी परंपरा ने भगवान का नाम बारंबार लेने और पर दुख कातरता से इस प्रकार की शक्ति के शीघ्र ही उत्पन्न होने का प्रमाण दिया है। वे जो दूसरे के दुख में दुखी होते हैं उन्हें इस बिजली का साक्षात्कार जल्दी ही होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में अर्थात सुबह 6:35 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं ए हरिहरन। खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 6:45 पर डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक है मुर्गी पालन में ध्यान देने योग्य बातें।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर जानिएगा बहु औषधीय प्रतिरोधक क्षय रोग के विषय में जानकारी देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप शर्मा। रघुवीर सिंह चाहर के सुर में आज सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम। प्रसारण समय सुबह 9:45। संगीतकार हिमेश रेशमिया पर केंद्रित है कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसे प्रसारित किया जाएगा दिन में 11 बजे। भारतीय प्रसारण दिवस पर आधारित है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। समय दिन में 11:30। दोपहर 1:15 पर घर संसार कार्यक्रम में चर्चा होगी रेडियो संवाद संवेदना और सशक्तिकरण पर। ज्ञान विज्ञान होम डेकोर रिश्ते नातों के साथ आकांक्षा गुप्ता की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक है सामाजिक उत्थान की पहली सीढ़ी है सशक्त नारी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज दोपहर 1:45 पर नश्र की जाएंगी गजलें। गायक कलाकार हैं परवेज मेहंदी। दोपहर 3:30 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जिसमें बात होगी फैटी लीवर की समस्या कारण लक्षण और निदान पर। साथ ही 4 बजे सुनेगा हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

सायकालीन सभा में शाम 5:30 पर चर्चा का विषय है पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिककरण योजना। क्वेस्ट वर्ल्ड में बात होगी एआई पावर्ड टूल्स की। हेल्थ प्लस में जानने का हार्मोनल इम्बैलेंस की बढ़ती समस्या के विषय में, साथ ही सुनेगा कविता दीयुपा की वार्ता, शीर्षक है एक निर्भय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। ग्राम्य लोक कार्यक्रम में शाम 6:00 डॉक्टर छोटे सिंह की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक है पशुओं की घातक बीमारियां कारण और निदान, नई खोज मंडी भाव मौसम के साथ आनंद लीजिएगा लोक गीतों का। शाम 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में चर्चा होगी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, हमारी क्रांतिकारी और मेरा देश मेरी शान पर, साथ ही सुनेगा आज का प्रश्न, ज्ञान सागर सेहत टिप्स और आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में डॉक्टर श्रुति सिन्हा की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक है रेडियो से डिजिटल होती भारतीय प्रसारण की प्रेरक यात्रा। शाम 7:31 पर प्रस्तुत की जाएगी विशेष परिचर्चा, साथ ही रात 10:00 सुनेगा संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा वायलिन वादन, कलाकार हैं शंभू दयाल श्रीवास्तव। तो ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान, गायक कलाकार हैं ए हरिहरन।

सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री राम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्री राम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

0: अभी आप सुन रही थी श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थी ए हरिहरन, संगीत सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह की वार्ता। शीर्षक है मुर्गी पालन में ध्यान देने योग्य बातें।
1: किसान व मुर्गी पालक भाइयों, हमारे देश में व्यापारिक दृष्टि से मांस और अंडों के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने के कारण देश में मुर्गी पालन से हर वर्ष करोड़ों रुपए की आय होती है। इस धंधे में 50 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। देश की सकल राष्ट्रीय आय का 1% हिस्सा मुर्गी पालन से ही आता है। देश का अंडा उत्पादन में 6वां तथा मुर्गी मांस के उत्पादन में 22वां विश्व में स्थान है। परंतु इसके बावजूद इसे काफी हद तक बढ़ाए जाने की गुंजाइश विद्यमान है। यदि ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में किसान व बेरोजगार युवा उचित वैज्ञानिक परामर्श के साथ मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करें तो निश्चित तौर पर आर्थिक लाभ कमाकर आजीविका चला सकते हैं। मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करने से पहले ये भली भांति सुनिश्चित कर लें कि उन्हें अंडा उत्पादन लेना है या फिर मांस हेतु ब्रॉयलर का उत्पादन। इन दोनों में से जो भी उद्देश्य लेकर मुर्गी पालन शुरू करें, इनकी बिक्री व खपत हेतु स्थानीय बाजार की स्थिति का भी पूर्ण आकलन कर लेना चाहिए, जिससे माल तैयार होने पर तत्काल बेचा जा सके। इसके बाद ही निर्धारित करें कि उन्हें अंडा या मांस हेतु मुर्गी पालन शुरू करना है। इसके बाद मुर्गी पालन में मुर्गी पंछियों की नस्ल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके लिए उन्नत या संकर नस्ल के ही पंछी पालने चाहिए। उन्नत या संकर पंछी अधिक उत्पादन देने की नैसर्गिक क्षमता रखते हैं। जहां संकर नस्ल की मुर्गियों से प्रति वर्ष हमें 260 से 280 अंडे मिलते हैं, वहीं देसी मुर्गियों से केवल 60 से 140 तक ही अंडे मिल पाते हैं। संकर नस्ल के ब्रायलर पंछी भी 8 सप्ताह से कम समय में बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से संकर पंछियों से न केवल अधिक उत्पादन मिलता है बल्कि वह कम खर्चीला भी होता है। परिणाम स्वरूप मुर्गी पालकों को अधिक आर्थिक लाभ होता है। मुर्गी पालन में सफलता के लिए अच्छी आवास व्यवस्था का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इसके लिए आवास ऐसा होना चाहिए जिसमें

मुर्गियों की चोरी व अन्य पशु पंछियों से पूर्ण सुरक्षा हो। मुर्गियों के घर पर अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर आरामदेह और टिकाऊ होना चाहिए। आवास में हवा का, सूर्य का प्रकाश आने की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए, लेकिन तेज हवा के झोंकों से बचाव होना आवश्यक है, खासकर सर्दी के मौसम में। आवास बहुत नीची व नम भूमि पर न बनाकर ऊंची व सूखी भूमि पर होना चाहिए। आग से बचाव हेतु आवास आबादी क्षेत्र से जरा हटकर बनाएं, पर ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। आवास के लिए जगह का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि मुर्गीशाला तक पहुंचने हेतु आवागमन की पूर्ण सुविधा हो। हमारे देश में मुर्गियों को तीन तरीकों से पाला जाता है, एक पिंजड़ों में, दो दिन में खुले आहाते में और रात को दबड़ों में, तथा तीन डीप लीटर पद्धति द्वारा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डीप लीटर

0: मुर्गियों को तीन तरीकों से पाला जाता है। एक पिंजड़ों में, 2 दिन में खुले अहाते में और रात को दबड़ों में, तथा 3 डीप लीटर पद्धति द्वारा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डीप लीटर पद्धति उचित रहती है। इसमें 6x9 मीटर वाली कच्ची या पक्की कुक्कुटशाला में 2200 से लेकर 250 तक मुर्गियां रखी जा सकती हैं। इस विधि में मुर्गियों को एक ही घर में रखकर पाला जाता है। फर्श पर बिछावन का प्रयोग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक करते हैं, जिसे समय समय पर पलटते व बदलते रहना चाहिए। मुर्गियों को संतुलित आहार देना चाहिए, जिसमें पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा और विटामिन प्रचुर मात्रा में विद्यमान हों। मुर्गियों के आहार में उनकी आवश्यकता अनुसार जौ, गेहूं व जई का दाना व चोकर, मक्का का दाना, सूखी बरसीम, हड्डी का चूरा, मछली का चूरा, मूंगफली की खली, मांस का चूरा, सीरा, चावल, चावल की चूनी, चावल की पालिश, नमक, सोयाबीन की खली, बिनौले की खली, चूने का पत्थर, मट्ठा वो हरे चारे के मुलायम छोटे छोटे टुकड़े खिलाने चाहिए। मुर्गियों के आहार में कैल्शियम और प्रोटीन तत्वों की प्रचुरता होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे अंडा व मांस उत्पादन में अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा मुर्गियों को सदैव स्वच्छ व ताजी पानी ही पिलाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी मुर्गी पालन हेतु चूजे खरीदने जाएं, किसी मान्यता प्राप्त मुर्गी फार्म हैचरी से ही चूजे खरीदें। चूजे खरीदते समय ध्यान रखें कि पक्षियों को किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है। यदि बीमारी है तो उन्हें नहीं खरीदना चाहिए, अर्थात स्वस्थ टीका लगे ही चूजे खरीदें। चूजों को लाते समय रास्ते में पानी में थोड़ा ग्लूकोज मिलाकर उन्हें पिलाते रहें। अंडा उत्पादन हेतु चूजे फरवरी मार्च में खरीदें, जो सितंबर तक अंडे देना प्रारंभ कर देते हैं। ब्रायलर हेतु हैचरी का चुनाव करें, जहां से पूरे वर्ष लगातार संकर नस्ल के चूजे मिलते रहें। मुर्गी पालन में सर्वाधिक ध्यान ये रखें कि मुर्गियों को होने वाली प्रमुख बीमारियों से समय समय पर बचाते रहें। इसके लिए रानीखेत, चेचक और मोरक जैसे भयंकर संक्रामक रोगों से बचाव के लिए उनके रोग रोधी टीके समय अनुसार नियमित लगवाते रहना चाहिए। हमेशा एक दिन के चूजे ही खरीदें। एक दिन से बड़े चूजे कभी भी भूल के नहीं खरीदने चाहिए। विभिन्न आयु वर्ग के पंछियों को दबड़ों में या मुर्गीशाला में अलग अलग रखना चाहिए। देखभाल में लगे व्यक्तियों को भी विशेष साफ सफाई होनी चाहिए। पंछियों को अधिक घना न रखें, क्योंकि कई रोग जैसे खूनी दस्त है, गोलकृमि तथा गुदा भेदन घनेपन के कारण ही होते हैं। फार्म में चूहे, नेवला, सांप, बिल्ली, कुत्ता आदि को न घुसने दें। ये छोटे पंछियों को तो खा ही जाते हैं, साथ ही रोग भी फैलाने का कारण बनते हैं। फार्म की नियमित सफाई करें। बर्तनों व उपकरणों को फार्मल्डिहाइड गैस तथा कीटाणुनाशकों से कीटाणु रहित कर लेना चाहिए। कुक्कुटों का आहार अचानक कभी नहीं बदलना चाहिए। दाने को फफूंदी आदि से बचाकर रखें। जब भी कुक्कुटों का आहार बदलें तो उसे धीमे धीमे और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही बदलना चाहिए। चूजों तथा पंछियों को समय समय पर टीके लगवाते रहने चाहिए। मुर्गीशाला की BSC मिलाकर सफेदी कराते रहना चाहिए। ये सफेदी हर माह में एक बार कराना उपयुक्त रहता है। बीमार पंछियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग रखें तथा पूर्ण स्वस्थ होने के पर ही बाड़े में मिलाएं। रोग के लक्षण प्रकट होते ही पूर्ण जांच करा लेनी चाहिए। संक्रामक रोग की दशा में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। संक्रामक रोग से मृत मुर्गियों को गहरे गड्ढे में चूना डालकर दबा देना चाहिए। संक्रामक रोग फैलने की दशा में उसकी सूचना स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र पर अवश्य देनी चाहिए। इस प्रकार से समुचित सूझबूझ, सावधानी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मुर्गी पालन किया जाए तो निश्चय ही अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह की वार्ता। शीर्षक था मुर्गी पालन में ध्यान देने योग्य बातें।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर सुबह के 6:55 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचारों का, इंतजार कुछ पलों का।

0: जाता जाता। उत्तर मेसिडोनिया देशस्य राष्ट्रपति पदासीना गोर्दाना सल्जानोस्का दावकोवा इत्येषा अवदत् यत् विश्वस्य बृहत्तम लोकतंत्रस्य भारतस्य राष्ट्रपति ही एका महिला अस्ति इति गौरवस्य विषयः अस्ति। सा एतदपि अवदत् यत् राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मेलनानन्तरं सा अतिप्रभाविता जाता तथा महिलाः विश्वे परिवर्तनम् आनेतुं समर्थाः सन्ति इति तया एतदपि अनुभूतम्। अद्य राष्ट्रिय प्रसारण दिवसः आचर्यते। अस्मिन्नेव दिवसे 27-अधिक-19शततमे वर्षे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इत्यस्य संस्थानस्य अंतर्गते बॉम्बे केन्द्रात् देशस्य प्रथमं रेडियो प्रसारणं जातम्। 37-अधिक-19शततमे वर्षे जून मासस्य 8मे दिने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इत्यस्य नाम परिवर्त्य ऑल इंडिया रेडियो इति नाम स्थापितम्। अयम् दिवसः भारतस्य विकासे शिक्षा प्रसारे तथा सांस्कृतिक रिक्थस्य संरक्षणे प्रसारणस्य महत्वपूर्णां भूमिकां प्रकाशयति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनसे न केवल सरकार के कामकाज में सुधार होना चाहिए बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भी प्रगति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गंभीर समस्या है जिस पर ईमानदारी से बातचीत होना जरूरी है।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसर डैन, सीनेट अध्यक्ष मिर्सोआ अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरेन ग्रिंडियानू से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दोना सिल्जानोवस्का दावकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपिये में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में सुश्री दावकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। अमेरिका की सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान पर हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज होने के साथ नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है जिससे वह समुद्री मार्गों से गुजरने वाले नागरिक और व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब अमरीका होर्मुज जलडबरू मध्य पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: वो आपकी सेहत के लिए क्या क्या कर सकता है? आम केवल एक फल ही नहीं बल्कि वो मौसम का।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। President of North Macedonia, Gordana Silvanoska Davkova, has said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashvani correspondent in Skopje, North Macedonia, Ms. Davkova said earlier she was impressed by India's long history and also spirituality. She said after meeting President Murmu, she was very much impressed. She said after meeting President Draupadi Murmu, she strongly felt that only women can change the world.
3: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
2: Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. Prime Minister made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Vikasit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence at 7 Lok Kalyan Marg focused on strengthening governance, improving interministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing citizens' welfare. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion.
4: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
2: द यूनियन मिनिस्टर सेड दैट एनडीए गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज टेकन अप दिस मैटर वेरी सीरियसली। He reiterated the government's stand that it is ready for a discussion on NEET issue in Parliament and opposition should decide the duration of the debate. The centre has approved two electronics manufacturing clusters, EMCs, in Tamil Nadu with a combined investment of over 1,012 crore rupees. The move is aimed to strengthen the state's electronics manufacturing ecosystem and further India's push towards self-reliance in the sector. The announcement was made by Union Minister for Electronics and Information Technology, Ashwani Vaishnaw, in a written reply in the Lok Sabha yesterday. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Canadian counterpart, Anita Anand, on the sidelines of

0: Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines yesterday. In a social media post, Dr. Jaishankar said that India-Canada cooperation has been steadily growing. He said that the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the Prime Ministers of both the nations. The 23rd Commonwealth Games, CWG, will begin today in Glasgow, Scotland. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lavlina Borgohain are set to represent India at the CWG 2026. It will feature just 10 sports, 9 fewer than at Birmingham 2022, with competitions spread across 4 venues within an 8-mile corridor. Athletics, swimming, 3x3 basketball, track cycling, weightlifting, bowls, artistic gymnastics, netball, boxing and judo make up the schedule for the game. In men's cricket, first T20 international of 3-match series between India and Zimbabwe will be played today in Harare. The match will begin at 4:30 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा की वार्ता। शीर्षक है बहु औषधीय प्रतिरोधक क्षय रोग।
2: श्रोताओं, क्षय रोग एक गंभीर संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक कीटाणु से होता है। जब भी कोई क्षय रोगी जोर से खांसता है या छींकता है तो उसके बीमारी के कीटाणु वायुमंडल में तैरने लगते हैं। नजदीक बैठा कोई भी सामान्य व्यक्ति जब गहरी सांस लेता है तो ये कीटाणु उसके शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं और वो भी क्षय रोग से संक्रमित हो जाता है। प्राय देखा गया है कि यदि किसी क्षय रोगी को उपचार ना मिले तो प्रतिवर्ष वो 10 से 15 सामान्य व्यक्तियों को संक्रमण दे देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व के 20% क्षय रोगी अकेले भारतवर्ष में मौजूद हैं और भारत में स्थिति इतनी खराब है कि हर 3 मिनट में 2 व्यक्तियों की मौत अकेले क्षय रोग से हो जाती है। जब बीमारी इतनी गंभीर हो तो उसके सामान्य लक्षण हम सभी को पता होने चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं: 2 सप्ताह या उससे लंबी खांसी हो, भूख न लगती हो, वजन गिरता जा रहा हो, हल्का बुखार रहता हो जो शाम को बढ़ जाता हो, छाती में दर्द हो, सांस में दिक्कत हो या बलगम में कभी कभी खून आ जाता हो। ऐसे सभी व्यक्तियों को बलगम परीक्षण के माध्यम से क्षय रोग की जांच करा लेनी चाहिए और यदि बीमारी निकलती है तो उसका उपचार भी तुरंत लेना चाहिए। यहां मैं बताना चाहूंगा कि सरकार की ओर से क्षय रोगियों के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलता है जिसको हम RNTCP के नाम से जानते हैं, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम या पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। देखा गया है कि जितने भी क्षय रोगी इस कार्यक्रम के तहत उपचार कराते हैं, 6 से 8 महीने के उपचार में लगभग 90% रोगी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। परंतु ऐसे रोगी जो पूरी दवाई नहीं खाते, उपचार बीच बीच में तोड़ते रहते हैं या समय से पहले बंद कर देते हैं, वे ठीक नहीं हो पाते हैं और उनकी जो सामान्य टीबी है वो MDR में परिवर्तित हो जाती है। आखिर ये MDR-TB है क्या? MDR-TB का मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, बहु औषधीय प्रतिरोधक क्षय रोग। जब टीबी के मरीज के कीटाणु सामान्य टीबी की दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं तो हम उसको MDR-TB कहते हैं, या दूसरे शब्दों में यूं कह लीजिए कि जब सामान्य टीबी की दवाइयां जैसे रिफैम्पिसिन और आइसोनेक्स काम करना बंद कर देती हैं तो उसको MDR-TB कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि MDR-TB की जांच कैसे की जाए। MDR-TB की जांच के लिए रोगी के बलगम का कल्चर सेंसिटिविटी किया जाता है। कल्चर सेंसिटिविटी से तात्पर्य होता है कि रोगी के बलगम में मौजूद टीबी के कीटाणुओं को पहले विशेष परिस्थितियों में उगाया जाता है, उसके उपरांत टीबी की अलग अलग दवाइयों से उनको मार के देखा जाता है। जो भी दवाइयां कारगर साबित होती हैं उनसे रोगी का उपचार किया जाता है। परंतु क्योंकि MDR-TB का उपचार बहुत ही लंबा, जटिल और महंगा होता है, इसलिए उपचार देने से पहले कुछ अन्य जांचें भी कराई जाती हैं। इन जांचों को हम प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं और प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन के लिए सरकार ने अनेकों केंद्र स्थापित कर रखे हैं जिनको हम DRTB सेंटर कहते हैं। ये DRTB सेंटर ज्यादातर मेडिकल कॉलेज में और या फिर बड़े बड़े अस्पतालों में स्थापित किए गए हैं, क्योंकि वहां पे सभी किस्म के विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं। किसी भी MDR रोगी

0: को उपचार देने से पहले प्री ट्रीटमेंट इवेल्युएशन के लिए डीआरटीबी सेंटर भेजा जाता है। वहां रोगी को खून की जांच के माध्यम से शुगर की जांच, थायराइड की जांच, लिवर की जांच, किडनी की जांच, साथ में पेशाब की जांच और छाती का एक्सरे किया जाता है और महिलाओं में प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता है। यदि ये जांचें सामान्य आती हैं तो रोगी को भर्ती कर दिया जाता है और विशेषज्ञों की निगरानी में एक सप्ताह का इलाज शुरू कर दिया जाता है। रोगी को अगर ये उपचार बर्दाश्त हो जाता है तो उसकी छुट्टी कर दी जाती है और उसको घर वापस भेज दिया जाता है, लेकिन रास्ते के लिए एक सप्ताह की दवाई साथ में दे दी जाती है। इससे पहले के रोगी अपने घर पहुंचे, संबंधित जिला क्षय रोग अधिकारी उस रोगी के घर के नजदीक ही एक ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो कि उसको पूरा उपचार दे सके। इस व्यक्ति को हम डॉट प्रोवाइडर कहते हैं। इस डॉट प्रोवाइडर व्यक्ति को फिर जिला क्षय रोग अधिकारी पूरा प्रशिक्षण देते हैं कि रोगी को कौन कौन सी दवाई कितनी कितनी मात्रा में कितनी अवधि के लिए खिलानी है, रोगी का उपचार कार्ड कैसे भरा जाना है, उपचार के दौरान रोगी पर कौन कौन सी जांचें कब कब करानी हैं, और यदि किसी औषधि का रोगी पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े तो उसको कैसे वो पहचानेगा, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि रोगी हमारा उपचार किसी विपरीत प्रभाव की वजह से छोड़ के ना जाए, क्योंकि जब भी वो इलाज तोड़ेगा तो खतरा और बढ़ता जाएगा। इसलिए ये डॉट प्रोवाइडर की जिम्मेदारी होती है कि वो इलाज ठीक से चलाए, और दूसरा अगर रोगी किसी दिन खुराक खाने ना आए तो उसको घर से बुला करके वापस लाए।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रदीप शर्मा की वार्ता। शीर्षक था बहु औषधीय प्रतिरोधक क्षय रोग।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:18 होने को हैं। हमारा अगला अन्न प्रसारण लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता।

0: सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के सपने को जन आंदोलन में बदलने की अपील की, कहा देश के युवाओं को बनाना चाहिए इसकी नींव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर जताई चिंता, कहा युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के चयन के लिए दिया एक महीने का अतिरिक्त समय। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की, आज 995 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता जताई है। नई दिल्ली में कल उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
3: ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
2: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद कल भी दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार मानसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए।
4: देखिए, जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
2: वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में कल पार्टी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन मंगलवार को नीट पेपर लीक मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन के विरोध में किया गया। अयोध्या के श्री मणिराम दास छावनी में कल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर ट्रस्ट ने साफ किया कि राम भक्तों की आस्था पहले की तरह अटूट है।

0: और मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बनी हुई है। ट्रस्ट के महासचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के चयन के लिए गठित समिति ने आवेदनों की अधिक संख्या और प्रक्रिया की गंभीरता को देखते हुए 1 महीने का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी है। तब तक प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रखने के लिए एक सचिव की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
1: एक उपयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के निमित्त गठन समिति ने भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने से चयन में अधिक समय की आवश्यकता बताते हुए 1 माह का अतिरिक्त समय मांगा है। विषय की गंभीरता और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्यासी मंडल ने यह अनुरोध स्वीकार किया है। न्यास ने आगामी कालखंड में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में इस विलम्ब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है।
0: कल हुई ट्रस्ट की बैठक में मंदिर प्रबंधन, चढ़ावा व्यवस्था, ट्रस्ट के रिक्त पदों और धार्मिक समिति के पुनर्गठन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मीडिया के माध्यम से नियमित संवाद बनाए रखने के लिए ट्रस्ट ने आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का भी फैसला किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके जिले के विकास कार्यों, बाढ़ बचाव और जल निकासी की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में मुख्यमंत्री ने जल निकासी के प्रबंध पर जोर देते हुए कहा कि जल भराव की समस्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोका जाए ताकि इससे नाले चोक न हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ चौकियां सक्रिय रहें और बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों में बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बूथ सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति पूरी दुनिया की धारणा बदली है। श्री योगी ने कहा कि भाजपा ने सबसे बड़े दल के रूप में सुशासन और लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे।
3: मुख्यमंत्री 6 लेन फ्लाईओवर सहित गोरखपुर को 995 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वह टीपी नगर पैडलेगंज मार्ग पर बने 6 लेन फ्लाईओवर के समीप आयोजित समारोह में 813.52 करोड़ रुपए की 4 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 181.77 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। टीपी नगर पैडलेगंज मार्ग पर 2.6 किलोमीटर की लंबाई वाले और गोरखपुर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर से अंतर जनपदीय कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। इस फ्लाईओवर के जन समर्पित हो जाने से संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आजमगढ़, कुसुम नगर, देवरिया, बिहार, महाराजगंज और नेपाल तक आने जाने वाले लोगों की यात्रा में काफी सुविधाजनक हो जाएगी। GN चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आज से शुरू हो रहे राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदेश के 10 एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में 2 खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगे।
4: गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर दौड़ में पदक के लिए जोर आजमाइश करेंगे। प्रयागराज के कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट और जौनपुर के रोहित यादव भाला फेंक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टेपल चेस और 5000 मीटर दौड़ में भाग लेंगी। वहीं प्रियंका गोस्वामी 10000 मीटर की पैदल चाल और नीरू पाठक 400 मीटर की रिले दौड़ में प्रतिस्पर्धा करेंगी। यूपी पुलिस की अस्मिता डे जूडो और आगरा के आदित्य प्रताप सिंह बॉक्सिंग में दम दिखाएंगे। लखनऊ के श्रियांश त्रिवेदी और भदोही के सागर पैरा एथलीट के रूप में भाग लेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत कल प्रदेश के बिजनौर जिले में एक साथ 57 तालाबों की खुदाई का काम शुरू किया गया। हमारे बिजनौर प्रतिनिधि ने बताया कि वहां 409 अमृत सरोवरों के बाद अब 562 चिन्हित स्थानों पर जल संचयन के लिए ढांचा मजबूत किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य क्रिटिकल जोन में भूजल स्तर में सुधार करना है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 25 जुलाई तक

0: देश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। इस बीच बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा नदी में खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में हिंडन और यमुना नदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के सपने को जन आंदोलन में बदलने की अपील की, कहा देश के युवाओं को बनाना चाहिए इसकी नींव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर जताई चिंता, कहा युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के चयन के लिए दिया एक महीने का अतिरिक्त समय। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। आज 995 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास।

आसपास कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राष्ट्रमंडल खेलों का आज होगा आगाज। ओवो हाइड्रो पर गुरुवार को रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ खेलों के महाकुंभ की रणभेरी बजेगी। 11 दिन तक चलने वाले इन खेलों में दुनिया भर के खिलाड़ियों के बीच भारत के 125 खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे।

अब ऑटोमेटेड सिस्टम से वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया आसान हो सकेगी। संभागीय परिवहन विभाग ने सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और फेसलेस बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 90 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन करने के बाद अब नए वाहन पंजीकरण, वाहन ट्रांसफर समेत कई प्रक्रियाओं को ऑटोमेटेड सिस्टम से जोड़ दिया गया है। इससे आवेदकों को आरटीओ कार्यालय के चक्कर अब कम लगाने पड़ेंगे और दलालों के हस्तक्षेप से भी रुका जा सकेगा। साथ ही इन अन्य सेवाओं का भी लाभ मिलेगा। नया वाहन पंजीकरण, वाहन ट्रांसफर, ऑल इंडिया ट्रांसफर वाले वाहनों का विशेष पंजीकरण, आरसी खोने पर डुप्लीकेट जारी करना और 15 वर्ष बाद नवीनीकरण, फाइनेंस वाली गाड़ी पर हाइपोथिकेशन दर्ज करना।

और समाप्त होने पर हटाना, आरसी में नया पता अपडेट करना, दूसरे जिले या राज्य में वाहन ले जाने को एनओसी जारी करना और साथ ही रोड टैक्स, फिटनेस फीस और नेशनल टूरिस्ट परमिट शुल्क जमा करना।

अब कुछ सूचनाएं। रेलवे की तरफ से गोवर्धन परिक्रमा एवं गुरु पूर्णिमा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थयात्रियों के लिए रेलवे ने मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रमुख ट्रेनों का विस्तार एवं अस्थायी ठहराव को भी घोषित किया गया है। 23 से 31 जुलाई तक रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है। इस अवधि में चयनित एक्सप्रेस ट्रेनों को अतिरिक्त अस्थायी ठहराव भी प्रदान किया गया है। पीआरओ ने बताया कि गाड़ी संख्या 1190 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा छावनी पैसेंजर का डींग तक विस्तार किया गया है।

इसके साथ ही कई अन्य ट्रेनों के विस्तार की भी घोषणा की गई है। पीआरओ ने बताया कि उधना मधुबनी साप्ताहिक ट्रेन को 12 से 26 जुलाई तक हर रविवार और मधुबनी उधना साप्ताहिक ट्रेन को 13 से 27 जुलाई प्रत्येक सोमवार को बढ़ाया गया है। वहीं लालकुआं राजकोट साप्ताहिक ट्रेन को 19 जुलाई से 27 सितंबर तक हर रविवार को और राजकोट लालकुआं साप्ताहिक ट्रेन को 20 जुलाई से 28 सितंबर तक प्रत्येक सोमवार तक बढ़ाया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 641-7, 641-67, 641-68 गाजियाबाद टूंडला गाजियाबाद दैनिक EMU का परिचालन 15 जुलाई से अस्थायी रूप से आगरा सिटी स्टेशन तक विस्तारित किया गया है। पीआरओ ने बताया कि ट्रेन गाजियाबाद से प्रातः 6:10 पर चलकर सुबह 11:25 पर टूंडला और उसके बाद 11:35 से एतमादपुर और 11:48 पर छलेसर, 12:13 यमुना ब्रिज और 12:45 पर आगरा सिटी स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन आगरा सिटी स्टेशन से दोपहर 2:20 से चलकर 2:35 पर यमुना ब्रिज और 3:30 पर टूंडला पहुंचेगी।

जलापूर्ति बाधित होने पर टैंकर मंगाने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-270-2722, कंट्रोल रूम 8190-295401 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1454 लाभार्थियों का लक्ष्य तय किया गया है। पात्र व्यक्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ के आगरा क्षेत्रीय कार्यालय ने एमएनएसटी योजना 2026 के तहत मान्यता प्राप्त पीएफ ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों से आवेदन मांगे हैं। योजना में प्रतिष्ठानों की स्थिति नियमित करने के लिए 6 मांग का अवसर मिलेगा। आवेदन वेबसाइट द्वारा किए जाएंगे। नगर निगम से अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना पहले की तुलना में काफी महंगा हो गया है। आवेदन शुल्क 2 रूपये से बढ़ाकर 20 रूपये, विलम्ब या विशेष आवेदन शुल्क 5 रूपये से 50 रूपये और 1 वर्ष से पुराने रिकॉर्ड शुल्क जो कि पहले 10 रूपये था अब उसे 100 रूपये कर दिया गया है।

एक अन्य सूचना रेलवे की तरफ से। रेलवे ने नई दिल्ली कोसी कला ईएमयू ट्रेन का धौलपुर तक विस्तार किया है। पीआरओ ने बताया कि नई दिल्ली कोसी

जिला दैनिक ईएमयू प्रतिदिन धौलपुर तक जाएगी और वापसी में धौलपुर से चलेगी ट्रेन 12 कोच की होगी और यात्री जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे।

देश भर के छावनी परिषद के स्कूलों में जल्द ही बड़ा शैक्षणिक बदलाव होने जा रहा है। रक्षा संपदा महानिदेशालय छावनी परिषद के स्वामित्व वाले सभी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध कराने की तैयारी हो रही है। साथ ही एक समान पाठ्यक्रम भी लागू किया जाएगा। इस योजना को लेकर रक्षा संपदा महानिदेशालय ने सभी छावनियों को पत्र भेजकर इससे अवगत करा दिया है।

मुड़िया मेला गुरुवार से शुरू हो जाएगा। 30 जुलाई तक चलने वाले इस मेले में करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इन 8 दिनों तक श्रद्धा का सैलाब संभालने के लिए प्रशासन ने कमर कस रखी है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गोवर्धन के आसपास 61 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जिससे भीड़ वाले इलाकों में दिक्कत न हो। मुड़िया पूर्णिमा 29 जुलाई को है। मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाए गए हैं और सुपर जोन, जोन और सेक्टर में बांटकर मेले की सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

27 से 29 जुलाई तक प्रदेशीय महिला बास्केटबॉल व हैंडबॉल प्रतियोगिता अयोध्या में होगी। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि आगरा मंडल की टीम का जिला स्तरीय ट्रायल 23 जुलाई को सुबह 11 बजे और मंडलीय ट्रायल 24 जुलाई को सुबह 11 बजे से एकलव्य स्टेडियम में होगा। इसमें वही महिला खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकती हैं जिनकी आयु 31 दिसंबर 2026 को 25 वर्ष से अधिक न हो। ट्रायल में भाग लेने के लिए प्रविष्टि निःशुल्क है। इच्छुक खिलाड़ी 23 जुलाई को सुबह 11 बजे आधार कार्ड लेकर स्टेडियम पहुंच जाएं। जनपदीय माध्यमिक बालक बालिका तैराकी प्रतियोगिता 24 जुलाई को एकलव्य स्टेडियम में होगी। संयोजक एवं नेशनल मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रतियोगिता अंडर 14, 17 और 19 बालक बालिका वर्ग में होगी। खिलाड़ी प्रधानाचार्य से प्रमाणित पात्रता प्रमाण पत्र के साथ बार कोड युक्त जन्म प्रमाण पत्र, अंक पत्र, यूडाइस कोड, पैन नंबर और आधार कार्ड की प्रति लाएं। मंडली तैराकी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 पर शुरू होगी। कार्यक्रम आसपास को जारी रखते हुए श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक मधुर भक्ति गीत।

कार्यक्रम आसपास में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। बिजली घर चौराहा से आईएसबीटी स्टेशन तक 90

किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही मेट्रो। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम ने बिजलीघर चौराहा से आईएसबीटी स्टेशन तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मेट्रो का परीक्षण शुरू कर दिया है। इसमें अप और डाउन लाइन शामिल है। वर्तमान में 3 कोच की 4 मेट्रो का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें 4 स्टेशन भूमिगत और 1 एलिवेटेड है। वहीं माल रोड पर मेट्रो के परीक्षण की तैयारी शुरू हो गई है। अगले माह से परीक्षण शुरू हो सकता है।

ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की तैयारी। डीयू बदल रहा दूरस्थ शिक्षा का ढांचा। डीयू दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 24 जुलाई को होने वाली

ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की तैयारी। DU बदल रहा दूरस्थ शिक्षा का ढांचा। DU दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 24 जुलाई को होने वाली एकेडमिक काउंसिल की बैठक में विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में बदलने का प्रस्ताव रखा जाएगा। ये बदलाव केवल नाम परिवर्तन तक सीमित नहीं होगा, बल्कि DU की ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था को UGC के नए मानकों के अनुरूप आधुनिक ढांचा देने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के लिए इतिहास, शिक्षा, राजनीति विज्ञान और विधि सहित 22 विषयों में सीटों से कई गुणा अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इन विषयों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सीट मिलना मुश्किल है। वहीं 32 विषय ऐसे हैं जिनमें सफल अभ्यर्थियों को सीट मिल सकती है। पीएचडी के लिए 1 अगस्त में काउंसलिंग प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की 1,540 सीटों के लिए आयोजित की गई प्रवेश परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य था।

आपको बता दें कि मलपुरा क्षेत्र में बिजली कटौती आज से DVVNL के विद्युत उपकेंद्र मलपुरा से जुड़े करीब 10 गांव 2 दिन बिजली आपूर्ति से बाधित रहेंगे। दिन में कार्य समाप्ति पर उन्हें शाम 6 बजे के बाद बिजली मिलेगी। एसडीओ ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को पुराने कंट्रोल रूम से नव निर्मित ट्रोल रूम में बीसीबी मशीन स्थानांतरित की जा रही है। इसका कार्य दोनों दिन सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा।

अब घर बैठे ऑनलाइन बुक होगा ट्रेन में लगेज। ट्रेन में यात्रा के दौरान भारी भरकम सामान की बुकिंग के लिए अब रेलवे स्टेशन पर लाइन लगाने या पार्सल ऑफिस के चक्कर काटने से मुक्ति मिलने जा रही है। भारतीय रेलवे ने कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए पर्सनल लगेज की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू करने का बड़ा फैसला किया है। ये नई व्यवस्था पूरे देश में 31 जुलाई से लागू हो जाएगी। रेलवे बोर्ड ने रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम की पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम व पैसेंजर मैनेजमेंट सिस्टम विंग व IRCTC की आपस में तालमेल बनाकर अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में जरूरी बदलाव और टेस्टिंग पूरी करने को कहा है। अब यात्री टिकट बुकिंग के दौरान ही अपने साथ ले जाने वाले पर्सनल लगेज का ब्यौरा इसमें दर्ज कर सकेंगे।

कारखाना अधिनियम सन 1948 के तहत प्रदेश सरकार ने कारखानों के निरीक्षण के लिए नई जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब कारखानों का निरीक्षण उनके जोखिम स्तर के आधार पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और निरीक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।

उम्मीदवारों को चयनित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की तैयारी में है। आयोग के अध्यक्ष ने रिक्त पदों का परीक्षण कर लिया है। प्राचार्य पदों के लिए अधियाचन सबसे पहले ऑनलाइन प्राप्त हुआ, इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों का अधियाचन उच्च शिक्षा निदेशक ने भेजा। कार्यक्रम आसपास में श्रोताओं, सूचना का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जिसमें शामिल होंगी गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एडेड महाविद्यालयों के 111 प्रचार पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है। ये विज्ञापन 21 जुलाई को प्रकाशित हुआ। आयोग अब उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त 2107 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों

गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं से पहले ये श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक और महत्वपूर्ण सूचना। दूरदराज क्षेत्रों में वर्षों से तैनात रेल कर्मियों के लिए रेलवे बोर्ड ने ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। 20 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी। ये नई व्यवस्था लंबे समय से अपने गृहमंडल या परिवार के पास स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को राहत प्रदान करेगी।

और आइए सुनते हैं गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं। पहली सूचना के अनुसार सिमलेश कुमारी पत्नी वीरपाल सिंह निवासी ग्राम मड़िया थाना निधौली कलां जनपद एटा, इनकी उम्र 29 वर्ष है, कद 5 फुट 2 इंच, चेहरा गोल रंग सांवला, शरीर सामान्य व पतला, आंख नाक कान औसत, बाल मध्यम काले। गुमशुदगी के दौरान ये ब्राउन रंग की साड़ी व पैरों में चप्पल पहनी हुई थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना निधौली कलां जनपद एटा पर सूचित करें।

अन्य सूचना के अनुसार रीता उर्फ लीला पुत्री रामपाल सिंह निवासी ग्राम मीसा खुर्द थाना अवागढ़ जनपद एटा, इनकी उम्र 20 वर्ष है, कद 5 फुट, चेहरा गोल रंग गोरा, शरीर सामान्य, आंख नाक कान औसत है। गुमशुदगी के दौरान ये लाल रंग की कुर्ती, सफेद रंग की पैजामी व पैरों में काले रंग की चप्पल पहने हुए थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना अवागढ़ जनपद एटा पर सूचित करें।

अन्य सूचना के अनुसार करण कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी पृथ्वीपुर थाना पिलुआ जिला एटा। इनकी उम्र 26 वर्ष है। कद 5 फुट 5 इंच, रंग सांवला, चेहरा कोल, शरीर मजबूत, आंखें काली। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर आप थाना पिलुआ जिला एटा पर सूचित कर सकते हैं।

अंतिम सूचना के अनुसार कुमारी ज्योति पुत्री मेहा सिंह निवासी नगला मूले थाना कोतवाली मैनपुरी, इनकी उम्र 24 वर्ष है, कद 5'3", चेहरा गोल, आंखें काली। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर आप थाना कोतवाली मैनपुरी पर सूचित कर सकते हैं।

0: साथ ही गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं और आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर सुबह के 8 बजने को है। हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें प्रस्तुत हैं समाचार प्रभात।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
6: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए, जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज़।
5: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
7: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन कर

0: करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
2: What is the most important?
3: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
2: With deep feelings, emotional intelligence.
1: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है।

0: इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
2: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोऊ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
3: पीओजेके में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों

0: governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss NEET paper leak issue in parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद तमाम इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के इकदाम तरतीब दिए जाने चाहिए। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है और इस मसले का मुस्तकिल हल यकीनी बनाने के लिए मौसर पॉलिसी तैयार करेगी। भारत साल 2033 तक 5 छोटे एटमी बिजली घरों को फाल बनाने का मंसूबा रखता है। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए मालियत के 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 बैन अलाक्वामी T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद हर इस्लाह का बुनियादी मकसद होना चाहिए और हुकूमत के इकदाम अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रख कर तैयार किए जाने चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि इस्लाहात को न सिर्फ हुकूमत के कामकाज को बेहतर बनाना चाहिए बल्कि भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के सफर को भी तेज करना चाहिए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम मोदी ने यह बात सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए कही, जिसमें देही तरक्की, ज़राअत, समाजी बहबूद और दीगर मुतालिका शोबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ये मीटिंग वजीर आजम की रिहायशगाह पर मुनाकिद हुई, जिसमें हुक्मरानी को मजीद मुअस्सर और मजबूत बनाने, मुख्तलिफ वजारतों के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाने, अवामी फलाह के लिए इस्लाहात पर तेजी से अमल दरामद करने पर जोर दिया गया। तेजी से बदलते हुए हुक्मरानी के मंजरनामे को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने बदलते हुए वक्त के मुताबिक हुकूमत के निजाम को जदीद बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि विकसित भारत का विजन एक जन आंदोलन बनना चाहिए, जिसमें मुल्क के नौजवान इस कौमी मिशन की बुनियाद हों। उन्होंने नौजवानों में मुनशियात के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर ताउन और नौजवानों पर मरकूज प्रोजेक्टों को मरबूत करने के लिए एक इदारा जाती निजाम कायम करने की जरूरत है, ताकि इस चैलेंज से ज्यादा मौसर अंदाज में निपटा जा सके। इसके अलावा खेलों के शोबे में भी वजीर आजम मोदी ने जामे और मरबूत तरक्की पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि एक जामे हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए, ताकि भारत को खेलों के आलमी मरकज के तौर पर कायम किया जा सके। उन्होंने पीएम कुसुम स्कीम की जरिए शोबे की कायापलट की सलाहियत को भी उजागर किया और कहा कि अगर ज्यादा से ज्यादा किसान इस स्कीम को अपनाएं तो इससे ज़राअत को नुमाया फायदा पहुंच सकता है। वजीर आजम ने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया भर में दरकार महारतों का जामे जायजा लिया जाए, ताकि भारत की अपराधी कुव्वत को आलमी सतह पर उभरने वाले रोजगार के मौके और मुस्तकबिल की मुलाजमतों की जरूरियात के मुताबिक तैयार किया जा सके। नई दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्बार।
1: सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि तलबा की जानिब से उठाए गए नीट पेपर लीक मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए और इस मामले से सियासी फायदा उठाना मुनासिब नहीं है। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि ये जांच का मौजू है जिस पर तफसीली बातचीत की जरूरत है। जनाब नड्डा ने कहा कि पेपर लीक एक संगीन मसला है जिस पर संजीदगी से गौर व खौज जरूरी है।
3: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
1: मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एनडीए हुकूमत ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया है। उन्होंने हुकूमत के इस मौकफ को दोहराया कि पार्लियामेंट में नीट के मामले पर

0: बहस के लिए वो तैयार है और अपोजिशन बहस के दौरान ही इसका फैसला कर सकती है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट ही वो सबसे मुनासिब मौजू फोरम है जहां इस मामले पर तफसीली और जामे बहस की जा सकती है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि अपोजिशन पेपर लीक जैसे संगीन मामले पर बामानी पार्लियामानी बातचीत की बजाय इल्ज़ाम तराशी का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कौमी तश्वीश का मामला है जो किसी एक हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है, लेकिन फिर भी अपोजिशन इस मामले को सियासी रंग देने में लगी हुई है।
1: मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा, क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, आपका उद्देश्य एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है।
0: जनाब नड्डा ने कांग्रेस और अपोजिशन की हुक्मरानी वाली रियासतों में मुख्तलिफ इम्तिहानात के पेपर लीक के मामले भी उठाए। उन्होंने कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर जानिबदारी बरतने का इल्जाम लगाते हुए सवाल पूछा कि वो इन वाकयात पर बात क्यों नहीं करते। जनाब नड्डा ने जनाब गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो इस मामले से सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं, जो कि अफसोसनाक है। जनाब नड्डा ने कहा कि जनाब गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई प्रेजेंटेशन में 150 इम्तिहानी पर्चों के लीक होने से मुतालिक बात की। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि ये जांच का मौजू है और हुकूमत बिलाशुबा इसकी जांच करेगी और मुल्क और अवाम के सामने सच्चाई को पेश करेगी। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बामानी मुबाहसे के लिए तैयारी की बात दोहराई है। लोकसभा में कल इस बारे में इजहार ख्याल करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि हुकूमत मुल्क के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामानी जवाबित के तहत इस मामले के सभी पहलुओं पर बामानी मुबाहसे के लिए तैयार है। जनाब रिजिजू का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब नीट पेपर लीक मामले तलबा के मुजाहरों समेत मुख्तलिफ मौजूदात पर पार्लियामेंट की कार्रवाई अपोजिशन के हंगामा आरई की वजह से कल लगातार तीसरे दिन भी रखनांदाजी का शिकार रही। इस दौरान राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे के बगैर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर हुकूमत ये यकीन दहानी कराए कि नीट पर्चा लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे गए खत में जनाब वांगचुक ने दोनों वजीरों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मंगल की रात अस्पताल में उनकी अयादत की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल मरकज और दिल्ली पुलिस से उन दरख्वास्तों पर जवाब तलब किया है जिनमें पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया था। अदालत ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो पुलिस कार्रवाई से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड महफूज रखें जिनमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल हैं। अदालत ने मुतालिका हुक्काम को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। मामले की अगली समाअत 11 सितंबर को होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने इत्तला दी है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अगले हुक्मनामे तक सुबह 7:30 बजे से 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। डीएमआरसी ने कहा है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। एटमी तवानाई के महकमे के ममलकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हुकूमत साल 2033 तक स्वदेशी बनावट के कम से कम 5 छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियाई रिएक्टर्स को फाल करने का इरादा रखती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लोकसभा में अपने तहरीरी जवाब में डॉक्टर सिंह ने बताया कि पार्लियामेंट ने शांति कानून 2025 को नाफिज करते हुए प्राइवेट शराकतदारों के लिए न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे के दरवाजे खोल दिए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 220 मेगावाट का एक भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, 55 मेगावाट का एक रिएक्टर और एक हाई टेंपरेचर गैस कूल्ड रिएक्टर डेवलप कर रहा है जो हाइड्रोजन पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने न्यूक्लियाई तवानाई मिशन के तहत ऐलान करदा साल 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियाई बिजली सलाहियत हासिल करने के मकसद से रोड मैप वजह किया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि रोड मैप

0: मुताबिक 8.78 गीगावाट की मौजूदा न्यूक्लियाई बिजली की सलाहियत के साल 2031-32 तक 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। ये हौसलियाबी उन प्रोजेक्टों के जरिए हासिल की जा सकती है जो फिलहाल नफाज के मुख्तलिफ मरहलों में हैं। नई दिल्ली से कमोदी पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मरकज ने तमिलनाडु में मजमुई तौर पर 1012 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से दो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मिक्स्ड ईएमसी को मंजूरी दी है। इस कदम का मकसद रियासत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग माहौलियाती निजाम को मुस्तहकम करना और इस सेक्टर में भारत को खुद इन्हेसारी की सिमत में आगे बढ़ाना है। ये ऐलान कल लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने दी। दोनों मिक्स को मनालूर और पिलापक्कम में फरोग दिया जाएगा। मनालूर ईएमसी 474.3 एकड़ रकबे पर फैला होगा और इस प्रोजेक्ट पर 587.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि पिलापक्कम ईएमसी की तामीर 379.3 एकड़ में 424.55 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से दो रोजा रोमानिया दौरे पर रहेंगी। इस दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू रोमानिया के सदर निको सरदान, उबूरी वजीर आजम इली बोलोयान, सीनेट के सदर मिर्सिया अब्दुरिडियान और चेंबर ऑफ डेप्यूटीज के सदर सोरिन ग्रिंडेन्यू से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया का रोमानिया भारत पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप के अराकीन से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। सदर जमहूरिया फिलवक्त शुमाली मकदूनिया के तारीखी दौरे पर हैं। ये मकाम न सिर्फ अपनी खुदरती खूबसूरती बल्कि गोनागों तारीख और आलमी अहमियत की हामिल लेक ऑर्हिड के लिए जाना जाता है। इससे पहले शुमाली मकदूनिया की सदर गोर्डाना दावकोवा ने कहा कि यह फख्र की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत की सदर एक खातून है। स्कोपिये में आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मोहतरमा दावकोवा ने कहा कि वो भारत की तवील तारीख और रूहानियत से काफी मुतासिर हैं। आज नशरियात का कौमी दिन मनाया जा रहा है। साल 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो नशरियात का आगाज हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम तब्दील करके इसे ऑल इंडिया रेडियो AIR रख दिया गया। ये दिन भारत की तरक्की, तालीम के फरोग और सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ में नशरियात के अहम किरदार को उजागर करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये दिन भारत की तरक्की, तालीमी आगाही और सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ में नशरियात के अहम रोल को उजागर करता है। आज़ादी की तहरीक से लेकर मुल्क की तामीर तक रेडियो ने मालूमात की तरसील, खानदगी के फरोग, सेहत से मुतालिक आगाही पैदा करने और खासतौर पर देही इलाकों में जरिए मालूमात पहुंचाने में नहायत अहम किरदार अदा किया। कई नस्लों से आकाशवाणी अपने नस्ल लैन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ऐन मुताबिक आवाम की को मालूमात, तालीम और तफरी फराहम करता आ रहा है। नई दिल्ली से दिल नशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
0: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने वजीर खारजा एस जयशंकर के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि सरहदी इलाकों में अमनो इस्तेहकाम भारत और चीन के दरमियान मामूल के ताल्लुकात की पहली शर्त। अखबार इनकलाब की सुर्खी है खातून अरकान पार्लियामेंट पर काबिल एतराज तबसरे की पादाश में रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल। मुल्क में तैयार आबदोज शिकन जंगी जहाज INS मालवन बहरिया के बेड़े में शामिल, इस खबर को भी अखबार ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार की एक और सुर्खी है अपोजिशन की हंगामा राई की वजह से लोकसभा में मुसलसल तीसरे दिन वक्फ सवाल नहीं हो सका। अखबार इनकलाब लिखता है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दाना हमले में हेड कांस्टेबल की मौत। अखबार की बैन अवी खबरें इस तरह हैं ईरान के साथ मुजाकरात के लिए तैयार हैं वजीर खारजा मार्को रूबियो का बयान, ईरान के जौहरी तनसीबात के करीब अमरीका का हमला।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद तमाम इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और आवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के इकदाम तरतीब दिए जाने चाहिए। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है और इस मसले का मुस्तकिल हल यकीनी बनाने के लिए मौसर पॉलिसी तैयार करेगी। भारत साल 2033 तक 5 छोटे एटमी बिजली घरों को

0: अस्पताल बनाने का मंसूबा रखता है। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए मालियत के दो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के दो रोजा दौरे पर रहेंगी। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 बैन अलाक्वामी T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

गुलजार का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना, साधना सरगम और मुर्तजा कादिर की आवाजों में। इस गीत को संगीतबद्ध किया था AR रहमान ने और फिल्म का नाम था साथिया। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत MM करीम और चित्रा की आवाजों में। गीतकार है निदा फाजली, संगीतकार MM करीम और फिल्म का नाम है इस रात की सुबह नहीं।

0: सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि श्रोताओं आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है।

रहना है तेरे दिल में, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना केकी के स्वर में। शिवदशना समीर की थी, धुन बनाई थी हैरिस जयराज ने। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत विजय येसुदास और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

चुप चुप के इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना विजय येसुदास और श्रेया घोषाल की आवाजों में गीत गाते समय संगीतकार हिमेश रेशमिया। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत शान और अलका याग्निक की आवाजों में। बोल जावेद अख्तर के लिए हुए धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने और फिल्म का नाम है कल हो न हो।

कल हो न हो इस फिल्म के गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 9:15 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शामली और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज कुमार का।
1: शामली जिले की धरती को कीटनाशकों के जहर से बचाने के लिए कृषि विभाग ने समेकित कीट प्रबंधन IPM के तहत सोलर लाइट ट्रैप तकनीक की पहल की है। यूरिया और DAP की बढ़ती खपत के बीच यह आधुनिक तकनीक पर्यावरण की रक्षा करेगी और किसानों को फसल के होने वाले 20-40% आर्थिक नुकसान से बचाएगी। पादप सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार के अनुसार फसल से 3-4 फीट ऊपर लगने वाला यह लाइट ट्रैप सूर्यास्त के बाद प्रकाशों से कीटों को आकर्षित कर नष्ट कर देगा। इससे अंडों की श्रृंखला टूट जाएगी, जिससे गन्ना टाप बोरर, सफेद गिडार और धान का तना छेदक जैसे कीट पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि पहले चरण में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सभी ब्लॉकों के लिए 250 सोलर लाइट ट्रैप आवंटित किए गए हैं। 635 की कीमत वाले इस उपकरण पर 431 का DBT अनुदान मिलेगा, जिससे किसानों को यह मात्र 204 में उपलब्ध होगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। शामली जिले में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता निश्चित सुनिश्चित करते हुए सहकारिता गन्ना और इफ्को की सभी संस्थाओं पर CCTV कैमरे लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। किसानों को जोत के अनुसार संतुलित खाद की पर्याप्त उपलब्धता, उर्वरकों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने, अभद्रता और बेवजह हंगामे पर अंकुश को यह कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी आलोक यादव के निर्देश पर जिले के सभी प्रमुख उर्वरक वितरण केंद्रों को सर्विलांस के दायरे में लाया जा रहा है। इसके तहत सहकारिता विभाग की 43 संस्थाओं, 36 सहकारी समितियों व उनके साथ उपकेंद्रों, गन्ना विभाग के 18 केंद्रों और इफ्को के 4 केंद्रों पर CCTV स्थापित किए जाएंगे। इन कैमरों के जरिए खाद के स्टॉक लोडिंग और वितरण की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के साथ ही AR कोऑपरेटिव और गन्ना अधिकारियों को तहसीलों क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग करने की हिदायत दी है। सभी संबंधित विभाग इन कैमरों को अपने कार्यालयों से लिंक कर सीधे कमांड और मॉनिटरिंग करेंगे। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि खरीफ सीजन में किसानों को जोत के आधार पर पर्याप्त व संतुलित खाद मिलेगी। कालाबाजारी, ओवर रेटिंग और हंगामा करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए समितियों और बिक्री केंद्रों को CCTV से जोड़ा जा रहा है। स्टॉक की जानकारी भी SMS से मिलेगी। लापरवाही मिलने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शामली में जिला अस्पताल में जल्द ही थायराइड, विटामिन डी और अन्य जरूरी हार्मोन्स की जांच शुरू होने जा रही है। इसके लिए अस्पताल में अत्याधुनिक ऑटोमेटिक इम्यूनोइस एनालाइजर, हार्मोन्स एनालाइजर मशीन के संचालन का बजट जारी हो चुका है। CMS डॉक्टर मनोज कुमार अखोरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार प्रत्येक CHC पर यह सुविधा उपलब्ध करानी है। योजना के तहत POCT के कर्मचारी सभी CHC से मरीजों के सैंपल एकत्र कर जिला अस्पताल पहुंचाएंगे, जहां जांच के बाद रिपोर्ट सीधे मरीजों के व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। एंड्रॉइड फोन न होने पर मरीजों को संबंधित CHC से ही हार्ड कॉपी मिलेगी। इस आधुनिक मशीन से थायराइड प्रोफाइल, इंसुलिन, विटामिन B12, प्रजनन व गर्भावस्था संबंधी हार्मोन्स और कई संक्रामक रोगों की सटीक व तेज जांच संभव होगी। रिजेंट किट और स्टाफ की उपलब्धता के साथ 30 जुलाई तक मशीन के सुचारू संचालन की पूरी संभावना है। शामली जिले ने गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पेराई सत्र 2025-26 के क्रॉप कटिंग परिणामों के आधार पर शामली 969.12 कुंतल प्रति हेक्टेयर के रिकॉर्ड औसत उपज के साथ लगातार 8वीं बार प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। जिला गन्ना अधिकारी रणजीत कुशवाहा ने बताया कि यह जिला वर्ष 2018-19 से लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। जहां पिछले 8 सत्रों में उत्पादकता ग्राफ बेहतरीन रहा है, इस बार प्रदेशीय रैंकिंग में मुजफ्फरनगर 900.96 कुंतल प्रति हेक्टेयर के साथ दूसरे और मेरठ 825.64 कुंतल के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। गन्ना विभाग ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय शामली के किसानों की कड़ी मेहनत, लगन और आधुनिक वैज्ञानिक खेती के तरीकों को अपनाने को दिया है। इससे जिले ने गौरव बढ़ाया है। शामली में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में TB मरीजों की खोज में बड़ी सफलता मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने 1 जनवरी से 30 जून तक लक्ष्य से अधिक 1996 मरीजों की पहचान कर 101% की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अथर जमील ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से पोषण योजना के तहत मरीजों को 4 अवधि तक प्रतिमाह 1,000 की आर्थिक सहायता सीधे आधार लिंक बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके तहत 100 मरीजों की सूची तैयार कर निक्षय पोर्टल पर अपलोड की जा रही है, जिन्हें पहली किस्त के रूप में 3,000 दिए जाएंगे। शेष 6 माह का उपचार पूरा होने पर दूसरी किस्त मिलेगी। विभाग ने जिन मरीजों की बैंक KYC अधूरी है, उन्हें इसे जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 2 सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार या वजन घटने जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत

0: जांच कराने की अपील की है। शामली जिला प्रशासन ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना की अनूठी शुरुआत की है। इसके तहत प्रथम चरण में विभिन्न समूह की 25 महिलाओं का चयन किया गया है, जिन्हें ई रिक्शा चलाने के लिए 20 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। करीब 1.5 लाख रूपए की लागत वाले इन गुलाबी रंग के ई रिक्शा पर समूह की पूरी जानकारी अंकित होगी। प्रशासन ने 25 ई रिक्शा का ऑर्डर दे दिया है और जल्द ही ये सड़कों पर दिखाई देंगे। हाल ही में कलेक्ट्रेट, जिला अस्पताल, सीएमओ कार्यालय, विकास भवन और पुलिस ऑफिस जैसे प्रमुख सरकारी दफ्तर पूर्वी यमुना नहर पर स्थानांतरित हुए हैं, जिससे वहां लोगों का आना जाना काफी बढ़ गया है। यात्रियों की सहूलियत और महिलाओं के रोजगार को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में इन्हें इसी रूट पर चलाया जाएगा। जिलाधिकारी आलोक यादव ने बताया कि यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो आगामी चरणों में पिंक ई रिक्शा को पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा।
1: शामली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
2: राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपराडा यादव ने अंबेडकर नगर का दौरा किया। अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान अपराडा यादव ने मुख्यमंत्री शैक्षिक कैशलेस शिक्षा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से शिक्षकों को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच मिलेगा। उपाध्यक्ष अपराडा यादव ने स्कूल चलो अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपाध्यक्ष ने वन स्टाफ सेंटर एवं पोषण पुनर्वास केंद्र का भी निरीक्षण किया। पोषण पुनर्वास केंद्र में 10 बच्चे भर्ती पाए गए। उपाध्यक्ष ने स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सुविधाओं की जानकारी भी ली। उपाध्यक्ष ने कहा कि एनआरसी से वापस लौटने के बाद भी बच्चों की नियमित देखभाल की जाए ताकि कुपोषण की पुनरावृत्ति ना हो। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शैक्षिक कैशलेस शिक्षा योजना का शुभारंभ करने से शिक्षकों में काफी खुशी है। गंभीर बीमारियों का इलाज कराना शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन सरकार ने अब इसे आसान कर दिया है। इस योजना से शिक्षकों को बहुत फायदा होगा, शिक्षकों का मनोबल बढ़ा है। अंबेडकर नगर में विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग एवं स्टेशनरी के लिए धनराशि भेज दी गई है। प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक के खाते में 1200 रुपए भेजा गया है। अंबेडकर नगर के प्रभारी और प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जिले के अलग अलग ग्राम पंचायतों में आयोजित जन चौपालों में शामिल हो रहे हैं। श्री राजभर ने कहा कि सरकार प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान एवं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना है। अंबेडकर नगर में बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायतों में राहत चौपाल के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तहसील टांडा के बाढ़ से प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायतों में 7 जुलाई से राहत चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। चौपाल में आपदा से बचाव एवं राहत उपाय की जानकारी दी जा रही है। यह कार्यक्रम 31 जुलाई तक चलेगा। अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ईशा प्रिया के निर्देश पर फलदार पौधों का भंडारा आयोजित किया गया। कलेक्ट्रेट में आयोजित इस भंडारे में फरियादियों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों को फलदार पौधे वितरित किए गए। जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने फागिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, स्वच्छता जन जागरूकता एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का निर्देश दिया। अंबेडकर नगर में समरस वन स्थापना के तहत लगभग 10 लाख पौधों का रोपण किया गया। कटेहरी विकासखंड के ग्राम पतौना में स्थित अंबेडकर पार्क में समरस वन की स्थापना का मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया। अंबेडकर नगर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत लोहिया भवन सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में 184 सड़क सुरक्षा मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया। स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की समीक्षा बैठक अंबेडकर नगर में संपन्न हुई। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आयोग के अध्यक्ष व जिलाधिकारी को आयोग के गठन के उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि जनपद में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या एवं सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व पिछड़ेपन प्रकृति कारण आदि की समीक्षा की गई। अंबेडकर नगर में टेक्सटाइल क्षेत्र के विकास एवं बुनकरों की समस्या के निदान के संबंध में भारत सरकार के टेक्सटाइल निदेशक अश्विनी पांडे और डीएम ईशा प्रिया ने बुनकरों और उद्यमियों के साथ बैठक की। टेक्सटाइल निदेशक ने इकाइयों का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने बुनकरों की समस्याओं से टेक्सटाइल्स निदेशक को अवगत कराया। अंबेडकर नगर में इस समय खेती किसानी का काम तेजी से चल रहा है। धान की रोपाई का काम अपने आखिरी चरण में है। मानसून के आने और बरसात होने से किसानों के चेहरे पर खुशी है। ज्यादातर किसान इस समय खेतों में खाद की बुआई कर रहे हैं। जिले में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अंबेडकर नगर में भूमि विवादों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए लोक महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टांडा तहसील क्षेत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा और एसडीएम पुष्पेंद्र पटेल की मौजूदगी में लोक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 3 विवादों का निपटारा किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म रिश्ते नाते से। स्वर लता मंगेशकर का, गीतकार हैं हर्ष जयपुरी, संगीतकार मदन मोहन।

लता मंगेशकर के स्वर में भी आपने सुना कार्यक्रम का पहला गीत। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का दिया हुआ, स्वर मोहम्मद रफी का है और फिल्म का नाम है बॉयफ्रेंड।

मोहम्मद रफी के सुर में अभी आपने सुना कार्यक्रम का गीत। फिल्म का नाम था बॉयफ्रेंड। शब्दशना हसरत जयपुरी की, संगीत शेखर जयकिशन का दिया हुआ। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। शब्दशना शिवान रिजवी की है, धुन बनाई है उबी नैयर ने, और फिल्म का नाम है दिल और मोहब्बत।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत मन्ना डी के स्वर में। फिल्म का नाम है हिंदुस्तान की कसम। गीत के बोल लिखे हैं कैफी आसमी ने, संगीत मदन मोहन का दिया हुआ।
1: मुझे ये पूछने का तो हक है कि मेरा कसूर है क्या।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 9:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चंद लोकगीत। गायक कलाकार हैं रघुवीर सिंह चाहर।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

दूल्हा बिकता है। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनवर के स्वर में, शब्दशना गौहर कानपुरी की, संगीत बप्पी लहरी का दिया हुआ। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत पंकज उदास के स्वर में। गीतकार है मजू सुल्तानपुरी, संगीतकार आनंद मिलिंद और फिल्म का नाम है दिल आशना है।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, कुमार शानू और साधना सरगम की आवाजों में। फिल्म का नाम है जुर्म और इस गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने, संगीत राजेश रोशन का।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी के स्वर में। शब्दशना निदावाजली की, संगीत उषा खन्ना का दिया हुआ और फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे।

0: सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्रोताओं आगे भी जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत मोहम्मद रफी के स्वर में। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी। शब्दशना हसत जयपुरी की दी हुई, संगीत शंकर जयकिशन का।

मोहम्मद रफीकी का इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह की 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं राग गारा में उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का बजाया सरोद वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का राग गारा में सरोद वादन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का राग एमनी बिलवाल में सरोद वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का राग इमली बिलावल में सरोदवादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम आज के कलाकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त प्राची जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्म संगीत की उस शख्सियत की जिसने अपनी अलग शैली, अलग आवाज और अलग सोच के दम पर संगीत की दुनिया में खास पहचान बनाई। नाम है हिमेश रेशमिया। हिंदी फिल्म संगीत का इतिहास कई महान संगीतकारों से भरा है। नौशाद, सचिन देव वर्मन, राहुल देव वर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एआर रहमान, अनु मलिक, प्रीतम, शंकर एहसान लॉय जैसे अनेक संगीतकारों ने अपनी अपनी शैली से संगीत को समृद्ध किया। इसी श्रृंखला में वर्ष 2000 के दशक में एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया जिसने युवाओं की पसंद को एक नई दिशा दी और वो नाम था हिमेश रेशमिया का। हिमेश रेशमिया का

आज के ही दिन 23 जुलाई 1973 को गुजरात के भावनगर में हुआ। उनका बचपन से ही संगीत से बहुत जुड़ाव था। उनके पिता विपिन रेशमिया स्वयं संगीत और फिल्म निर्माण से जुड़े रहे। घर का वातावरण संगीत से सरोबर था, इसीलिए हिमेश के मन में भी सुरों के प्रति गहरा लगाव पैदा हुआ। उन्होंने कम उम्र में ही संगीत की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने छोटे पर्दे से की। उन्होंने कुछ टेलीविजन धारावाहिकों का निर्माण भी किया, लेकिन उनका सपना था हिंदी फिल्मों के लिए संगीत तैयार करना। धीरे धीरे उनका यह सपना साकार हुआ और उन्हें फिल्मों में संगीत देने का अवसर मिला। साल 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के कुछ गीतों के माध्यम से उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि उस समय उनका नाम आम दर्शकों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ था, लेकिन फिल्म उद्योग ने उनकी प्रतिभा को पहचानना शुरू कर दिया। श्रोताओं, इनके बारे में और भी जानेंगे, अभी सुनते हैं इनकी पहली फिल्म प्यार किया तो डरना क्या क्या, ये गीत।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म संगीतकार हिमेश रेशमिया के बारे में। वर्ष 2003 में आई फिल्म तेरे नाम उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। सलमान खान अभिनीत इस फिल्म का संगीत पूरे देश में लोकप्रिय हुआ। तेरे नाम, तुमसे मिलना, लगन लगी, ओ जाना, क्यों किसी को जैसे गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इन गीतों में प्रेम, दर्द और संवेदनाओं का ऐसा सुंदर मेल था जिसने लाखों श्रोताओं का दिल जीत लिया। तेरे नाम की सफलता के बाद हिमेश रेशमिया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे व्यस्त संगीतकारों में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्मों में संगीत दिया, जैसे अक्सर, ऐतराज, हमराज, नमस्ते लंदन, अपना सपना, मनी मनी, दिल दिया है, द ट्रेन, रेडी और कई अन्य फिल्मों के संगीत बेहद ही लोकप्रिय रहा।

श्रोताओं, संगीतकार के रूप में हिमेश रेशमिया की पहचान और विशेषता ये रही है कि उन्होंने भारतीय धुनों को आधुनिक संगीत तकनीक के साथ जोड़ा। उनके गीतों में इलेक्ट्रॉनिक बीट्स, मधुर धुनें और याद रह जाने वाले मुखड़े सुनने को मिलते हैं। यही कारण है कि उनके गीत पहली बार सुनने पर ही लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। साल 2005 में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आया, फिल्म आशिक बनाया आपने। इस फिल्म के शीर्षक गीत को उन्होंने स्वयं अपनी आवाज दी। ये गीत उस समय का सबसे चर्चित गीत बन गया। इसके बाद बतौर गायक उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। उनकी आवाज पारंपरिक गायकों से अलग थी, लेकिन यही अलग पहचान उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र और आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम आज के कलाकार में हिमेश रेशमिया के बारे में। साल 2006 में उनका संगीत एल्बम आपका सुरूर रिलीज हुआ। ये भारतीय संगीत उद्योग के इतिहास की सबसे अधिक बिकने वाली गैर फिल्मी एल्बम्स में से एक माना जाता है। इस एल्बम ने यह साबित कर दिया कि हिमेश केवल फिल्म संगीत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्वतंत्र संगीत में भी उनकी मजबूत पहचान है। हिमेश रेशमिया की धुनों की एक विशेषता यह भी है कि वे आम श्रोता के दिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। उनके गीतों की धुनें सरल होती हैं, लेकिन उनमें आकर्षण इतना होता है कि लोग उन्हें बार बार सुनना पसंद करते हैं। यही वजह है कि उनके अधिक गीत आज भी शादी समारोह, पार्टीज, रेडियो कार्यक्रम और संगीत मंचों पर सुनाई देते हैं। एक संगीतकार के रूप में उन्होंने बड़े गायकों के साथ काम किया। उदित नारायण, अलका याग्निक, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, के सोनू निगम, राहत फतेह अली खां और अनेक प्रसिद्ध गायकों ने उनकी धुनों को अपनी आवाज से सजाया। हालांकि हिमेश ने स्वयं भी कई गीत गाए, लेकिन उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि वे केवल गायक ही हैं। उन्होंने हमेशा स्वयं को एक संगीतकार माना, जिसके लिए धुन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संगीत के अलावा हिमेश रेशमिया ने अभिनय की दुनिया में भी कदम रखा। उनकी पहली फिल्म आपका सुरूर थी। इसके बाद उन्होंने कर्ज, रेडियो, द एक्सपोज, तेरा सुरूर, हैप्पी हार्डी एंड हीर जैसी फिल्मों में अभिनय किया। भले ही अभिनय में उन्हें संगीत जैसी सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने नए प्रयोग करने से कभी परहेज नहीं किया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म जिसमें उन्होंने अभिनय किया, आपका सुरूर का ये गीत।

श्रोताओं, किसी भी संगीतकार की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसकी धुन सुनते ही श्रोता उसे पहचान लें। हिमेश रेशमिया ने यह मुकाम अपनी मेहनत, लगन और संगीत के प्रति समर्पण से प्राप्त किया है। यही कारण है कि उनका नाम आज भी हिंदी फिल्म संगीत के प्रमुख संगीतकारों में सम्मान के साथ लिया जाता है। इसी आशा के साथ कि आने वाले वर्षों में भी वे अपने संगीत से श्रोताओं का मनोरंजन करते रहेंगे, आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं विराम करते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी प्राची जैन का प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भारतीय प्रसारण दिवस के उपलक्ष्य में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने संचार की दुनिया को नई दिशा और नई प्रगति प्रदान की है। हमारा आज का विषय है प्रसारण में सूचना तकनीक के बढ़ते चरण। श्रोताओं, प्रसारण केवल समाचार, संगीत और मनोरंजन का माध्यम भर नहीं है, बल्कि ये समाज को जागरूक बनाने, शिक्षा का प्रसार करने, संस्कृति को संरक्षित रखने और देश के

प्रत्येक नागरिक तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम भी है। समय के साथ साथ सूचना तकनीक ने प्रसारण के स्वरूप को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। आज रेडियो केवल ट्रांजिस्टर तक सीमित नहीं है, पॉडकास्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में सुना जा सकता है। यही सूचना तकनीक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारतीय प्रसारण दिवस हमें उस ऐतिहासिक यात्रा की याद दिलाता है जिसकी शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई थी। इसी दिन मुंबई, जिसे उस समय बंबई कहा जाता था, वहां से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने पहली बार नियमित रेडियो प्रसारण प्रारंभ किया। उस दौर में रेडियो एक नई तकनीक थी और लोगों के लिए किसी दूर बैठे व्यक्ति की आवाज सुन पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। हालांकि शुरुआती वर्षों में प्रसारण सेवाओं को कई आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे इसकी उपयोगिता को समझा गया। वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो अर्थात आकाशवाणी की स्थापना हुई। बाद में महान साहित्यकार पंडित नरेंद्र शर्मा द्वारा सुझाया गया नाम आकाशवाणी पूरे देश में लोकप्रिय हुआ। स्वतंत्रता के बाद आकाशवाणी ने राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विविधता और जन जागरूकता को मजबूत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय केवल एक वाक्य नहीं बल्कि उसकी कार्यशैली की आधार है। वर्षों से आकाशवाणी ने समाचार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, साहित्य, संगीत, लोक संस्कृति और आपदा संबंधी सूचनाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य किया है। इस विषय में और भी बात करेंगे। अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के आगरा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्राची जैन। आज हम बात कर रहे हैं प्रसारण में सूचना तकनीक के बढ़ते चरण के विषय में। श्रोताओं, एक समय था जब रेडियो सुनने के लिए लोग बड़े बड़े वॉल वाले रेडियो सेट का उपयोग करते थे। फिर ट्रांजिस्टर आया जिसने रेडियो को हर घर और हर हाथ तक पहुंचा दिया। गांव में किसान खेती से जुड़ी जानकारी रेडियो से प्राप्त करते थे, विद्यार्थी शैक्षणिक कार्यक्रम सुनते थे, परिवार मनोरंजन के लिए रेडियो के आसपास एकत्रित होते थे। उस समय सूचना प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय माध्यम रेडियो ही था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान और सूचना तकनीक ने प्रगति की, प्रसारण का स्वरूप भी बदलने लगा। एनालॉग तकनीक से डिजिटल तकनीक की ओर बढ़ते कदमों ने प्रसारण को अधिक तेज, स्पष्ट, विश्वसनीय और व्यापक बना दिया। अब श्रोता केवल रेडियो सेट तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इंटरनेट, स्मार्टफोन के माध्यम से दुनिया के किसी भी स्टेशन को कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं, जैसा कि आप आज सुन रहे हैं। आज सूचना

तकनीक ने प्रसारण को एक तरफा संचार के बजाय संवाद का माध्यम बना दिया है। अब श्रोता केवल कार्यक्रम सुनते ही नहीं बल्कि मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भी तुरंत दे सकते हैं। यही परिवर्तन आधुनिक प्रसारण की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है।

सुन रहे हैं प्रसारण में सूचना तकनीक के बढ़ते चरणों के विषय में। बीते कुछ दशकों में सूचना और संचार तकनीक ने प्रसारण के हर क्षेत्र को नई दिशा दी है। एक समय था जब रेडियो प्रसारण पूरी तरह तकनीक पर आधारित नहीं था। ध्वनि की गुणवत्ता, सिग्नल की क्षमता और प्रसारण की पहुंच बहुत सीमित थी। मौसम की खराबी या भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई बार प्रसारण स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता था, लेकिन डिजिटल तकनीक के आगमन ने इस स्थिति को बदल दिया है। आज आधुनिक उपकरणों, कंप्यूटर आधारित ऑडियो सिस्टम और डिजिटल रिकॉर्डिंग ने प्रसारण की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। अब कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग, संपादन, प्रसारण अधिक तेज, सटीक और सुविधाजनक हो गया है। सूचना तकनीक का सबसे बड़ा प्रभाव इंटरनेट के माध्यम से दिखाई देता है। पहले रेडियो सुनने के लिए केवल रेडियो सेट की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्ट स्पीकर पर भी रेडियो सुना जा सकता है। इंटरनेट स्ट्रीमिंग ने भौगोलिक सीमाओं को लगभग समाप्त ही कर दिया है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी आकाशवाणी और अन्य भारतीय रेडियो सेवाओं को आसानी से सुन सकते हैं।

श्रोताओं, सूचना तकनीक ने न केवल प्रसारण की पहुंच ही बढ़ाई बल्कि श्रोताओं की भागीदारी को भी बढ़ाया है। पहले श्रोता अपनी प्रतिक्रिया डाक पत्रों के माध्यम से भेजते थे जिनके पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। आज वही प्रतिक्रिया कुछ ही क्षणों में व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल मीडिया या मोबाइल एप्स के माध्यम से प्रसारक तक पहुंच जाती है। इस प्रकार प्रसारण अब एक तरफा संवाद न होकर दो तरफा संचार का माध्यम बन गया है। इसी क्रम में पॉडकास्ट का महत्व भी तेजी से बढ़ा है। पॉडकास्ट ने प्रसारण को समय की सीमाओं से मुक्त कर दिया है। अब यदि श्रोता किसी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नहीं सुन पाता तो वह अपनी सुविधा के अनुसार बाद में उसे सुन सकता है। समाचार, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, इतिहास, स्वास्थ्य और प्रेरणादायक विषयों पर आधारित पॉडकास्ट आज लाखों लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं। सूचना तकनीक का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है क्लाउड तकनीक। पहले प्रसारण सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी संख्या में टेप और डिस्क का उपयोग किया जाता था। आज ज्यादातर सामग्री डिजिटल रूप में सुरक्षित रखी जाती है। इससे वर्षों पुराने कार्यक्रमों को भी आसानी से संरक्षित और पुनः प्रसारित किया जा सकता है। भारत की सांस्कृतिक और धरोहर संबंधी अनेक दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स आज डिजिटल संरक्षण के कारण सुरक्षित हैं। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो श्रोताओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI भी प्रसारण जगत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। AI की सहायता से समाचारों का त्वरित विश्लेषण, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, विभिन्न भाषाओं में अनुवाद, ध्वनि की गुणवत्ता में सुधार और श्रोताओं की रुचि के अनुसार सामग्री प्रस्तुत करना पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल हो गया है। हालांकि तकनीक जितनी भी विकसित हो जाए, संवेदनशील प्रस्तुति, मानवीय भावनाएं और विश्वसनीय पत्रकारिता का स्थान आज भी मनुष्य ही निभाता है। सोशल मीडिया ने भी प्रसारण को नई पहचान दी है। आज रेडियो कार्यक्रमों की झलकियां, महत्वपूर्ण समाचार और विशेष साक्षात्कार और सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत से सोशल मीडिया मंचों पर लाखों दर्शकों तक पहुंचते हैं। इससे प्रसारण की पहुंच और प्रभाव दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अपनी रेडियो साथी प्राची जैन को अनुमति दीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
3: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
2: जी,
3: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
2: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
3: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में NCERT का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है भदो

0: वही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल और गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कान्हाराम चौहान जी का।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
1: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजीत जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
0: विमलेश जी, बाहा या बाहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
1: जी।
0: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
1: जी।
0: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
1: जी।
0: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नववर्ष माना जाता है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
0: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
1: जी,
0: और वहां से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं। फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
1: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
0: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
1: जी।
0: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
1: जी।
0: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
1: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओं, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की
1: जी।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: 8800-4405-559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओ, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
2: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
3: भाग माधव भाग,
4: अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
5: चलो पकड़ते हैं माधव को,
6: हम पकड़ लेंगे।
2: और ये
5: पकड़ लिया।
2: भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसलकर गिर गया।
4: बस चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
2: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया।

0: वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
1: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
2: जी महाराज, जी महाराज।
1: तुम अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूँगा।
3: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
0: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहाँ जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
1: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?
4: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
5: जी महाराज।
4: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
1: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
4: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
1: अच्छा, तो ये प्रकरण है, तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
4: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटे, पेड़ को ना काटे महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
1: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, पेड़ विष्णु दत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
6: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
7: महाराज की जय, महाराज की जय।
0: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
8: उसका ये तो साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे। अब स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
0: राजा वेश बदलकर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
9: आज मैं राजा बनूंगी।
10: आज मैं राजा बनूंगा।
11: आज तो मैं राजा बनूंगा।
12: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
1: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
9: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
5: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
9: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
5: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
10: हमने तो देखा है।
13: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
9: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
5: महाराज की जय हो।
14: जय हो।
5: महाराज की जय हो।
14: जय हो।
0: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
4: महाराज महाराज, जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। हाँ, लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
15: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोद कर निकाल लिया जाए।

0: तेरे महल में स्थापित किया जाए। हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
1: शिला जब खोदकर निकाली गई, तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
2: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये पता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
3: चोरी।
1: राजा ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
3: हाँ, ये सच है। मैंने एक बार अपने एक कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
2: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
1: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
2: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
3: झूठ।
1: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
2: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
3: चोट? वो
1: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन, आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि 4th मूर्ति बोल उठी,
2: ठहरो, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे, उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
1: राजा को क्रोध आ गया,
0: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूं, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। मैं बैठूंगा।
1: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय 4th मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
5: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
6: खूब रंग जमा

0: पानी। अमृत वाला आ गया, अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ। अमृत वाला आ गया, अमृत वाला आ गया।
1: अरे मशकूब भाई।
2: जी जनाब।
1: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है।
2: लीजिए जनाब।
1: लाइए। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यास बुझी। अच्छा ये लो, पैसे रखो।
2: जनाब थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले।
1: रखो रखो।
2: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।
1: गर्मी में पानी पिलाया तुमने। रखो,
2: शुक्रिया
1: शुक्रिया।
0: ये अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग।
3: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी, जो चमड़े की बड़ी सी मश्क पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
4: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
1: मशकूब भाई।
2: जी जनाब।
1: प्यास बहुत लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
2: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, अल्लाह मियां खुश होगा। आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए।
1: लाओ। बस बस।
2: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
1: सही कहा मशकूब भाई।
2: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
1: अभी तक तो कुछ नहीं।
2: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
1: अरे नहीं नहीं
2: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए साथ में।
1: भाई
2: जी,
1: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
2: क्या बात करते हैं,
1: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
2: इसमें नेकी की क्या बात है?
1: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
2: ये तो मेरा फर्ज था।
1: चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ।
2: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
1: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा।
2: अच्छा,
1: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो।
2: ये तो बड़ा नेक काम है।
1: अब ये लीजिए।
2: ये किताब, ये किताब किस लिए?
1: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
2: अच्छा,
1: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
2: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगा।
1: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए।
2: तौबा तौबा तौबा,
1: वरना दवा का असर जाता रहेगा।
2: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे ना लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस नुस्खे के लिए मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
4: अरे भाई, हकीम साहब की दवा में तो कमाल का असर है।
5: जनाब
6: लाजवाब इंसान है वो।
4: क्या बात करता है,
6: क्या बात है,
4: बहुत अच्छे इंसान।
3: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। जूं जूं मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा,
7: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है। हाँ, सख्त गलती की है। अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे।

0: मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए। मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करूंगा।
1: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।
0: पैसा लाए हो?
2: यकीन मानिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
0: जमूर है, खाली आप चले आते हो।
2: खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है अकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए अकीम साहब।
0: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
2: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
0: बच्चे को गोद में उठाओ।
2: बच्चे की जान बचा लीजिए अकीम
0: साहब। चलो निकलो बाहर, निकलो।
2: मर जाएगा ये।
1: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब, शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।
3: अमृत वाला आ गया, क्या खूब।

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बादस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्द आलूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी,
1: मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं, आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ,
1: खैर जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
2: क्या क्या कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
2: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है। कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
2: जी जी जी जनाब,
1: आप लीजिए ये किताब।
2: ये किताब किस लिए?
1: सोना बनाने के राज, मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
2: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
0: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं, तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।
3: ये मैंने क्या कर डाला, ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला।

0: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग चमक।
1: वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
0: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग चमक,
1: कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा,
2: अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं,
0: या खुदा माफ़,
2: अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संग दिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
6: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आप अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक को फिल्म कभी अलविदा ना कहना में। गीत था जावेद अख्तर का और संगीत था शंकर एहसान लॉय का।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म रेड का ये गीत, जिसे आवाज दी थी राहत फतेह अली खान ने। गीत का संगीत था तनिष बागची का और लिखा था मनोज मुंतशिर ने। आइए अब सुनते हैं सोनू निगम को फिल्म साथिया में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत में ढाला है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इस गीत को हमने लिया था फिल्म बंटी और बबली से और इसे गाया था सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था AR रहमान ने। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की।
1: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया, री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के, और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
0: राज्यसभा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले नीट पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने जवाब दिया था कि वो नीट परीक्षा के पेपर लीक सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग रखी है। एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक अहम मीटिंग कल अयोध्या के श्री मनीराम दास छावनी में मुनक्किद हुई। इस मौके पर ट्रस्ट ने वाजह किया कि राम भक्तों का अकीदा पहले की तरह मजबूत है और मंदिर में आने वालों की तादाद मुसलसल बरकरार है। ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के इंतखाब के लिए तश्कील दी गई कमेटी ने दरखास्तों की बड़ी तादाद और अमल की संजीदगी को देखते हुए एक माह के इजाफी वक्त की दरखास्त की थी, जिसे ट्रस्ट ने मंजूर कर लिया है। उस वक्त तक इंतजामी काम को हमवार रखने के लिए सेक्रेटरी की तकरीरी को भी मंजूरी दे दी गई है। रियासत के चीफ सेक्रेटरी एसपी गोयल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम डिवीजनल कमिश्नरों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ हफ्ता वाराना जायजा मीटिंग की सदारत की। इजलास में मर्दुमशुमारी 2027 और असातजा के लिए चीफ मिनिस्टर कैशलेस मेडिकल स्कीम समेत मुख्तलिफ अहम स्कीमों के पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि जैसा कि वजीर आला ने ऐलान किया है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के असातजा को चीफ मिनिस्टर कैशलेस मेडिकल स्कीम के तहत लाया जा रहा है। इस स्कीम का बाकायदा आगाज 26 जुलाई को वजीर आला के जरिए आगरा से होना है। महकमा मौसमियात ने आज से 25 जुलाई तक रियासत में बाज़ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान बारिश की वजह से रियासत की कई अजला में नदियां तिगयानी पर हैं। शारदा नदी पलियाकला लखीमपुर खीरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा नदी भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में महकमा आबपाशी और जिला इंतजामिया ने हिंदन और यमुना नदियों में सैलाब के इम्कान के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।

नमस्कार बहनों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम घर संसार और मैं हूं आपकी सखी वंदना दुली। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, अपनी यादों के पन्नों को जरा पीछे ले जाते हैं और याद करते हैं वो पल जब मनोरंजन का साधन सिर्फ रेडियो हुआ करता था, और सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सूचना का भी महत्वपूर्ण जरिया हुआ करता था। चाहे फिल्मी गीत सुनने हो, देश दुनिया की तमाम खबरें हो या फिर क्रिकेट की कमेंट्री, सब तरफ रेडियो का ही बोलबाला था। समय बदला, रेडियो का स्थान टेलीविजन ने ले लिया और अब मोबाइल में ही सब कुछ उपलब्ध है। अब देखिए ना, आप भी तो मोबाइल के माध्यम से हमारा रेडियो प्रोग्राम सुन रही हैं। रेडियो एक ऐसा साथी जो न केवल हमारी आवाज बनता है बल्कि हमारी भावनाओं को भी समझता है। ये वो माध्यम है जो शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक हर दिल को जोड़ता है। बिना किसी भेदभाव के ज्ञान, मनोरंजन और जागरूकता का संदेश घर घर तक पहुंचाता है। कहते बहनों, शब्दों में बड़ी ताकत होती है और जब यही शब्द रेडियो की तरंगों पर सवार होकर लोगों तक पहुंचते हैं तो वे सिर्फ सूचना ही नहीं देते बल्कि उम्मीद भी जगाते हैं। रेडियो ने समय समय पर समाज को दिशा देने का काम किया है। अब देखिए, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, महामारी का दौर हो या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी, रेडियो हर परिस्थिति में लोगों का विश्वसनीय साथी बना रहा। रेडियो के कार्यक्रमों ने महिलाओं को अपनी बात कहने का मंच दिया, उनकी प्रतिभा को पहचान दिलाई और उन्हें समाज में एक नई पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। और बहनों, रेडियो लोगों के सुख दुख में भी सहभागी बनता है। कभी किसी किसान की कहानी, कभी किसी छात्र की सफलता, कभी किसी कलाकार का संघर्ष, इन सभी अनुभवों को रेडियो पूरे समाज तक पहुंचाता है। मैंने भले ही आज डिजिटल युग है लेकिन इस युग में भी रेडियो की लोकप्रियता बनी हुई है। ऑनलाइन रेडियो, मोबाइल एप्स और इंटरनेट रेडियो के माध्यम से अब

से कहीं अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। बहनों, तकनीक बदल सकती है, लेकिन रेडियो की आत्मीयता और विश्वसनीयता आज भी वैसी ही है। तो आइए, रेडियो प्रसारण दिवस पर हम सभी इस सशक्त माध्यम को नमन करें, क्योंकि रेडियो केवल आवाज नहीं बल्कि हर दिल की धड़कन है।

0: नो, किसी भी समाज की असली ताकत उसकी महिलाएं होती हैं। जब एक नारी शिक्षित, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनती है तो केवल उसका जीवन ही नहीं बल्कि पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। इसी विषय पर है हमारी आज की वार्ता। सामाजिक उत्थान की पहली सीढ़ी है सशक्त नारी, और वार्ताकार है आकांक्षा गुप्ता। आइए सुनते हैं।
1: नारी को सृजन की शक्ति माना जाता है, इसीलिए नारी से ही मानव जाति का अस्तित्व है। आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिसका मतलब है जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। दरअसल समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। देश के सशक्तिकरण व सामाजिक उन्नति के लिए गाँव, समाज एवं प्रदेश का विकास आवश्यक है। इसी तरह गांव के विकास के लिए समुदाय, समाज और परिवार का विकास जरूरी है। इस पूरी कड़ी से समझा जा सकता है कि देश का पूरा विकास परिवार के विकास पर निर्भर करता है। वहीं परिवार में सबसे अहम भूमिका महिलाओं की होती है, जो कि परिवार के विकास की मुख्य धुरी हैं। यदि परिवार की महिलाएं शिक्षित, जानकार एवं समझदार होती हैं तो परिवार उन्नति करता है, क्योंकि परिवार में महिलाओं द्वारा ज्यादा से ज्यादा समय घर के बच्चों के साथ बिताया जाता है और बच्चे की पहली गुरु भी माँ होती है, जो कि उसमें अच्छे संस्कारों का सृजन करती है ताकि वह एक नेक इंसान बन सके। वहीं इसके विपरीत यदि ये संस्कार सकारात्मक ना होकर नकारात्मक हुए या इनकी अनदेखी हुई तो ये भावी पीढ़ी को बिगाड़ने में सहायक होंगे। महिला सशक्तिकरण पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि देश को जगाने के लिए महिलाओं को जगाओ। जब महिलाएं जगकर खड़ी हो जाएंगी तो घर जागेगा, गांव जागेगा और पूरा देश जाग जाएगा। यहां प्रधानमंत्री जी का जगाने से मतलब महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के पूर्ण विकास से था। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा और आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सकें, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सकें। यह वह तरीका है जिसके द्वारा महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सकती हैं। आज के दौर में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं, फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों की चार दीवारी में कैद हैं। उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं सामाजिक उत्थान की पहली सीढ़ी को लेकर, तो बता दें कि ये पहली सीढ़ी कोई और नहीं बल्कि एक सशक्त महिला ही है। वही स्वावलंबन नारी सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। एक सशक्त महिला वह है जो स्वयं के फैसले लेने में सक्षम हो। उसे अपने फैसले लेने के लिए किसी पर निर्भर ना होना पड़े। ऐसा माना जाता है कि यदि स्त्री आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो तो उस पर जुल्म नहीं होंगे, और हुए भी तो कम होंगे, क्योंकि स्वावलंबन औरत का साहस, आत्मविश्वास और स्वाभिमान बढ़ाता है। वहीं विषम परिस्थितियों में प्रतिबंधों को नकारने और उनका डटकर सामना करने के काबिल बनाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि महिलाओं को अबला समझा जाता है, लेकिन उसे अबला बनाने में समाज की बेड़ियों का भी हाथ रहा है। घर में रहकर पूरे दिन चौका चूल्हा से लेकर बच्चों के लालन पालन और घर को सजाने संवारने के बाद भी महिलाओं को हीन भावना का शिकार बना दिया जाता है। लेकिन देखा जाए तो महिलाओं के पास नौकरी ना होते हुए भी घर पर रहकर 24 घंटे की जिम्मेदारी होती है। लेकिन विडंबना तो देखिए, 8 या 9 घंटे नौकरी करने वाला व्यक्ति उसे आसानी से ताना दे जाता है कि घर पर रहकर क्या जानो पैसे कैसे।

0: कमाए जाते हैं। वहीं घर पर रहकर उन्हें इतना दब्बू बना दिया जाता है कि वे बाहर जाने से कतराने लगती हैं। उनके मन में डर बना रहता है कि बाहर उनके साथ कोई घटना ना हो जाए जिससे उनके पति उन पर शक करें या उनके पिता व भाई उन्हें गलत समझें। भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें कई तरह के रिवाज, मान्यताएं और परंपराएं शामिल हैं। इनमें से कुछ पुरानी मान्यताएं और परंपराएं ऐसी भी हैं जो महिला को सशक्त बनाने में रोड़ा बनती हैं। वहीं आज भी कई घरों में लड़कियों और महिलाओं के खाने पीने, पहनने ओढ़ने व पठन पाठन से संबंधित फैसले घर के पुरुष ही करते हैं। अगर यह सोच पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक ना होकर निरपेक्ष हो तो बेहतर सामाजिक ढांचा बनकर तैयार हो सकेगा और आने वाली पीढ़ी इस सोच का शिकार ना होकर सही दिशा में अपने फैसलों को लेने में सक्षम हो सकेगी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब नारी शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, जब हम नारी को शिक्षित करते हैं तो न केवल दो परिवारों को बल्कि दो पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं। वहीं फ्रांसीसी लेखिका और दार्शनिक जिन्होंने स्त्री उपेक्षिका जैसी पुस्तक लिखी, उन्होंने कहा कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। समाज अपनी आवश्यकता अनुसार स्त्री को ढालता आया है, उसके सोचने से लेकर जीवन जीने के ढंग को नियंत्रित करते आया है। लेकिन समाज के उत्थान के लिए आज ये जरूरी हो गया है कि महिलाएं अपने लिए आगे आकर फैसले कर सकें, ताकि जब वे सशक्त तो होंगी तो खुद के विकास के साथ साथ अपने बच्चों को सक्षम बनाने में सहायक हो सकेंगी। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों और कड़ियों को तोड़ने लगेगी तो विश्व की कोई भी शक्ति उसे नहीं रोक पाएगी। भारत में ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है जिन्होंने समाज में बदलाव और महिला सम्मान के लिए अपने अंदर के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसी ही एक मिसाल बनी सहारनपुर की अतिया सावरी। अतिया पहली ऐसी मुस्लिम महिला है जिन्होंने 3 तलाक के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। वहीं तेजाब पीड़ितों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली वर्षा जवलगे करके भी कदम रोकने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ना बंद नहीं किया। इसके अतिरिक्त भी पूर्व में और आधुनिक दौर में कई ऐसी महिलाओं के उदाहरण मौजूद हैं जो समाज की दशा और दिशा सुधारने में प्रयासरत रही हैं। बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है, वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है और अपना निर्णय स्वयं लेती है। महिलाएं हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। इसी वजह से बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता हासिल नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही सही जानना है तो समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो, क्योंकि समाज कितना मजबूत हो सकता है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। आज देश की नारी को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन योजना, उज्ज्वला योजना, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वेमेन, महिला शक्ति केंद्र, जिनके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने में बल मिलेगा। हालांकि महिलाओं ने हर कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है जिससे वे स्वावलंबी होकर अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हैं। जहां एक तरफ महिलाएं अपने हक के लिए लड़ने लगी हैं और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं और उन्हें उनके हक भी दे रहे हैं। इसके साथ ही वे महिलाओं के फैसलों की इज्जत भी करने लगे हैं। कहावत भी है, हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, और औरतों ने अपनी काबिलियत के बल पर ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन अभी भी अधिकांश हिस्सा इससे वंचित है। इसके लिए महिलाओं में चेतना की दरकार है ताकि वे अपनी मानसिकता बदल सकें। स्वावलंबी होने से यह मानसिकता बदली जा सकती है। ऐसी चेतना आर्थिक स्वावलंबन, शिक्षा और संघर्ष के बल पर ही आ सकती है। यह समाज भी सशक्त महिला का ही आदर कर सकता है। समाज में नारी को स्थान पाने के लिए खुद को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मजबूत बनाना होगा, क्योंकि सशक्तिकरण के अभाव में महिलाएं सामाजिक कुरीतियों और प्रतिबंधों से निजात नहीं पा सकती। हालांकि वर्तमान में नारी ने रूढ़िवादी सोच को तोड़ना शुरू कर दिया है, यह सुखद संकेत भी है, लेकिन इस बीच भी उसे आलोचना का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब अपने पद पर स्त्री अडिग रहेगी तो लोगों की सोच उसके प्रति बदलेगी। बस इस दिशा में लगातार प्रयास की जरूरत है। आज की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बड़े से बड़े कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। फिर चाहे काम मजदूरी का हो या अंतरिक्ष में जाने का, महिलाएं अपनी कार्य कुशलता से समाज के उत्थान में लगातार सहयोग दे रही हैं। अबला से सबला हुई नारी, देखो नारी आज, नारी के सहयोग से उन्नत बने समाज।
1: बहनों, अभी आपने सुनी आकांक्षा गुप्ता की वार्ता। सामाजिक उत्थान की पहली सीढ़ी है सशक्त नारी। और अब लेते छोटा सा अंतराल।

मैनू अंतराल से पहले अभी आप सुन रहे थे वार्ता। सामाजिक उत्थान की पहली सीढ़ी है सशक्त नारी, जिसमें आपने सुना कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, लेकिन हम ये कहें कि जब एक महिला वैज्ञानिक सोच अपनाती है तो पूरे समाज को प्रगतिशील दिशा देती है। अब ये वैज्ञानिक सोच क्या है, आइए इसे थोड़ा सा समझते हैं। वैज्ञानिक सोच का अर्थ है कि किसी भी बात को बिना समझे स्वीकार नहीं करना, बल्कि उसके पीछे के कारणों को जानना, तर्क करना और सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेना। यही सोच महिलाओं को अंधविश्वास, भेदभाव और रूढ़ियों से बाहर निकालने की शक्ति देती है। आज महिलाएं अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और शोध जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रही हैं। उनकी सफलता ये साबित करती है कि प्रतिभा का कोई लिंग नहीं होता, आवश्यकता केवल अवसर, शिक्षा और आत्मविश्वास की होती है। घर परिवार में भी वैज्ञानिक सोच बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यदि बच्चे को तेज बुखार है तो झाड़फूंक कराने के बजाय डॉक्टर से जांच कराना, दवा देना और बच्चों को सिर्फ स्वाद देखकर नहीं बल्कि संतुलित आहार, दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल और अनाज, ये सब वैज्ञानिक सोच को ही दर्शाता है। बिनु वैज्ञानिक सोच का मतलब केवल प्रयोगशाला में प्रयोग करना नहीं होता, बल्कि घर के छोटे छोटे फैसलों में तर्क, सही जानकारी और प्रमाण को महत्व देना है। यही सोच परिवार को स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक बनाती है। बहनों, हमें बेटियों को केवल बड़े सपने देखने के लिए ही नहीं, बल्कि सवाल पूछने, प्रयोग करने और नई खोजों के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जिज्ञासा ही विज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो आइए हम संकल्प लें कि महिलाओं को शिक्षा, अवसर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि सशक्त नारी और वैज्ञानिक सोच मिलकर ही एक विकसित, जागरूक और प्रगतिशील भारत का निर्माण कर सकती है। बहनों, बातें तो अभी और भी होंगी आपसे, हम जानकारी नई नई देंगे, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

बहनों, कहते हैं कि किशोरावस्था जीवन का वो दौर है जब बच्चे ना तो पूरी तरह छोटे रहते हैं और ना ही पूरी तरह बड़े बन पाते हैं। इस समय वे चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, उनकी बात सुने और उन पर भरोसा करे। ऐसे में माता पिता और परिवार का दोस्ताना व्यवहार उनके व्यक्तित्व को सही दिशा दे सकता है। बहनों, अक्सर हमारे मन में आता है कि किशोर बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार की जरूरत नहीं होती, उनके साथ तो सख्ती से पेश आना चाहिए अन्यथा वे बिगड़ जाएंगे। पर किशोर बच्चों से दोस्ती का मतलब अनुशासन खत्म करना नहीं है, बल्कि ऐसा रिश्ता बनाना है जिसमें वे बिना झिझक अपनी बात कह सकें। सबसे पहले तो उनकी बातों को ध्यान से सुने, और जब बच्चा महसूस करता है कि उसकी बात को महत्व दिया जा रहा है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अपनी परेशानियां भी खुलकर शेयर करता है। दूसरी बात, हर छोटी गलती पर डांटने या दूसरों से तुलना करने से बचें। इसके बजाय शांतिपूर्वक समझाएं और गलती सुधारने का अवसर दें। इससे बच्चे में विद्रोह की भावना कम होती है और विश्वास भी बढ़ता है। इसके अलावा उनके फ्रेंड्स और उनकी हॉबीज और उनके सपनों में दिलचस्पी लें। कभी कभी उनके साथ टहलना, उनके साथ खेलना या चाय पर बातचीत करना भी रिश्ते को मजबूत बना देता है। और आखिरी बात यह है कि नियम बनाइए, लेकिन नियम बनाने के पीछे की वजह भी समझाइए, क्योंकि जब बच्चों को निर्णयों में, डिसीजंस में हम उनको शामिल करते हैं

0: तो वे नियमों का पालन अधिक जिम्मेदारी से करते हैं। बहनों याद रखिए, किशोर बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है विश्वास, सम्मान और अपनेपन की, क्योंकि कहते हैं कि जब घर का माहौल दोस्ताना होता है तो बच्चे भी अपने मन की उलझनों को परिवार के साथ शेयर करने में सहज महसूस करते हैं। तो बहनों, एक मुस्कान, थोड़ा सा समय और खुलकर की गई बातचीत उनके जीवन की दिशा बदल सकती है।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: मैंने अक्सर कहा जाता है कि घर की असली खूबसूरती उसकी सजावट से नहीं बल्कि उसे संवारने वाले हाथों से होती है। और जब बात सावन की हो, यानी सावन का महीना हो और रिमझिम बरस रहा हो, तो हर महिला चाहती है कि उसका घर भी मौसम की तरह ताजा, हरा भरा और खुशियों से भरा दिखाई दे। तो आइए आज बात करते हैं सावन के स्मार्ट होम की। मैंने सावन का मतलब है नेचर के करीब रहना। घर की बालकनी, खिड़की या ड्राइंग रूम में स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, पोथोस या अरेका पाम जैसे इंडोर पौधे रखें। ये न केवल घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि वातावरण को भी ताजगी देते हैं। पौधे के अलावा घर को ग्रीन थीम देने के लिए कुशन कवर, टेबल रनर या सोफे में हरे, हल्के पीले या मिट्टी के रंगों का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये रंग सावन के मौसम से मेल खाते हैं और घर को प्राकृतिक लुक भी देते हैं। मैंने क्या होता है कि सावन में नमी बढ़ जाती है, इसलिए लकड़ी के फर्नीचर को सूखे कपड़े से साफ करें। अलमारी और स्टोरेज में कपूर या सिलिका जेल के पाउच रखें ताकि सीलन और बदबू ना हो। आप चाहें तो प्राकृतिक खुशबू जैसे लेमन ग्रास, चंदन या मोगरी की खुशबू वाली मोमबत्तियां या डिफ्यूजर इस्तेमाल करें। इससे घर में ताजगी भी बनी रहेगी और मानसून का आनंद भी दोगुना हो जाएगा। मैंने बाहर बारिश की रिमझिम बूंदे गिर रही हूं और आप घर के किसी एक कोने में आरामदायक कुर्सी पर बैठी हूं, छोटी सी मेज पर एक पौधा हो और उसमें आपकी कुछ पसंदीदा किताबें हों, चाय की चुस्कियों के साथ यह आपका सावन रिलैक्स कॉर्नर बन जाएगा। याद रखिए, स्मार्ट होम का मतलब सिर्फ महंगे इंटीरियर नहीं बल्कि ऐसा घर है जो मौसम के अनुसार आरामदायक, व्यवस्थित और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो। इस सावन अपने घर को हरियाली और खुशियों से सजाइए और हर दिन को बनाइए खास। इसी खूबसूरत एहसास को और भी खास बनाता है ये सदाबहार गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे परवेज मेहंदी की गाई चंद गजलें। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब सुनेंगे आप अंग्रेजी में समाचार।

0: Rules, artistic gymnastics, netball, boxing and judo make up the schedule for the game. The Indian contingent comprises 125 members, including para-athletics. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for persons involved in paper leaks. Prime Minister Narendra Modi assures that protecting students' future remains government's top priority. Government ready to discuss any issue, including NEET, in Parliament, says Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju. India calls for zero tolerance against terrorism at ASEAN ministerial meeting in Manila. India rejects Pakistan's remarks on the Indus Waters Treaty at UNSC, says treaty to stay in abeyance until cross-border terror ends. And Glasgow Commonwealth Games set to begin this evening, 125 Indian athletes to participate. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
2: आप जिस हिसाब से सदन में सरसा चाहते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सरकार क्लियर कट बताया है सदन में सरसा करने

0: सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है, सदन ऐसे बाधित करेंगे ये ठीक नहीं है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
3: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
1: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
1: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
5: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
1: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्र ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी।

0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र खुले समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर ये जवाब दिया।
1: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
2: इज रेगुलरली डिप्लॉयड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी।
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजो डॉन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयोरकर बोर्डचवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृहमंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा

जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 2:30 हुए हैं उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का राग अहीर भैरव में ख्याल गायन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे परवेज मेहंदी की गाई चंद गजलें। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। माफ कीजिएगा, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का ख्याल गायन, राग था राग अहीर भैरव। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 2:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म रस्मे उल्फत, ये गीत जिसे हमने फिल्म दिल की राहें से लिया था। गीत के बोल हैं नक्श लयालपुरी के और संगीत है मदन मोहन का। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर को ही फिल्म मेरा साया में। राजा मेहंदी अली खां की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया है मदन मोहन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को फिल्म जब जब फूल खिले में। आनंद बख्शी की शब्द रचना को सर्पद किया था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 3 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म कभी खुशी कभी गम से हमने लिया है, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार, उदित नारायण और सोनू निगम ने। गीत के बोल है समीर के और संगीत है जतिन ललित का।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

आनंद बख्शी की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था जतिन ललित ने। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला गीत, जिसे हमने फिल्म दिल चाहता है से लिया है। गीत को आवाज दी है शान और कविता कृष्णमूर्ति ने, लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन को फिल्म कल हो ना हो में। जावेद अख्तर की शब्द रचना को सरबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। आइए अब सुनते हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर के स्वर में फिल्म सलामे इश्क का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर को फिल्म सलाम ए इश्क में। इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। फैटी लिवर की समस्या, कारण, लक्षण और निदान विषय पर डॉक्टर अभिषेक अरोड़ा से अनिंद्र सिंह की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी आगरा के इस साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आपका फिर से स्वागत है। मैं अनिंद्र सिंह, आज विश्व यकृत दिवस यानी वर्ल्ड लीवर डे के अवसर पर आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। आपके लीवर के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे लीवर से जुड़ी उन तमाम बातों पे जिन्हें शायद हम कुछ बातों को जानते भी होंगे और कुछ के बारे में शायद कुछ भ्रम भी पाले होंगे, क्योंकि आपको ये एहसास होना चाहिए कि स्वस्थ यकृत जो है वो हमारे स्वस्थ शरीर को, हमारे स्वस्थ जीवन का आधार कह सकते हैं इसको। आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए शहर के स्वास्थ्य ढांचे की रीढ़ कहे जाने वाले हमारे एसएन मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक अरोड़ा जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो पेशे से एक गैस्ट्रो सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार सर, बहुत बहुत
1: डॉक्टर साहब, ये जो गैस्ट्रो सर्जन है, सबसे पहले तो हम श्रोताओं की जानकारी के लिए यही आपसे पूछेंगे कि ये गैस्ट्रो सर्जन क्या होता है।
2: सर, गैस्ट्रो सर्जन माने लिवर, गॉल ब्लैडर, पित्त की नली, अन्य जो भी पेट के अंदर ग्रंथियां हैं हमारे, आंत से रिलेटेड हो गया, पेट हो गया, खाने की नली भी, इन पैंक्रियाज का, इन सब के ऑपरेशन करने वाले लोगों को गैस्ट्रो सर्जन बोलते हैं।
1: ठीक बात। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि हमारे लिए, हमारे शरीर में लीवर जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, इसका काम क्या होता है।
2: सर, लीवर हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक है। ये पाचन में सहायता करता है, पोषक तत्वों के उपयोग में भूमिका निभाता है और शरीर के कई रासायनिक कार्यों का संतुलित करता है।
1: माने जो हम खाते हैं उस पूरे खाने को शरीर तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक कहें, जिस रूप में उन्हें चाहिए उसमें पहुंचाने का काम करता है।
2: जी, एकदम ठीक कहे आप
1: जी। और क्या क्या काम, इसके अलावा भी कोई काम है लीवर के मोटे तौर पे?
2: मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि कोई शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, वो जब आप खाना पीना नहीं भी खा रहे हैं तो लीवर इंश्योर कर, ये ध्यान रखता है कि शरीर के अंगों को किसी भी चीज की कमी ना हो, उनको शुगर की, ग्लूकोज की जब भी आपूर्ति लीवर से होती है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, ऐसे ही होम्योस्टेसिस हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो बना के रखता है।
1: माने शरीर के विभिन्न अंगों को जो भी चीजें चाहिए
2: जी,
1: जब चाहिए, उसमें एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है।
2: जी, एकदम ठीक।
1: आजकल के संदर्भों में अगर हम बात करें तो एक बड़ा ही कॉमन बीमारी सुनने को बहुत मिलती है, फैटी लीवर। तो ये फैटी लीवर क्या है?
2: सर, फैटी लीवर एक बहुत ही आज की तारीख में कॉमन बीमारी हो गई है। इसमें क्या होता है कि लीवर में, सिर्फ लीवर की मैं बात नहीं करूंगा, बाकी अन्य अंगों में भी, हार्ट में भी, बाकी अंगों में भी फैट जमा हो जाता है, सीधी भाषा में
1: माने चर्बी जमा हो,
2: चर्बी जमा हो जाती है। तो जब ये लीवर में या कहीं, लीवर की बात करते हैं आज यकृत दिवस है, तो लीवर में जैसे फैट, अगर चर्बी जमा होती है वो वहां पे इन्फ्लेमेशन कराती है, माने उससे सूजन होना और उससे लीवर को नुकसान पहुंचता है सीधी भाषा में।
1: तो वो जो सूजन कह

0: हैं उसी को हम फैटी लीवर का एक नाम देते हैं क्या?
1: जी, उसका बेसिकली अलग अलग स्टेज है। मतलब शुरू में सिर्फ चर्बी जमा होना हल्की फुल्की, वो रिवर्सिबल रहता है शुरू में, जो कुछ वजन कम करने, व्यायाम करने, इन सब चीज़ों से वो कम भी हो जाता है,
0: शुरुआत
1: लेकिन
0: में अगर कहीं
1: शुरुआत
0: चर्बी
1: में
0: जमा हो रही है तो 5-10% की अगर हमारी जो वसा है
1: जी
0: उसको हम पिघला भी सकते हैं
1: एकदम
0: अपने एक शारीरिक जो व्यायाम है उनके जरिए। कोई थोड़ा सैर सपाटा करके सुबह की सैर अगर करता है तो उससे भी किया जा सकता है।
1: एकदम नियमित व्यायाम बहुत ज़रूरी है। वजन नियंत्रण एंड संतुलित आहार, ये तीन चीज़ें फैटी लिवर के लिए सबसे अच्छी, यही चीज़ है ज़्यादा देन कोई और दवा।
0: एक चीज़ और जो आजकल बहुत ही कॉमन देखी जा रही है वो है बच्चों में इस फैटी लीवर की समस्या,
1: जी,
0: तो उसका क्या वजह है?
1: बच्चों में भी देखिए, इस पूरी बीमारी को हम लोग टेक्निकल टर्म में MASLD का नाम देते हैं।
0: जी
1: इसमें क्या है कि शरीर का जो पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज, अगर मैं तकनीकी शब्द का इस्तेमाल करूँ तो, इसमें क्या होता है कि जो खाने पीने का, और आजकल के बच्चे बाहर खेलना कूदना थोड़ा कम हो गया है,
0: फिजिकल
1: मोबाइल
0: एक्सरसाइजेस
1: फिजिकल
0: कम।
1: एक्सरसाइज कम हो गया है, मोबाइल पे स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है, खाने पीने में अगर बोलें तो आसानी से सब उपलब्ध है,
0: जंक
1: जंक
0: फूड
1: फूड बढ़
0: जिसको हम
1: गया है।
0: पैकेज फूड है।
1: जी एकदम, वो सब बढ़ गया है, तो उसकी वजह से फैटी लिवर जो पहले सिर्फ बड़े लोगों में देखा जाता था, वो आजकल बच्चों में भी देखने को मिल रहा है।
0: ये तो बच्चों की बात हो गई। मोटे तौर पे अगर हम समझना चाहें श्रोताओं के लिए तो कौन से वो लोग होते हैं जो लीवर के जो बीमारियां हैं उनको खतरा रहता है?
1: देखिए, लिवर का सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो एक शराब से है। जो भी लोग शराब लेते हैं उनको ये, जो ऐसा नहीं है कि जो फैटी लिवर है ये सिर्फ बिना शराब पीने वालों को हो रहा है, अल्कोहल से अपने आप में एक नुकसान होता है लिवर को, उसके बाद अगर आपका खाना पीना भी ठीक नहीं है उससे और नुकसान होगा। फिर एक हम वायरल हेपेटाइटिस जिसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जो है ये मतलब फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस हैं जिनमें इन्फेक्शन के संक्रमण की वजह से लिवर को डायरेक्ट नुकसान भी होता है और लंबे समय तक सिरोसिस और उसके बाद लिवर कैंसर का भी रिस्क होता
0: खतरा
1: है।
0: रहता है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज है,
1: जी
0: आमतौर पे देखा जाता है कि ये मधुमेह की बीमारी सभी को आजकल कुछ सर्टेन एज के बाद देखने को मिलती है, इवन बच्चों में भी आजकल मिल रही है। बीपी हर दूसरा तीसरा व्यक्ति देखते हैं ब्लड प्रेशर का शिकार है। फिजिकल एक्टिविटीज जैसे आपने कहा कि कम हो रही हैं, बच्चे हैं बाहर निकलते नहीं हैं, डिजिटल दुनिया हो गई है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज कम हैं, तो ऐसे जो एरियाज हैं, ऐसे जो टारगेट्स हैं, वो लोग शायद ज़्यादा प्रोन हैं इसके।
1: जी एकदम ठीक कहे। देखिए, आजकल डिजिटल दुनिया है, इसके चलते बच्चों का खेल कूद कम हो गया है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, यही चीज़ बड़े लोग करते हैं, वही चीज़ बच्चे देखते हैं, फिर वही वो लोग करते हैं, तो इस वजह से जो व्यायाम की कमी है, जो खाने पीने में जंक फूड जो बढ़ गया है, यही सब के चलते लिवर को डैमेज, जो फैटी लिवर जिसकी हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, ये सब होता है दिक्कत।
0: अच्छा, ये जो फैटी लीवर होता है, शुरुआती कोई संकेत आता है, कैसे पता लगता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं किसी में अगर फैटी लीवर हो रहा है, उसकी शुरुआत है?
1: देखिए, शुरुआती में बिल्कुल कोई बता नहीं सकता कि फैटी लिवर हो रहा है बिना किसी जांच के, कोई इसका सिम्टम जिसको हम बोलते हैं नहीं आता है।
0: तो सही, तो बड़ी चिंता की बात है कि आपको कोई सिम्टम भी नहीं आएगा और आप बीमारी से भी ग्रसित होते जा रहे हैं।
1: जी सर, देखिए ऐसा है कि आप अगर बीमारी पे ध्यान ना दें, आप फिटनेस जिसे कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर पे ध्यान दें, ओवरऑल अगर शरीर आपका स्वस्थ रहे, वही जैसे हम पहले भी बोले, व्यायाम कर रहे हैं, स्वस्थ आहार खा रहे हैं, ये सब अगर, वजन पे नियंत्रण है, ये सब अगर हम लोग ध्यान रखें तो हमें ये सब चीज़ की चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर किन्हीं को लग रहा है कि मोटापे से ग्रस्त हैं, दिक्कत है, वो लोग स्क्रीनिंग करा सकते हैं।
0: तो सर्टेन पीरियड के बाद आपको चेकअप्स कराने ज़रूरी
1: जी
0: हैं जिससे आपको पता लग सके कि आप में कहीं इस समस्या का जो है शुरुआत तो नहीं हो रही है।
1: बिल्कुल, एक बहुत ही सिंपल सी अल्ट्रासाउंड की जांच है, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, अगर कभी किसी को शंका है तो अल्ट्रासाउंड से फैटी लिवर का काफी अच्छे से पता चल जाता है।
0: वैसे कोई पता नहीं लगता है, वैसे कोई संकेत या लक्षण
1: कोई
0: आपको नजर
1: संकेत
0: नहीं
1: ऐसे
0: आते?
1: नहीं पता चलता। लिवर एक बहुत ही आधुनिक ऑर्गन है जो कि जब तक पूरी तरह से ग्रस्त ना हो वो कोई संकेत नहीं देता है।
0: तो ये तो बड़ी चिंताजनक बात भी है एक तरह से कहें। सामान्य तौर पे हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो स्वस्थ हूँ, अगर खा पी रहा है थोड़ा अगर वजन बढ़ भी जाए।

0: आता है बच्चों में खास तौर से, तो कहते हैं बच्चा खाता पीता तंदुरुस्त है, शायद वो ख्याल भी नहीं करते कि वजन बढ़ रहा है, और ये वजन बढ़ना जो है कहीं ना कहीं उसको नुकसान दे सकता है, फैटी लीवर की तरफ लेके जा सकता है। तो शायद इतनी आसानी से ये दिमाग में, ये जहन में नहीं आता कि हमारे को भी कोई बीमारी है तो मुझे चेकअप कराना चाहिए।
1: तो लिवर एक हमारा ऐसा अंग है जो कि जब तक 70-80% तक क्षतिग्रस्त नहीं है, काम कर रहा है, एक चौथाई भी काम कर रहा है, तो शुरू में कोई संकेत नहीं आता है। संकेत की मैं बात करूं तो पीलिया होना, भूख कम लगना, पेट में पानी होना, और जिसे कहते हैं कि अच्छा सा ना लगना, बेसिकली एक मन से खराब वो लगता है, वो संकेत
0: अनमना
1: रहते
0: सा
1: हैं,
0: लगना,
1: अनमना सा लगना, ये सब संकेत होते हैं, लेकिन ये बहुत देर से आते हैं हमें इन
0: आदमी
1: सब
0: को समझ में भी नहीं आता कि ये कुछ बीमारी भी हो सकती है। कभी कभी
1: जी
0: होता है कि हमारा मूड ठीक नहीं है, हो सकता है कोई चीज अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन अगर ये बार बार आपके साथ हो रहा है तो शायद समस्या है।
1: शायद समस्या है। देखिए, लेकिन ये बात भी कहनी, लोगों को डराना ठीक नहीं होगा कि सब इसके लिए डॉक्टर के पास या जांच के लिए भागें। अगर आपका शरीर वैसे स्वस्थ है, आप को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपका डायबिटीज़ वगैरह या बीपी ये सब चीज़ नहीं है, आप फिट हैं, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में व्यायाम कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत
0: नहीं,
1: नहीं है।
0: अगर किसी को मोटापा है, कोई अगर उसके पारिवारिक हिस्ट्री है, किसी को बीपी की समस्या रही है घर में, या किसी को डायबिटिक है कोई अगर घर में, और उसको भी संभावना हो सकती है, तो ऐसे लोगों को एक दे आर प्रॉन, तो उनको थोड़ा संभलने की जरूरत
1: जी
0: है।
1: सर, जैसा आप कहे, इसको हम एक वही मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम का शब्द देते हैं
0: जी
1: कि बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, मोटापा हो गया, ये सब जो
0: आपस में
1: चार
0: रिश्तेदार
1: आस
0: बीमारियां
1: पर
0: हैं।
1: आस पर आपस में रिश्तेदार बीमारियां हैं, यही ये चीज जो है ये समझना बहुत जरूरी है कि लोग ये समझते हैं कि हाँ ठीक है, हम मोटे, हमको तो और कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई बीमारी नहीं है, आप हमें मोटा काहे कह रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में मोटापा को एक बीमारी के रूप से ही देखा
0: सारे
1: जाता
0: सारे
1: है।
0: बीमारियों की जड़ शायद जो है वो मोटापा में ही है।
1: हाँ
0: वो
1: जड़,
0: आपको कई बीमारियों की तरफ मोड़ सकता है।
1: हाँ जड़ भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि ये सारी बीमारियां एक साथ होती हैं, मतलब इनके जो वजह हैं वो एक ही हैं, तो उसको अगर हम अलग से लें, सबको बीपी है, शुगर है, मोटापा है, फैटी लिवर है, ये सब चीज़ों को अगर हम अलग से लें तो वो ठीक नहीं होगा, सबको एक जैसा मानना है, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम का जो हमारा शब्द रहता है उसके लिए वही जो हमने पहले बताया वो सब चीज़ें करनी है।
0: तो आपकी जो जीवन शैली है
1: जी
0: वो स्वस्थ दिनचर्या होनी चाहिए। आपको सुबह समय पे उठना है,
1: जी
0: समय पे सोना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: जी एकदम। देखिए, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे लोगों का बहुत फास्ट लाइफ हो गई है आजकल,
0: बिल्कुल,
1: उठ के एकदम काम पे भागना है, फिर काम से दूसरे मतलब और भी काम रहते हैं, घर पे है ये हो, अपने लिए लोगों के पास समय नहीं रहता, वे कहते हैं मैं कैसे
0: एक्सरसाइज करूं,
1: एक्सरसाइज करूँ।
0: समय ही नहीं है।
1: जी, और ये सब चीज़ों पे इंसान फिर सोचता नहीं है, जो खाने को मिल जाता है, अभी मतलब पूरा दिन काम कर रहे थे, इस टाइम नहीं मिला, अभी क्या हुआ, सब भूख लगी, समोसा खा लिया, जलेबी खा लिया, जो मिला मार्केट
0: नहीं
1: से
0: तो
1: मंग
0: कहीं
1: खा
0: से
1: लिया,
0: ऑर्डर कर लिया कुछ
1: कहीं से
0: भी।
1: ऑर्डर कर लिया। आजकल ये भी, हाँ इनका भी कहना ज़रूरी है, ये जोमेटो स्विगी ये सब जो अभी बहुत कॉमन हो गया है, सब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सब मंगा रहे हैं, इनको मैं गलत नहीं कहूँगा,
0: जी
1: लेकिन इनका जो चलन है बहुत ज़्यादा हो गया है,
0: माने
1: मतलब
0: जो ये इमरजेंसी अर्जेंसी की बात दूसरी
1: जी
0: है, लेकिन वो अगर आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं तो समस्या
1: तब ये
0: है।
1: समस्या की बात है फिर।
0: ठीक बात डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में अभी हम और आगे बातें करेंगे अपने खान पान की। जैसा आपने कहा कि वो एक हमारे लिए एक ऐसा एरिया है जिस पे हमें बात करने की आवश्यकता है। इस मुकाम पे अगर मैं ये कहूँ कि आपको अपनी पसंद का एक गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाना है, तो कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
1: जी सर, आशा भोसले जी का रिसेंटली स्वर्गवास हुआ, उन्हीं के याद में कोई भी गीत जो आप चाहें वो चला दीजिए।
0: जी, तो आशा भोसले जी का, उनको समर्पित डॉक्टर साहब की पसंद का एक गीत श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब वापस आते हैं और अब हम बात करेंगे खान पान की, क्योंकि जीवन शैली सुधार से इसके जो बुरे प्रभाव हैं उनसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया था कि लीवर जो है वो 70% तक डैमेज हो जाए उसके बाद भी काम करता रहता है, तो 30% बचता है लीवर, तब जाके कहीं हमें एहसास होता है कि हमारा लीवर जो है वो डैमेज हो रहा है।
1: देखिए, ये जो 70 और 30% है ये कोई ऐसे जांच किए हुए नंबर नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि देर से पता चलता है कि लिवर में कोई डैमेज है भी, कोई संकेत देर से आते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में जीवन शैली में अगर सुधार करें या अनियंत्रित भोजन लें, ये सब करते हैं, तो फैटी लिवर के उपचार का मुख्य आधार बेसिकली वजन कम करना, संतुलित भोजन लेना, नियमित व्यायाम करना, शराब से बचना है। जो फैटी लिवर जिसकी बात कर रहे हैं उससे डरना और उससे
0: कहने का आपका आशय यह है कि फूड जो है आपका जो इनटेक है वो एक मेडिसिन है। आपको ये समझना है कि फूड हम क्या ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, उसके प्रति अगर आप सजग हैं, सतर्क हैं, तो आप अपने लीवर को ज्यादा बेहतर जीवन दे सकते हैं, बेहतर उसको तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं।
1: देखिए, स्वस्थ रहने के लिए जो खाना पीना है वो संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। जो तला भुना भोजन, मीठे पेय जितने भी हैं, अधिक चीनी, सफ़ेद ब्रेड, प्रोसेस्ड मांस, अत्यधिक कैलोरी वाले भोजन जो भी हैं उनसे बचना चाहिए। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, नियंत्रित मात्रा में भोजन लेना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर ध्यान रखें तो फैटी लिवर और इन सब समस्याओं से बचा जा सकता है।
0: अच्छा, एक चीज़ और आजकल डॉक्टर साहब चलन में है, आजकल तो इंटरनेट है और सभी लोग ज्ञानी भी अपने आप को समझ रहे हैं, हर किसी व्यक्ति को देखो तो वो बताता है कि ये खाओ तो लीवर डिटॉक्स हो जाता है, ये पियोगे तो लीवर डिटॉक्स हो जाता है, तो क्या ये बात ठीक है और
1: नहीं, ये
0: इस
1: आपने
0: पे आप
1: बहुत
0: क्या
1: अच्छी
0: कहेंगे?
1: बात कही।
0: जी
1: ये मैंने बहुत देखा ये भी कि बहुत चलन है आजकल इन सब चीज़ों का। देखिए, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम ही डिटॉक्स है। आपके शरीर का लिवर सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसका काम ही डिटॉक्स करना है। तो आप अगर ये बोलें कि कोई एक चीज़ खाने से लिवर डिटॉक्स हो रहा है
0: तो आप गलत फहमी में
1: तो
0: जी रहे
1: गलत
0: हैं।
1: फहमी में जी रहे हैं। लिवर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है डिटॉक्स होने के लिए, वो अपने आप डिटॉक्स हो सकती है, बस उसको टॉक्स ना करे
0: ये तो उस तरह का हो गया कि
1: माने
0: एक डॉक्टर को हम बता दे रहे हैं कि ये दवा खाओ।
1: देखिए,
0: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वैसे तो बता ही दिया कि क्या हमारे लीवर के लिए खाना अच्छा है, किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, कोई स्पेशल डाइट प्लान्स भी हो सकते हैं क्या?
1: डाइट प्लान्स किसी, मैं मानता हूं कि हर इंसान के लिए एक अलग डाइट प्लान है। बेसिकली जो लोग वो नियमित रूप से भोजन खा रहे हैं उसमें ज्यादा कुछ भी चेंज करना एक ठीक बात नहीं है, क्योंकि उसको लंबे समय तक चलाना फिर मुश्किल हो जाता है।
0: और
1: कोई
0: वो
1: भी
0: भी जो है पर्सन टू पर्सन डिफर करता है
1: पर्सन टू
0: शायद,
1: पर्सन डिफर
0: क्योंकि अगर
1: करता
0: कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लिए कुछ डाइट प्लान अलग होते
1: जी।
0: हैं, एक सामान्य व्यक्ति है तो उसके लिए अलग डाइट्स होती हैं, और जो सामान्य दिनचर्या में हम खाते हैं वो शायद उसके लिए संपूर्ण आहार के तौर पर काम करता है, लेकिन अगर कोई मेहनत मजदूरी करता है तो थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से देखना होता है।
1: देखिए, डाइट के लिए अगर मैं बताऊं तो एक चीज़ जानना, मेरे को लगता है सबको जानना चाहिए, हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको बोलते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तीन चीज़ें हैं जिनका सबको एक थोड़ा अंदाज़ा होना
0: मोटा
1: चाहिए,
0: अंदाजा होना
1: मोटा
0: चाहिए।
1: अंदाज़ा होना चाहिए कि वो कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बाकी जो चीज़ें हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, आयरन है, कैल्शियम है, जितनी चीज़ें हैं ये सब बाद में आती हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि कितना फैट खा रहे हैं, कितना प्रोटीन खा रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कितना हर एक इंसान को चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सबके लिए वो सेम है, सबके लिए अलग है।
0: ठीक,
1: तो अपने जो भी भोजन आप खा रहे हैं उसमें आप कोशिश कीजिए कि प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ाई जा सके, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम की जा सके, तो ये जो मेटाबॉलिक डिजीज हैं ये कम होते हैं फिर।
0: तो डॉक्टर साहब ज़्यादातर बातें तो शायद लीवर के लिए स्वस्थ रखने के लिए उसको आपने बता ही दी हैं। चलते चलते कोई और विशेष बात या कोई संदेश हमारे श्रोताओं तक आप पहुंचाना चाहें?
1: देखिए, एक चीज़ वही लिवर की जैसे बात कर रहे थे, उसमें बहुत सारी जो भी बीमारियां होती हैं, लिवर एब्सेस मैंने बहुत देखा हमारे एसएन मेडिकल कॉलेज में, बहुत मरीज आते हैं, लिवर में घाव बन जाता है, जो जहां पस बन जाता है, लिवर एब्सेस जिसको बोलते हैं। उसमें क्या रहता है कि किसी नॉर्मल व्यक्ति को वो हो ही नहीं सकता। मतलब जब तक लिवर आपका एकदम क्षतिग्रस्त नहीं है

0: तब तक वो बन ही नहीं सकता,
1: वो मतलब एंड स्टेज में, लास्ट स्टेज में जाके वो
0: लास्ट स्टेज
1: चीज
0: भी कहना ठीक नहीं होगा मतलब, लेकिन
1: काफी लेट की
0: हाँ कि
1: स्थिति
0: लिवर
1: है।
0: को कुछ चीज डैमेज कर रही है बेसिकली, तभी वो बन सकता है, अपने आप नहीं बन सकता। तो हम लोग मानते हैं जो लोग शराब पी रहे हैं उन्हीं लोगों में वो ज्यादा होता है, तो लिवर के लिए शराब एक बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं कि खराब चीज है, क्योंकि लिवर का काम है वही जैसे मैंने बताया डिटॉक्स करना, लिवर का काम है। तो थोड़ा सा आप शराब देंगे लिवर उसको शरीर से हटाएगी, बाकी अंगों को नुकसान नहीं होने देगी। आप ज्यादा लेंगे लिवर फिर भी हटाएगी, लेकिन उसके बाद वो खुद
1: डैमेज होना
0: डैमेज हो
1: शुरू हो
0: जाएगी।
1: गया,
0: तो
1: जो बाकी के अंग हैं उनको बचाने से तो रह ही रही, वो खुद ही क्षतिग्रस्त हो जाएगी।
0: जी तो शराब हो गया, इवन अभी वही जो जैसे अभी आजकल मोटापे की बात हम कर रहे हैं फैटी लिवर, वो भी उसी राह पे जा रहा है बेसिकली। वो जो लिवर डैमेज है वो उससे भी होता है, कम संख्या में बट उससे भी होता है। और यही वायरल हेपेटाइटिस जिसका बात कर रहे थे तीसरा, ये सबसे कॉमन वजह हैं जिनकी वजह से

0: रहे हैं फैटी लिवर, वो भी उसी राह पे जा रहा है बेसिकली। वो जो लिवर डैमेज है वो उससे भी होता है, कम संख्या में बट उससे भी होता है। और यही वायरल हेपेटाइटिस जिसका बात कर रहे थे तीसरा, ये सबसे कॉमन वजह हैं जिनकी वजह से लिवर डैमेज होता है। उसके बाद लिवर के कई बीमारियां, उनमें से मैं बस एक एग्जाम्पल दिया लिवर एब्सेस का, बाकी कई बीमारियां जो भी, इवन लिवर का जो कैंसर है, लिवर का जो सिरोसिस है, बेसिकली वो अपने आप नहीं होता है, पहले कोई बीमारी होती है उसके बाद ही होता है, अपन ऐसे नहीं हो जाता है हेल्दी लिवर में।
1: ठीक बात। तो आपको अपनी जीवनचर्या दिनचर्या उसको स्वस्थ रखना है, आहार का जैसा डॉक्टर साहब ने बताया उस पर पूरा नियंत्रण रखना है कि क्या हमको खाना है और कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, और अल्कोहल यानी शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि स्वस्थ यकृत जो है वो आपके स्वस्थ जीवन की नींव है। उसके स्वास्थ्य के लिए अपने आहार को आपको जानना जरूरी है। आपका हरने वाला आपकी लीवर को प्रभावित करता है, इसलिए जो भी खाएं समझदारी से खाएं। डॉक्टर साहब आप हमारे श्रोताओं के साथ आकर हमारे स्टूडियो में जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद सर।
2: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में अभी आप सुन रहे थे फैटी लिवर की समस्या कारण लक्षण और निदान विषय पर डॉक्टर अभिषेक अरोड़ा से अनिंद्र सिंह की बातचीत। कार्यक्रम का आज पुनः प्रसारण किया गया। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक स्थगित। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक दूसरे के देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारतीय रेलवे ने 440 करोड़ रुपए की लागत से निमपुरा पश्चिम आउटर कैबिन और दक्षिण पूर्वी रेलवे के मिदनापुर के बीच तीसरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। भारत का आसियान में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि रुकी रहेगी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और कॉमनवेल्थ गेम्स आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए

आज हम एक और नए दिन की तरफ आगे अग्रसर हो रहे हैं। आज भारत के लिए एक और नया दिन, आज इस विश्व के लिए एक और नया दिन, नई उम्मीदें, नए ख्वाब या फिर नई चिंताएं, नए लक्ष्य, नई आवाज, नई पहचान, नया दिन, नई रात, नए लोग, नए विचार, और इन सब के पीछे भारत की वो नींव जो सदियों से कई करोड़ लोगों ने रखी। संदेश टू सोल्जर्स में हम बात करते हैं हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के उन जवानों की, उन अफसरों की, जिन्होंने अपने शौर्य की गाथा गाने पर मजबूर कर दिया, देश के प्रति अपना योगदान, अपना समर्पण देने के लिए वो पीछे नहीं हटे। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम पर, महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 के वॉर हीरो, इंडियन एयरफोर्स के लेट विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम। कैनबरा की फ्लाइंग स्क्वाड्रन का हिस्सा थे, अफ्रीका के देश कांगो में यूएन पीस कीपिंग फोर्स का एक हिस्सा रहे। 1965 और 1971 की जंग में हमारे लड़ाकू विमान को उन्होंने दुश्मन की उस चालाकी, उस चुनौती के सामने ला खड़ा कर दिया और भारत के लिए विजयी परचम लहराया।

हम फिर से गाथा गाएंगे हमारी इंडियन एयरफोर्स की, जिसके साथ न जाने कितने टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ और जाबाज पायलट इसका हिस्सा है।

देश टू सोल्जर्स में आज हम बात कर रहे हैं लेट विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की महावीर चक्र से जो सम्मानित किए गए। इसके साथ साथ उन्हें वायुसेना मेडल भी दिया गया। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, वक्त है अपने वॉर हीरो से अपने देशवासियों को मिलाने का, इसीलिए संदेश टू सोल्जर्स में हम लेकर आए हैं कहानी नहीं बल्कि हकीकत विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। इनका जन्म 23 जुलाई 1933 को इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी थी इनकी फैमिली, इनका परिवार। आपके पिता श्री नीलकंठ पद्मनाभ एक जाने माने फिजिसिस्ट थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे और अहिल्याबाई होलकर कॉलेज में प्रिंसिपल भी रह चुके थे। मां भी एक अकम्प्लिश एजुकेटर थी और एजुकेशन की फील्ड में काफी देर तक जुड़ी रहीं और रिटायर हुई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऐसी एक समृद्ध पढ़े लिखे परिवार से पद्मनाभ गौतम आगे निकलकर आए और फिर इंडियन एयरफोर्स की 16 स्क्वाड्रन के साथ जा जुड़े। इनकी कहानी अगर वॉर की बात की जाए तो शुरू होती है 1965 की लड़ाई के साथ, लेकिन हम इनके साथ सबसे पहले 1961 की कहानी बताना चाहेंगे जहां उन्हें एक अहम इंटरनेशनल मिशन के लिए चुना गया, कांगो में यूनाइटेड नेशंस का पहला भारतीय संचालित शांति रक्षा अभियान। 6 दिसंबर 1961 को उन्हें काटंगा में कोलवेजी एयरफील्ड पर हमला करने के लिए कहा गया, जो एक बहुत ही जरूरी और जोखिम भरा मिशन था। यह एक अहम रणनीतिक बेस था जिस पर काटंगा की सेनाओं का कब्जा था। इस एयरफील्ड का इस्तेमाल यूएन की जमीनी टुकड़ियों पर हवाई हमले करने के लिए किया जा रहा था। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स शांति बनाए रखने के लिए चल रहे अभियानों की सफलता पर गंभीर रूप से इसे देख रही थी और जो पीस मिशन चल रहा था वहां पे यह खतरा मंडरा रहा था। ये टास्क इंडियन एयरफोर्स की उस टुकड़ी को दिया गया जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के साथ कांगो में डेप्यूटेशन पर थे। उस दिन जिस दिन हमला होना था, बेहद खराब मौसम और दुश्मन की जबरदस्त गोलीबारी का सामना करने के बावजूद, तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट रहे गौतम पद्मनाभ गौतम ने असाधारण साहस और उड़ान कौशल का प्रदर्शन देते हुए भारी सुरक्षा वाले एयरफील्ड पर बहुत सारी बमबारी की और ये था लो फ्लाई मिशन। हमले के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक एक फोगा विमान को भी नष्ट कर दिया एयर टू एयर कॉम्बैट में।

एयर टू एयर कॉम्बैट के बाद लो फ्लाइंग मिशन था, जहां पर बहुत सारे कैनन जो हैं वो दागे जा रहे थे। जो जहाज पद्मनाभ गौतम उड़ा रहे थे वो था कैनबरा, और भारी गोलाबारी के बीच में लो फ्लाई करते हुए उन्होंने टारगेट अचीव करना था।

एक फौगा विमान जो यूनाइटेड नेशंस की जमीनी सेनाओं को लगातार परेशान कर रहा था, उसको शांत करना बहुत जरूरी था। फौगा विमान को बेकार करने के अलावा तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने जमीन पर खड़े कटंगा के तीन अन्य विमानों को भी बेकार कर दिया और एयरफील्ड पर अब निशाना साधने लगे।

दुश्मन के एयरफील्ड पर इस तरह का हमला करना जाहिर सी बात है कि नुकसान बहुत भारी है। इससे दुश्मन के ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त झटका लगा और फिर जो होना था वो हुआ, यानी दुश्मनों के हौसले जो थे वो परास्त कर दिए गए। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम को एलिजाबेथ विले के ऊपर कई और सफल उड़ानें भरने के लिए कहा गया और कटंगा की सेनाओं के साथ भीषण लड़ाई में उलझी यूनाइटेड नेशंस की जमीनी टुकड़ियों को करीबी हवाई सहायता प्रदान करने के लिए और मिशंस दिए गए। उनके सटीक और समय पर किए गए हवाई हमलों ने जमीनी अभियानों को सफल बनाने और दुश्मन की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इन अभियानों के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने असाधारण बहादुरी, पेशेवर उत्कृष्टता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का प्रदर्शन किया और अक्सर विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया। उनके कार्यों ने यूएन सेनाओं की ऑपरेशनल सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय वायुसेना का मान बढ़ाया। दुश्मन की कार्रवाई का सामना करते हुए उनकी असाधारण बहादुरी और कर्तव्य के प्रति समर्पण के सम्मान में तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम को वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद स्क्वाड्रन लीडर और उसके बाद विंग कमांडर बनने की कहानी और उसके बाद आने वाली बड़ी चुनौतियां, क्योंकि 1961 के बाद जब भारत के लिए लड़ने के लिए उन्हें अपने मिग फाइटर्स और कैनबरा फाइटर्स उड़ाने पड़े तो वो भीषण युद्ध था, पाकिस्तान और भारत का भीषण युद्ध, 1965 वॉर, जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स तब भी तैयार थी। क्या हुआ विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के साथ?

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में, महावीर चक्र से सम्मानित। 1965-1971 जंग के जांबाज इंडियन एयरफोर्स के पायलट। इससे पहले कि हम उनकी शौर्य गाथा आगे आपको सुनाएं, एक नजर डालते हैं अपने वॉर हीरो के बचपन की। पद्मनाभ गौतम वो तीन भाई बहनों में सबसे छोटे थे और अपने दो छोटे भाइयों अशोक और अजीत के साथ उनका गहरा लगाव था। कम उम्र से ही विंग कमांडर गौतम में एक मकसद और सेवा भाव की भावना दिखाई देती थी। इसी कर्तव्य भावना के कारण वो जॉइंट सर्विसेज विंग, जो आज की नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसका एक शुरुआती रूप था और तब देहरादून में स्थित थी। इस एकेडमी के तीसरे कोर्स में वो शामिल हुए।

उन्होंने बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर 60वें पायलट कोर्स के हिस्से के तौर पर अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की और 1 अप्रैल 1953 को भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। अपनी शुरुआती ऑपरेशनल पोस्टिंग के दौरान उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन हलवारा से उस दौर के कुछ सबसे मशहूर फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे स्पिटफायर और वैम्पायर ऐसे जहाज उड़ाए। बाद में वो डिसॉल्ट तूफानी एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले स्क्वाड्रन में चले गए, जिससे कई तरह के एयरक्राफ्ट पर उनके लंबे और शानदार फ्लाइंग करियर की शुरुआत हुई। उनके नेतृत्व और सिखाने की क्षमता को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने 1956 में उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल में ट्रेनिंग के लिए चुना। 1957 और 1958 के बीच उन्होंने जोधपुर में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने युवा कैडेट्स को हार्वर्ड एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग दी और अपनी सिखाने की कला और तकनीकी दक्षता को और बेहतर बनाया। 1958 में आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट यानी JBCU में खास ट्रेनिंग लेने के बाद वो कैनबरा जेट बॉम्बर पर चले गए। यहीं से बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में उनकी विशेषज्ञता की शुरुआत हुई। उनके बढ़ते अनुभव के कारण उन्हें एक इंटरनेशनल असाइनमेंट भी मिला और उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर इराक भेजा गया, जहां उन्होंने MiG-15 और MiG-17 एयरक्राफ्ट उड़ाए और इराकी वायुसेना की ट्रेनिंग और क्षमता बढ़ाने में अहम योगदान दिया। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में।

कहते हैं अगर एयरफोर्स में आना हो तो एक जज्बा होना चाहिए। कुछ देर पहले हमने बताया कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा थे तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम, और कांगो में स्थित यूएन पीस कीपिंग फोर्स को उन्होंने किस तरह से वायुसेना के वो मदद प्रदान की जिससे मिशंस सक्सेसफुल हुए। ट्रेनिंग, फाइटर क्राफ्ट्स, और उसके बाद 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग। पाकिस्तान ने विदेशी एयरक्राफ्ट्स लेकर, टैंक्स लेकर एक चुनौती पेश करनी चाहिए हिंदुस्तान के खिलाफ। इंडियन एयरफोर्स के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे पायलट्स रात दिन

एक समय था जब भारत दोस्ती का हाथ विश्व भर में हर देश के साथ दोस्ती का वो प्रस्ताव लेकर जाता था। कई जगह ये सोचा गया कि भारत कमजोर देश है, इसलिए शायद दोस्ती करना चाह रहा है। लेकिन जिसने भी भारत से दोस्ती की, भारत का हाथ पकड़ के, उस देश को मालूम पड़ा कि इस हाथ में बहुत ताकत है और केवल ताकतवर इंसान ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर वो दोस्ती वाला हाथ मुट्ठी में बदल गया तो देश की ताकत, देश की

असली ताकत वो सबके सामने आ जाएगी। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की बात हम कर रहे हैं और उनके शौर्य की गाथा गाते हुए हम 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई की तरफ चलते हैं। स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर वो आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट में वापस आ गए थे जब लड़ाई शुरू होने के आसार थे। तब वो कमांडिंग ऑफिसर थे और उनकी शानदार लीडरशिप में JBCU यानी जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट ने, जो असल में एक ट्रेनिंग यूनिट थी, लड़ाई में एक फ्रंट लाइन ऑपरेशनल स्क्वाड्रन की तरह जोश और प्रोफेशनलिज्म के साथ हिस्सा लिया। यूनिट ने डीप पेनिट्रेशन बॉम्बिंग मिशन और सटीक टारगेट मार्किंग जैसे कामों में खुद को साबित किया। पाकिस्तान के पास उस समय सेबर जेट्स थे जिसके गुणगान वो गाया करता था, लेकिन विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम ने और उनकी टीम ने ऐसे काम किए जो बहुत ज्यादा हुनर और हिम्मत की जरूरत मांगते थे। उन्होंने खुद आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में कई साहसी उड़ानें भरी, रिकॉनोसेंस मिशन या फिर अटैकिंग मिशंस। ऐसे काम करने के लिए एक खास आत्मविश्वास और सटीकता की जरूरत थी, लेकिन पद्मनाभ गौतम ने ऐसे मिशंस किए जो बहुत असरदार थे। कहते हैं कि उनके मिशन इतने असरदार थे कि पाकिस्तान के मिलिट्री इतिहासकार भी उनकी बहादुरी और असरदार काम को अनमने ढंग से ही सही लेकिन सम्मान के साथ मानते थे। 1965 वॉर के ऑपरेशन के दौरान उनकी निडर लीडरशिप और जबरदस्त बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

एक ऐसा मिशन जो सिर्फ कैनबरा के जहाज ही कर सकते थे। कहते हैं भारत के पास उस समय कैनबरा के जहाज थे जो एक बहुत ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के ठिकानों की रिकॉनोसमिशन में फोटोग्राफी करके यहां अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी मददगार साबित होते थे। कुछ मिशंस तो लो फ्लाइंग बॉम्बिंग के लिए भी पद्मनाभ गौतम ने किए हैं।

भारत के बहुत सारे अटैक्स रात में किए जाते थे, और रात में अटैक करना प्रिसिजन यानी सटीकता मांगते थे। सेबर जेट सुपरसोनिक जहाज थे जिनका सामना इंडियन एयरफोर्स को करना था, और हर बार कोई ना कोई नया प्लान बनाकर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को चौंका रही है। और उसी के बीच में पेशावर पे अटैक करके पद्मनाभन गौतम और उनकी टीम ने कामयाबी हासिल की।

1965 और वो एक ऐसा दौर जहां हम में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे। पैटन टैंक और सेबर जेट का डर दिखाकर वो प्रेशर बनाने की कोशिश नाकाम रही। इंडियन एयरफोर्स के नैट फाइटर्स सुपरसोनिक साबर को चुनौती देने के लिए एक हाई ऑल्टीट्यूड में रात के अंधेरे में घूमते रहते थे, और जब भी सेबर जेट सरहद पार करके हमारे देश की तरफ आते थे तो उस हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे उतरते हुए एक एक्स्ट्रा स्पीड गेन करते हुए वो फायर करते थे। और वैसे ही कैनबरा और मिंक्स इस सुपरसोनिक जहाज का सामना करके उसे नष्ट कर रहे थे। ग्राउंड पर वॉर चल रही थी जहां इंडियन आर्मी एक बहुत घातक युद्ध लड़ रही थी। असल उत्तर का वो बैटलफील्ड जहां की रिकॉनसॉम मिशन में इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन के इलाके में जाकर उनकी पोजीशंस का सही ब्यौरा दिया। एक ऐसा बैटल जहां खून की होली खेली गई। ये खून की होली जमीन पर खेली गई थी जहां हमारे बहुत सारे जाबाज सिपाही डटे रहे। गोलियां चलती रहीं और वो गोलियों को सीने पर लेते रहे। लेकिन मजाल है कि एक इंच भी उनका पैर पीछे पड़ा हो। वो दौर भीषण युद्ध का दौर था। भारत ने उस चुनौती को सामना किया और इंडियन एयरफोर्स ने जहां जहां हो सका वहां मदद पहुंचाई।

आज हम संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 की लड़ाई के इंडियन एयरफोर्स के हीरो, साथ ही साथ 1965 में शहीद हुए उन सैनिकों को भी याद करते हैं आज यहीं पर। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की जन्मतिथि है, इसलिए विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में उनको समर्पित है।

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम याद कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को, महावीर चक्र से सम्मानित। और हमने बताया कि किस तरीके से 1965 के युद्ध में भी जेट बॉम्बर कन्वर्शन यूनिट को कमांड कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर, लेकिन आगे चल के उनका इंतजार कर रही थी 1971 की भारत पाकिस्तान की एक और जंग। उस समय वो विंग कमांडर गोरखपुर से ऑपरेट करने वाले 16 स्क्वाड्रन की कमान संभाल रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम बन गए। स्क्वाड्रन ने पूर्वी मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई, जहां भारतीय सेना ने बहुत तेजी से और निर्णायक जीत हासिल की। उनकी लीडरशिप में 16 स्क्वाड्रन ने दुश्मन के इलाके में बहुत जोखिम वाले बॉम्बिंग मिशन पूरे किए, जिससे पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। रणनीतिक सटीकता और हिम्मत के साथ किए गए इन साहसी ऑपरेशन ने युद्ध में भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। 1971 की लड़ाई के दौरान उनकी बेहतरीन सेवा और बेमिसाल बहादुरी के लिए विंग कमांडर गौतम को उनके महावीर चक्र के साथ बार से सम्मानित किया गया। वे भारतीय वायुसेना के इतिहास में यह दुर्लभ सम्मान पाने वाले केवल 2 अधिकारियों में से एक बने। युद्ध के बाद 1972 की शुरुआत में विंग कमांडर गौतम को एयरफोर्स स्टेशन पूना, जो अब लोहेगांव के नाम से जाना जाता है, ऑफिसर इंचार्ज फ्लाइंग के तौर पर तैनात किया गया। 25 नवंबर 1972 को MiG-21 में एक रूटीन उड़ान के दौरान एक दुखद घटना घटी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान में फ्लेम आउट हुआ, यानी उड़ान के दौरान इंजन का फेल होना, जिससे उनके पास इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग की कोशिश करने के अलावा और कोई चारा न बचा। विमान और खुद को बचाने की पूरी कोशिश के बावजूद जबरदस्ती लैंडिंग के दौरान उन्हें गंभीर अंदरूनी

विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम भारतीय वायुसेना के इतिहास में सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक रहे हैं। उनका करियर असाधारण साहस, अटूट समर्पण और देश सेवा के प्रति पक्के संकल्प से भरा रहा। 1965 और 1971 दोनों युद्ध के दौरान उन्होंने बमबारी के अहम मिशनों को नेतृत्व किया, जिन्होंने दुश्मन के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया और भारत के पक्ष में निर्णायक बढ़त दिलाई। उनके निडर कारनामे खासकर दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर किए गए ऑपरेशन आज भी हमारे जांबाज पायलट्स को बहुत इंस्पायर करते हैं। वो लड़ाई हो 1965 की, 71 की, कारगिल युद्ध हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन एयरफोर्स खड़ी है डटकर उस तिरंगे के लिए, आपके लिए, हमारे लिए।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हमने आप सबको रूबरू कराया। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, महावीर चक्र से सम्मानित भारत के जांबाज पायलट से 16 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स की, और आज उनकी जन्मतिथि है, इसीलिए आज का संदेश टू सोल्जर्स समर्पित किया हमने विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को। आशा करते हैं आकाशवाणी की यह पेशकश आपको पसंद आई होगी। ये कहानी हमने इसलिए सुनाई क्योंकि याद है ना वो अल्फाज, तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर श्री सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले दोपहर 12 बजे

0: पहली बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग करने की अपील की।
1: वो बहाना ढूंढ रहा आज तो फिर कांग्रेस दोनों सदनों में शुरू में ही तो बोलता है अपना कंडीशन है, मांग है, पहले पूरा करो तब चर्चा होगा। अरे मांग चर्चा के दौरान में भी तो आप बोल बोल के मांग रख सकते हैं। आप जब बोलेंगे डिबेट में तो आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं ना, तो डिबेट को कैसे रोक सकते हैं आप? वो चर्चा को ही रोकना चाहते हैं।
0: उधर राज्यसभा को भी नीट मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री मनोहर लाल ने बताया कि जून 2026 तक देश की वर्तमान स्थापित उत्पादन क्षमता 548 गीगावाट से अधिक हो गई है। अप्रैल 2014 से लेकर अब तक लगभग 324.7 गीगावाट तक की नई उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। इससे देश बिजली की कमी वाले राज्य से बिजली की पर्याप्तता वाले देश में गया है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ने पश्चिम एशिया संघर्ष के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान तक पहुंचने के लिए संवाद और कूटनीति के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर बल दिया है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने आज कहा कि सरकार ईरान सहित संघर्ष में शामिल पक्षों तथा अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। मनीला में 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंस मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। श्री जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री सैयद बदर बिन हमद अल बुसैदी से भी मुलाकात की और खाड़ी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्यम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक छठे ओवर में 3 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर 33,530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए हम आपको बताते हैं कि आज हम आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं अपनी सभा में।

युवाणी, ये होता है युवाओं का दैनिक कार्यक्रम जिसका प्रसारण समय रहेगा 5:30, जिसमें आज हम लेकर आए हैं कविता दियुप्पा की वार्ता, एक निर्भय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद।

श्रोताओं, शाम 6 बजे सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम्य लोक। इसमें आज हम आपको सुनाएंगे डॉक्टर छोटे सिंह से वार्ता। विषय होगा पशुओं की घातक बीमारियां, कारण और निदान।

शाम 6 बजे सुनिएगा, शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम मजदूर मंडल। श्रोताओ, रात्रि 7:10 का वक्त होता है कार्यक्रम व्यवधा का, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर मुरारी लाल अग्रवाल की वार्ता। विषय होगा रेडियो की विकास यात्रा।

रात्रि 7:31 पर आज सुनिएगा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भारतीय प्रसारण दिवस के अवसर पर विशेष परिचर्चा। प्रतिभागी होंगे डॉक्टर राज बहादुर राज, अरुण डंग, दिलीप रघुवंशी, अखलाक हुसैन, डॉक्टर महेश ठाकर, और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे अनेंद्र सिंह।

श्रोताओं, ये थी एक झलक हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम सुर संध्या लेकर हम अभी आते हैं।

रेडियो वेव 196.1 मीटर था 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुर संध्या।

आशा भोसले की आवाज में अभी आप सुन रहे थे नील कमल फिल्म का वो गीत जिसे लिखा था साहिल लुधियानवी ने और संगीत था रवि का। सुर संध्या कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म शागिर्द से। आवाज लता मंगेशकर की है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: फिल्म में आप सुन रहे थे मन्ना डे का गाया ये गीत। इसमें संगीत था शंकर जयकिशन का और गीत को लिखा था शैलेंद्र ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोताओं, सूर संध्या कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है वाणी जयराम की आवाज में फिल्म गुड्डी से। वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है कुलसार ने।

आशा भोसले की गाय फिल्म गुड्डी के इस गीत के साथ ही सुर संध्या कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

हेलो नमस्ते गुड इवनिंग युवा साथियों, मैं हूँ आपकी रेडियो साथी स्वस्ति आर्य। स्वागत करती हूँ आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम युवावाणी में। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स और आपके मन पसंद गीत। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। अच्छा दोस्तों, आज के मॉडर्न एरा में कम्युनिकेशन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हर दिन नई नई जानकारियाँ, विचार और संदेश हम तक कई माध्यमों से पहुँचते हैं। इन माध्यमों ने लोगों को जोड़ने, जागरूक बनाने और समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी महत्व को सम्मान देने के लिए हम हर वर्ष भारतीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए आज का सवाल ये है कि भारतीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सोचिए, गेस कीजिए इस प्रश्न का उत्तर और इसका उत्तर

जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम युववाणी में। अच्छा साथियों, कल्पना कीजिए कि आपके गांव या शहर में कोई परिवार वर्षों से अचार, पापड़, मसाले, नमकीन या कोई दूसरे फूड प्रोडक्ट्स बनाता आ रहा है। स्वाद तो शानदार है, लेकिन बिजनेस छोटा है। ना अच्छी पैकेजिंग, ना मॉडर्न मशीन्स, ना ब्रांडिंग और ना ही बड़े मार्केट तक पहुंच। ऐसे ही लाखों छोटे फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को ऑर्गेनाइज्ड, मॉडर्न और कॉम्पिटिटिव बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्निकल ट्रेनिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और मार्केट लिंकेज देकर उन्हें सक्सेसफुल एंटरप्राइज में बदलना है। इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी। अगर कोई एलिजिबल एंटरप्रेन्योर अपना नया फूड प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू करना चाहता है या एग्जिस्टिंग यूनिट का एक्सपेंशन करना चाहता है तो बैंक लोन लेने पर 35% तक सब्सिडी मिलती है। साथियों जानते हैं, इस योजना की खास विशेषता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच। इसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट की पहचान किसी एक विशेष एग्रीकल्चरल या फूड प्रोडक्ट से की जाती है, जैसे कि मैंगोज, दालें, मखाना या कोई भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। सरकार ऐसे प्रोडक्ट्स पर आधारित इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी देती है ताकि लोकल फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स दोनों को फायदा मिले। इससे लोकल रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और प्रोडक्ट्स को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण भाग है कैपेसिटी बिल्डिंग। ये फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा फूड सेफ्टी, हाइजीन, क्वालिटी कंट्रोल, ई कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट जैसे विषयों पर ट्रेनिंग भी देती है। दोस्तों, एप्लीकेशन प्रोसेस भी काफ़ी आसान है। इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर्स सबसे पहले अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। एप्लीकेशन के समय आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल्स और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। इस योजना के कई फायदे हैं। इससे छोटे बिजनेसेस को फॉर्मल आइडेंटिटी मिलती है, मॉडर्न मशीन्स लगाने का अवसर मिलता है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावरमेंट मिलती है और वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को भी मजबूती मिलती है। ये योजना छोटे सपनों को बड़ा बिजनेस बनाने में मदद करती है। अब साथियों, समय है आपके मनोरंजन का, तो आप सभी को ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा संगीत।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, आपका युवावाणी कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। अच्छा दोस्तों, आज की डिजिटल दुनिया में कई ऐसे काम जिन्हें पहले घंटों या कई दिनों में किया जाता था, अब कुछ ही मिनटों में पूरे हो जाते हैं। चाहे कोई स्टूडेंट असाइनमेंट बना रहा हो, डॉक्टर्स रिपोर्ट देख रहे हो, बिजनेस ओनर कस्टमर्स की मदद कर रहे हो, या कंटेंट क्रिएटर इमेजेस और वीडियोस बना रहे हो, टेक्नोलॉजी ने काम को काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है। इस बदलाव के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का बड़ा योगदान है। AI की मदद से बने स्मार्ट टूल्स लोगों का समय बचाते हैं, काम को आसान बनाते हैं और कम मेहनत में बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करते हैं। इन्हीं स्मार्ट AI बेस्ड एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर को AI पावर टूल्स कहा जाता है। AI पावर टूल्स ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसानों जैसे कई काम कर सकते हैं। ये केवल दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं करते दोस्तों, बल्कि डेटा से सीखते हैं, पैटर्न्स पहचानते हैं, इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं और बेहतर रिजल्ट्स देते हैं। AI पावर टूल्स में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और जेनरेटिव AI जैसी टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। आज इनका यूज एडुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, जर्नलिज्म, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिसर्च और एंटरटेनमेंट में भी किया जाता है। अगर हम बात करें एडुकेशन की, तो AI स्टूडेंट्स को नोट्स, समरीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस तैयार करने में मदद करता है, जबकि हेल्थ केयर में डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स का एनालिसिस करने और डिजीजेस की पहचान करने में मदद मिलती है। बिजनेस में AI कस्टमर सपोर्ट, डेटा एनालिसिस और मार्केटिंग में उपयोग होता है। वहीं एंटरटेनमेंट में इमेजेस, वीडियोस, म्यूजिक और कंटेंट क्रिएशन के लिए भी AI टूल्स व्यापक यूज करता है। AI टूल्स टेक्स्ट लिखने, क्वेश्चन के आंसर्स देने, लैंग्वेज ट्रांसलेशन करने, इमेजेस और वीडियोस बनाने, वॉइस को टेक्स्ट में बदलने में भी मदद करता है। हालांकि दोस्तों, AI पावर टूल्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये कभी कभी इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन

0: हमेशा वेरीफाई करना चाहिए। डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, कॉपीराइट और जॉब्स पर इम्पैक्ट जैसे चैलेंजेस भी एआई से जुड़े हुए हैं। इसीलिए एआई का यूज़ रिस्पॉन्सिबली और केयरफुली करें। कुल मिलाकर दोस्तों, एआई पावर टूल्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो विभिन्न फील्ड्स में काम को फास्टर, ईजियर और काफ़ी एफिशिएंट बनाकर लोगों की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज एआई पावर टूल्स केवल एक नई टेक्नोलॉजी ही नहीं है साथियों, बल्कि काम करने और सीखने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। फ्यूचर में इनका यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए इन्हें सही तरीके से समझना और जिम्मेदारी से यूज़ करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। सही ज्ञान और मानव सोच के साथ एआई पावर टूल्स हमारी क्षमता को बढ़ाकर बेहतर, तेज और अधिक इफेक्टिव रिजल्ट्स प्राप्त करने में मदद करता है। अच्छा साथियों, हर युग में कुछ ऐसे वीर जन्म लेते हैं जो अपने साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति से इतिहास में अमर हो जाते हैं। वो अपने जीवन से आने वाली जनरेशंस के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। आज उनकी जयंती पर हम उनको श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने अपने साहस, आत्मविश्वास और बलिदान से लोगों के दिलों में अमिट जगह बनाई है। उन्होंने और क्या क्या योगदान दिए हैं जानने के लिए आइए सुनते हैं ये वार्ता, जिसका विषय है एक निर्भय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद। वार्ताकार है कविता दियोपा।
1: आज हम सभी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के निवासी होने का गौरव प्राप्त है। आज भारत का प्रत्येक नागरिक एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहा है, परंतु हमें यह स्वतंत्रता बहुत मुश्किलों से प्राप्त हुई है। जब भारत देश ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, तब इसकी स्वतंत्रता के लिए न जाने कितने ही वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। भयंकर विपत्तियों का सामना करते हुए सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर अपने प्राणों की परवाह न करके वीर क्रांतिकारी अपने कार्य में आगे बढ़ते रहे। इन्हीं वीरों में एक नाम वीर शिरोमणि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का भी है, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। काकोरी ट्रेन डकैती और जनरल सांडर्स की हत्या में शामिल निर्भय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। चंद्रशेखर का वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। चंद्रशेखर आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल क्षेत्र भावरा गांव में व्यतीत हुआ। भील बालकों के साथ रहते रहते चंद्रशेखर आजाद ने बचपन में ही धनुष बाण चलाना सीख लिया था। चंद्रशेखर आजाद की माता जगरानी देवी उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, इसलिए उन्हें संस्कृत सीखने के लिए काशी विद्यापीठ बनारस भेजा गया। दिसंबर 1921 में जब महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, उस समय मात्र 14 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आजाद ने इस आंदोलन में भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया गया। जब चंद्रशेखर आजाद से उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। यहीं से चंद्रशेखर तिवारी का नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। चंद्रशेखर आजाद जी को 15 दिन के कड़े कारावास की सजा प्रदान की गई। असहयोग आंदोलन की यह घटना उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत भर ही थी। जब 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, तब इस घटना ने चंद्रशेखर आजाद को बहुत आहत किया। उन्होंने ठान लिया कि किसी भी तरह देश को स्वतंत्रता दिलवानी ही है। इसी दौरान एक युवा क्रांतिकारी प्रणवेश चैटर्जी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे क्रांतिकारी दल के संस्थापक रामप्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। आजाद इस दल और बिस्मिल के समान स्वतंत्रता और बिना किसी भेदभाव के सभी को अधिकार जैसे विचारों से बहुत प्रभावित हुए। चंद्रशेखर आजाद की आयु कम थी और उनका स्वभाव चंचल था, इसलिए रामप्रसाद बिस्मिल उन्हें क्विक सिल्वर यानी पारा कहकर पुकारते थे। चंद्रशेखर आजाद के समर्पण और निष्ठा को पहचान बिस्मिल ने चंद्रशेखर आजाद को अपनी संस्था का सक्रिय सदस्य बना दिया। अंग्रेजी सरकार के धन को छीनने जैसे कार्यों को अंजाम देकर चंद्रशेखर

अपने साथियों के साथ संस्था के लिए धन एकत्र करते थे। काकोरी कांड के बाद उन्होंने दल का नए सिरे से संगठन किया और उसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड आर्मी रखा गया। चंद्रशेखर आजाद इस नए दल के नए कमांडर थे। लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर जनरल सांडर्स की भी हत्या की थी। आजाद का मानना था कि संघर्ष की राह में हिंसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके विपरीत हिंसा बेहद जरूरी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे अमानवीय घटनाक्रम जिसमें हजारों निहत्ते और बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई गई ने चंद्रशेखर आजाद को बहुत आहत किया, जिसके बाद उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया। 27 फरवरी 1931 को एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिस पार्क में वे शहीद हुए उस पार्क का नाम परिवर्तित कर चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया और मध्य प्रदेश के जिस गांव में वे रह रहे थे उसका नाम आजादपुरा रखा गया। चंद्रशेखर आजाद जी की वीरता हम सभी भारतीयों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आज चंद्रशेखर आजाद की जन्मतिथि पर हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

वेलकम बैक साथियों, आप है अपनी रेडियो होस्ट स्वस्ति आर्य के साथ। अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था एक निर्भय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। वार्ताकार थी कविता द्योपा। अच्छा साथियों, आजकल बहुत से लोग बिना किसी साफ वजह के थकान महसूस करते हैं। उनका वजन अचानक बढ़ने या घटने लगता है, मूड बार बार बदलने लगता है और स्किन और बालों से भी परेशानियां उनको झेलने को मिलती हैं। अक्सर लोग इन बदलावों को सामान्य मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों ये छोटे छोटे संकेत बताते हैं कि शरीर के अंदर कुछ ठीक तरह से काम नहीं हो पा रहा है। अगर समय रहते इन संकेतों को समझ लिया जाए तो कई बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। इन्हीं समस्याओं की एक बड़ी वजह है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो आजकल तेजी से लोगों में देखी जा रही है और आम हो गई है। दोस्तों, हमारे शरीर में हार्मोन ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो शरीर के कई जरूरी कामों को कंट्रोल करते हैं, जैसे शरीर का विकास, मेटाबॉलिज्म, नींद, भूख, तनाव, मूड और एनर्जी। जब किसी हार्मोन का स्तर जरूरत से ज्यादा या कम हो जाता है तो उसे हार्मोनल इम्बैलेंस कहा जाता है। आज के समय में ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसकी बड़ी वजह है बदलती जीवन शैली, गलत खानपान, बढ़ता तनाव, कम नींद, शारीरिक गतिविधियों की कमी, ओबेसिटी और पॉल्यूशन। बच्चों और यूथ में ये हार्मोनल गड़बड़ी उनके शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, हार्मोनल इम्बैलेंस के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि थायराइड समस्या, डायबिटीज, कुछ हार्मोन ग्रंथियों की गड़बड़ी या लंबे समय तक कुछ दवाओं का सेवन। इसके अलावा जंक फूड, ज्यादा मीठा खाना, धूम्रपान, अल्कोहल, देर रात तक जागना, लगातार मोबाइल या लैपटॉप का यूज करना और तनाव भी हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है। दोस्तों, सिर्फ सिम्टम्स देखकर ये तय नहीं किया जा सकता कि हार्मोनल इम्बैलेंस है या नहीं। सही जानकारी के लिए डॉक्टर कुछ जरूरी जांच जैसे कि ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट या जरूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड कराने की भी सलाह देते हैं। समय पर जांच और सही इलाज से इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, हार्मोनल इम्बैलेंस से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी है। रोज पौष्टिक और संतुलित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, पूरी नींद

लें, तनाव कम करने के लिए पर्याप्त नींद लें, पर्याप्त पानी पिएं और मेडिटेशन करें। साथ ही जंक फूड, मीठे पेय और प्रोसेस्ड फूड का सेवन भी बहुत कम करें। अगर लंबे समय तक थकान, वजन में अचानक बदलाव, बाल झड़ना या दूसरे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल इग्नोर ना करें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सही समय पर इलाज कराने से हार्मोनल संतुलित रहते हैं और हम आगे आने वाली गंभीर बीमारियों से बचे रहते हैं। दोस्तों, शरीर हमेशा संकेत देता है, बस जरूरत होती है उन्हें सही समय पर समझने की। छोटी सी जागरूकता और सही समय पर उठाया गया कदम हमें हार्मोनल इम्बैलेंस से बचा सकता है। तो दोस्तों, संतुलित जीवन का रखें ख्याल, यही है स्वस्थ रहने की असली पहचान। अच्छा दोस्तों, कहते हैं संगीत मन और तन दोनों को सुकून देता है, तो इसी सोच के साथ आइए सुनते हैं अगला मधुर गीत।

दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बरसात का मौसम चल रहा है और ये मौसम बहुत ही सुहावना होता है। लेकिन इस समय सेहत का खास ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। हमेशा साफ और ताज़ा भोजन करें, बाहर का खुला खाने से बचें, घर का ही पौष्टिक भोजन करें। अगर दोस्तों आप बारिश में भीग भी जाएं, तो जल्द ही सूखे कपड़े पहन लें। अपने आसपास सफाई रखें और मच्छरों से बचाव करें। दोस्तों, छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर आप पूरे मॉनसून सीजन में स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। अच्छा साथियों, वैसे तो समय है आप सभी से विदा लेने का, पर विदा लेने से पहले आपको याद होगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि भारतीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपने सोचा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए हम आपको बताते हैं। हर वर्ष भारतीय प्रसारण दिवस आज ही के दिन 23 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसी के साथ साथियों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। कार्यक्रम युवावाणी समाप्त करने की अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त स्वस्ति आर्य को दीजिए आज्ञा। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।

क्यों? नमस्कार साथियों, मैं अनुराधा अग्रवाल आपकी रेडियो साथी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम्य लोक में। और साथियों कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी खेती बाड़ी के कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए साथियों, इसी शुभकामना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ऐसे विषय पे जो हमारी प्रकृति से नहीं बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। तो साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय है पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। साथियों, पिछले कुछ सालों में हम सभी ने मौसम के मिजाज में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। भाई, कभी तो भीषण गर्मी पड़ जाती है तो कभी थोड़ी ही समय में इतनी तेज बारिश हो जाती है कि खेतों में पानी भर जाता है। भाई, कई क्षेत्रों पे तो समय पर वर्षा नहीं होती है जिससे कि फसलें प्रभावित हो जाती हैं, वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, तो कहीं पर अतिवृष्टि किसानों की मेहनत पर पानी फेर देती है। इसके साथ ही भूजल का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है और तापमान वो तो हर साल अपने नया रिकॉर्ड ही बना रहा है। ये केवल मौसम की सामान्य घटनाएं नहीं है बल्कि प्रकृति का हमारे लिए एक स्पष्ट संदेश है कि हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गंभीरता से काम करना होगा। और ऐसी स्थिति में साथियों, अगर सबसे कोई कारगर उपाय या प्रभावी कोई उपाय है तो वो है कि हम पेड़ लगाएं और हम उनकी देखभाल करें। साथियों, पेड़ केवल हरियाली नहीं बढ़ाते बल्कि वातावरण का तापमान संतुलित रखने, वर्षा चक्र को सहारा देने, मिट्टी को कटाव से बचाने और शुद्ध हवा उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण साफ और स्वच्छ हो जाता है। भैया, किसानों के लिए तो पेड़ किसी प्राकृतिक साथी से कम नहीं है। खेतों की मेड़ों पर जो पेड़ लगाए जाते हैं वो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और नमी बनाए रखने के साथ साथ अतिरिक्त आय का साधन भी बन सकते हैं। यदि साथियों, अगर हम लोग खेतों की मेड़ों पर नीम, शीशम, सहजन, अर्जुन, करंज, जामुन, आम या अन्य कोई उपयोगी पेड़ लगाते हैं तो उससे हमें कई तरह के लाभ होते हैं। पहला लाभ तो यह है कि इससे तेज हवा का प्रभाव कम हो जाता है, मिट्टी की नमी बनी रहती है, जैव विविधता भी बढ़ती है और इसके साथ साथ साथियों, भविष्य में हम इस पेड़ की लकड़ी से

से या अन्य उत्पादों से अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं। और यही कारण है साथियों कि आज कृषि वानिकी को बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात का मौसम पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस वक्त लगाए गए पौधों के जीवित रहने की संभावना सबसे अधिक होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा साथियों कि पेड़ लगाना तो पहला कदम है, लेकिन उसे पौधा लगाना तो साथियों पहला कदम है, लेकिन उसे पौधे से पेड़ बनाने तक सुरक्षित रखना ही हमारी वास्तविक सफलता है। इसके लिए हमें समय समय पर सिंचाई, पशुओं से सुरक्षा और उचित देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, आज कई गाँव में सामुदायिक पौधारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूल, पंचायतें, स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हैं। यदि हर गांव इस दशा में आगे आए तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र फिर से हरियाली से भर सकता है। इसके साथ ही साथियों, पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी का कर्तव्य है। यदि हर परिवार साल में कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो यकीनन कुछ ही वर्षों में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन हमको दिखाई देगा। हमारी धरती फिर से हरियाली से भर जाएगी। तो आइए साथियों, हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम सब अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे, क्योंकि धरती को फिर से हरा भरा बनाना है और स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करना है। तो भैया, आइए साथियों, अब अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आपको ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया की तरफ और सुनते हैं शशि बाला शर्मा की आवाज़ में यह गीत।

0: साथियों, स्वस्थ पशु किसान की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। पशु स्वस्थ रहेंगे तभी हमारी खेती भी मजबूत होगी और परिवार भी समृद्ध रहेगा। लेकिन साथियों, इस वक्त बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में पशुओं को कई संक्रामक और घातक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यदि इस समय इनकी पहचान और उपचार ना किया जाए तो पशुओं को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए साथियों, आज हम अपने स्टूडियो में आपको इसी विषय से संबंधित वार्ता सुनाने जा रहे हैं। वार्ता का विषय है पशुओं की घातक बीमारियां, कारण और निदान। वार्ताकार हैं डॉक्टर छोटे सिंह।
1: पशुपालक भाइयों, पशुपालन कृषि के बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, क्योंकि

गांव में किसान हमारे पशु पालन करके ही अपनी दिनचर्या चला सकते हैं। पशुओं में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि संक्रामक भी होती हैं, और कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो कि संक्रामक न होते हुए भी काफी घातक सिद्ध होती हैं। अगर उनका उपचार और ट्रीटमेंट समय से न किया गया तो किसान भाइयों को काफी नुकसान हो सकता है। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को ये जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो बीमारियां हैं, बीमारी जो होती है, उनके क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कारण है, पशु प्रबंधन में किसान भाई उचित ध्यान नहीं देते हैं, इसके कारण से कुछ बीमारियां होती हैं। दूसरा कारण है, गलत ढंग से पशुओं का पालन पोषण करते हैं। असंतुलित भोजन से जो पोषण की कमी होती है, पोषण की कमी के द्वारा जो बीमारी होती है, वो बीमारियां हमारे पशुओं को होती हैं, जिनके कारण से बहुत सारा नुकसान हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो पैतृक होती है, पैदाइशी बच्चों में वो आती हैं, माता पिता से आती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो वातावरण जब बदलता है, जैसे गर्मी से सर्दी आई, सर्दी से गर्मी, बरसात, तो उनमें ऐसी बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारियां हमारे जो दूषित पानी होता है, अस्वच्छ भोजन होता है, और जो हमारा आहार हम पशुओं को खिला रहे हैं वो संक्रमित होता है, उसके कारण से भी होती हैं। कुछ बीमारी जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उनके कारण होती हैं, विशेषकर 1 साल तक के बच्चों में जो बीमारियां होती हैं वो पेट के कीड़ों के कारण होती हैं। कुछ बीमारियां जीवाणुओं, विषाणुओं और कीटाणुओं के द्वारा होती हैं, जो कि काफी संक्रामक होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कभी कभी आकस्मिक दुर्घटना हुई उसके कारण होती हैं। तो जो जीवाणुओं और विषाणुओं से मुख्य रूप से जो बीमारियां होती हैं, मैं किसानों को जानकारी देना चाहूंगा। सबसे जो घातक बीमारी होती है वो गला घोंटू की बीमारी होती है, जिसे हम हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया भी कहते हैं। इसका कारण होता है एक बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं जो गोवंश है हमारा, जो गाय है, उनमें पास्चुरेला बोविसेप्टिका के द्वारा ये फैलती है, और भैंसों में पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका जीवाणु के द्वारा ये बीमारी फैलती है। इसके जो लक्षण होते हैं वो गलाघोंटू बीमारी एक छूत की बीमारी है और एक साथ कई पशुओं में होती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुखार है, शरीर का तापक्रम है, वो 104 से लेकर के 108 डिग्री फारेनहाइट तक चला जाता है। गले के नीचे तथा जबड़े पर दर्द युक्त सूजन आ जाती है। जीभ का मुंह से बाहर निकलना और बार बार लार गिरना इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीमारी में सांस लेने में जानवर को काफी कठिनाई होती है और साथ ही साथ घुर घुर की आवाज होती है। इसका मुख्य रूप से निवारण यही है कि अगर हम समय से टीकाकरण कराएं तो ये बीमारी हमारी फिर नहीं आएगी। दूसरी बीमारी है लंगड़ी, जिसको हम ब्लैक क्वार्टर भी कहते हैं। कारण इसका वही जीवाणु है, क्लास्ट्रीडियम सोवियाई तथा क्लास्ट्रीडियम सेप्टिकम जीवाणु। ये दो जीवाणु ऐसे होते हैं जिनके द्वारा ये जो लंगड़ी रोग है, ब्लैक क्वार्टर रोग है, ये पशुओं में होता है। इसके लक्षण होते हैं कि पशु को एकाएक अकस्मात तेज बुखार आता है और जो हमारे अगले या पिछले पुट्ठे हैं उन पर सूजन आ जाती है। पशु बहुत कई बार रमाता है, दांत पीसता है और लंगड़ा कर चलता है, फिर थोड़ी देर बाद गिर जाता है। ये इस बीमारी के लक्षण हैं। इसका टीकाकरण ही एक बचाव है। तीसरी जो मुख्य बीमारी है वो है हमारी एंथ्रेक्स, जिसको हम जहरी बुखार भी कहते हैं। ये भी जीवाणु के द्वारा होती है, बैसिलस एंथ्रासिस जीवाणु होता है, उसके द्वारा ये बीमारी पशुओं में फैलती है। इसमें भी पशु अचानक बीमार पड़ते हैं, तेज बुखार आता है, बेचैनी होती है, पैरों का लड़खड़ाना होता है और कभी कभी शरीर में कपकपी भी आती है। कभी चक्कर काटकर एकदम धड़ाके से जमीन पर पशु गिर जाता है और शरीर में सूजन आ जाती है। ये लक्षण इस बीमारी के हैं। एक बीमारी है जो आम बीमारी होती है, खुरपका और मुंहपका। ये गाय, भैंस, बछड़े, बैल सभी में हो सकती है। ये एक तरह की वायरस के द्वारा बीमारी फैलाई जाती है और छूत की बीमारी होती है। इसके जो लक्षण हैं, पशु सुस्त रहता है, चारा खाना बंद कर देता है, जुगाली करना बंद कर देता है, क्योंकि मुंह में इसके जो छाले पड़ जाते हैं, मुंह से लसदार लार बहती है, पैर पटकते हैं, पैरों में जो खुर होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, छाले पड़ जाते हैं, और बाद में ये छाले पड़ करके जब फूटते हैं तो घाव भी बन जाता है। दुधारू पशुओं का, जो हमारे दूध देने वाले पशु हैं, उनका जो दुग्ध उत्पादन है वो बहुत ही कम हो जाता है। हम एक तरह से कहते हैं कि कभी कभी तो पशु जो है बिल्कुल ही दूध देना बंद कर देता है। इसका निवारण वही टीकाकरण है, स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए, मुंह तथा खुरों को लाल दवा जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उससे इनको धोना चाहिए। एक जो खास बीमारी होती है उसको कहते हैं पशु प्लेग, रिंडरपेस्ट। ये एक प्रकार का ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके जो लक्षण होते हैं जानवरों में, ये छूत की बीमारी

0: के कारण एक साथ कई पशुओं में ये बीमारी फैल जाती है। प्रारंभ में जो इसके लक्षण होते हैं वो कपकपी के साथ तेज बुखार आता है, जैसे कि मरसों में जाड़ा देकर के मलेरिया में आता है, उस तरह से पशुओं में इस पशु प्लेग में कपकपी देकर के बुखार आता है। पशुओं को भूख नहीं लगती है, वो जुगाली करना बंद कर देते हैं, दाना चारा नहीं खाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, सूजन भी आ जाती है और कीचड़ भी आंखों में आता है। इस तरह के इस बीमारी के लक्षण हैं। इस बीमारी के बचाव के लिए अक्टूबर और नवंबर के महीने में टीकाकरण कराना चाहिए। जो घातक बीमारियां हैं इनके अलावा और ऐसी बीमारियां हैं जिनसे कि पशुपालक हमारे काफी नुकसान कर जाते हैं और हमारा जो उत्पादन है पशुओं का उन पे काफी कुप्रभाव पड़ता है, जैसे कि थनेला जिसे मैस्टाइटिस कहते हैं, उससे जो हमारे दूध देने वाले जानवर हैं उनके उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ता है। एक होता है क्षय रोग, जो हमारे नवजात बछड़े बछड़िया होते हैं उनमें एक नाभि बुखार होता है जिसके कारण से बछड़े बछड़ियों में काफी हानि उठानी पड़ती है। छोटे बच्चों में निमोनिया भी काफी तेजी से होता है। एक पैराटाइफाइड जिसको हम संक्रामक रक्त भी कहते हैं, पेचिस भी होती है, सफेद दस्त होते हैं। इतने रोग ऐसे हैं जिनके के द्वारा हमारे पशुपालकों को काफी हानि उठानी पड़ती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो परजीवियों के द्वारा जानवरों में फैलती हैं। परजीवी हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो जो शरीर के ऊपर रहते हैं और दूसरे जो शरीर के अंदर रहते हैं, जो बाहर से रह करके अपना शरीर से जो खून चूसते हैं उनमें मुख्य रूप से हमारे कृमि, जू, मक्खी, मच्छर, पिस्सू, इनके द्वारा बीमारी फैलती है। और जो अंदर अप्रत्यक्ष रूप से जो अंदर की कीड़े होते हैं उनके द्वारा, विशेष करके जो हमारा संकर जाति की गाय हैं, जो क्रॉस ब्रेड हैं, उसमें दो बीमारी ऐसी होती हैं जिसके क्लिनी के काटने से जो दो बीमारी होती हैं उनमें पेशाब लाल आना शुरू हो जाता है और जो हमारा पशु है उसे एकदम बहुत टेम्परेचर हो जाता है उसके शरीर का, और कभी कभी तो अगर इसका समय पर इलाज न हुआ तो जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है। तो मैं किसान भाइयों को जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो भी अगर हमारा कोई पशु बीमार है तो सबसे पहले जो रोकथाम हमें किसान भाइयों को करनी है कि रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से बिल्कुल एकदम अलग कर दें। उनका जो चारा है, दाना है, पानी है, उसको किसी स्वस्थ पशु को वो न खिलाएं और स्वस्थ पशुओं को जो बीमारी है उसका बीच टीका अवश्य लगवाएं हैं। और जो रोगी पशु हैं उनको एकदम सेग्रीगेट, जिसको हम कहते हैं, एकदम अलग कर दें। और जब हमारा कोई पशु बीमार पड़े तो जो पास का हमारा जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पशु चिकित्सक से मिलकर के इस पशु का इलाज कराएं। इस तरह से अगर हमारे किसान भाई पशुओं का ध्यान रखेंगे तो वो जो होने वाली घातक बीमारियां हैं उनसे निजात पाकर के अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता पशुओं की घातक बीमारियां कारण और निदान। वार्ताकार थे डॉक्टर छोटे सिंह। आइए इसी के साथ लेते हैं छोटा सा अंतराल।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, अपने नई खोज सेगमेंट में आज हम अपनी खेती बाड़ी और पशुपालन के क्षेत्र में जो नई तकनीक विकसित हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो खेती बाड़ी के में हम सोलर पंप के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि साथियों, आप सभी जानते हैं कि आजकल सोलर ऊर्जा का काफ़ी प्रचलन है। भाई, घर घर में आजकल सोलर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इसी तरह से अगर हम अपने कृषि क्षेत्र में भी देखें तो सोलर ऊर्जा से चलने वाला सोलर पंप है, जिससे डीजल और बिजली के खर्च में काफ़ी कमी आती है। दिन में आसानी से सिंचाई हो जाती है और साथ ही उसके साथ ही हमारे पर्यावरण के भी अनुकूल है। इसके साथ ही साथियों, अगर हम पशुपालन में बात करें तो पशुपालन में बात करते हैं सेक्स सॉर्टेड

0: सिमोन के बारे में। ये साथियों एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक ऐसा वीर तैयार किया जाता है जिसमें मादा बछिया होने की संभावना 85 से 90% तक बढ़ जाती है। इसका लाभ क्या है साथियों? तो इसका लाभ ये है कि जब अधिक मादा बछिया पैदा होंगी तो इससे भविष्य में अधिक दूध उत्पादन भी होगा, डेयरी व्यवसाय की आय भी बढ़ेगी, साथ में अच्छी नस्ल के पशुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथियों अब आपको ले चलते हैं आगरा मंडी की तरफ और डालते हैं एक नज़र आगरा मंडी के ताज़े भावों पर। तो आगरा मंडी में गेहूं के भाव लगभग 2,958 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास रहे, वहीं बाजरा लगभग 2,000 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का 4,358 रुपये प्रति क्विंटल और जो करीब 2,671 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास दर्ज किए गए हैं। अगर सब्जियों की बात की जाए तो आलू का भाव 500 से 550 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज का भाव 900 से 110 रुपये प्रति क्विंटल और टमाटर का भाव 1700 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में रहे हैं। नींबू का भाव लगभग 2700 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास दर्ज किया गया है। इसी के साथ साथियों अब मौसम भी जान लेते हैं कि आगरा मंडल में आज का मौसम कैसा है। तो जैसा कि साथियों आप सुबह से देख रहे हैं कि आगरा मंडल में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं जिससे सुबह का तापमान लगभग 25 से 27 डिग्री आसपास रहा। दोपहर के समय भी आसमान में बादल छाए हुए थे, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी हुई है जिससे वातावरण में नमी और उमस बढ़ गई है, जिससे दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। शाम के समय मौसम सुहावना रहने की संभावना है। अगर अगले 24 घंटे की बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। किसानों को मेरी सलाह है कि यदि बारिश हो तो दवा या उर्वरक का छिड़काव ना करें और खेती में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। आइए साथियों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा अंतराल, जाइएगा नहीं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण लोग। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं एक और कार्यक्रम जिसका नाम है मजदूर मंडल।

श्रमिक दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। देश दुनिया की खबरों के साथ कार्यक्रम में आपका साथ निभाने के लिए मैं हूं संतोष वर्मा। आज गुरुवार है दोस्तों, तो मेरा देश मेरी शान पर भी बात करेंगे, गीत संगीत का भी आनंद लेंगे और बात करेंगे बारिश के इस मौसम में सेहतमंद रहने की। लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले आज का प्रश्न, और प्रश्न ये है कि देश में पहली बार रेडियो प्रसारण की सेवा कब शुरू हुई थी। ये प्रश्न दोस्तों आज के दिन से जुड़ा है, क्योंकि आज पूरे देश में हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहे हैं। इस दिवस का आयोजन रेडियो प्रसारण यानी आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के महत्व को दर्शाने के लिए किया जाता है। हमारा रेडियो, हमारी आकाशवाणी अपनी शुरुआत से लेकर आज तक हमारा सबसे अच्छा और विश्वसनीय साथी है, जो समय के साथ और भी बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बन गया है। सबसे पहले मुंबई से सन 1927 में 23 जुलाई को भारत का पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था, इसीलिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के लिए 23 जुलाई निर्धारित की गई। इस रेडियो प्रसारण सेवा का बाद में नाम रखा गया ऑल इंडिया रेडियो, और फिर से इसका नया नाम मिला आकाशवाणी। आज आकाशवाणी भारतीय प्रसारण सेवा का सबसे मजबूत स्तंभ है, जो निरंतर हमें नए रंग और रूप में ज्ञान, सूचना, जानकारी और मनोरंजन से जोड़ रहा है। समय के साथ ही यह बेमिसाल माध्यम केवल समाचार और मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, खेती

स्वास्थ्य, मौसम, खेल, संस्कृति और समाज की हर छोटी बड़ी जानकारी का विश्वसनीय स्रोत बन गया है। हमारे मेहनतकश भाई बहनों के लिए तो रेडियो हमेशा एक सच्चा हमसफर रहा है। दिन भर की मेहनत के बाद जब कोई मधुर गीत सुनाई दे, कोई काम की जानकारी मिले या अपनेपन से भरी आवाज़ में कोई हालचाल पूछे तो थकान भी जैसे मुस्कुराने लगती है। यही अपनापन, यही विश्वास प्रसारण की सबसे बड़ी ताकत है। रेडियो की दुनिया बड़ी अनोखी है। यहाँ आवाज़ का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूत रिश्ते बन जाते हैं। खेत हो, कारखाना हो, दुकान हो, सड़क हो या घर का आंगन, रेडियो की पहुँच बिना किसी भेदभाव के हर जगह है। यही वजह है कि पीढ़ियाँ बदलती रहीं, तकनीक बदलती रही, लेकिन रेडियो की आत्मीयता आज भी हमें बांधे रखती है। हमारा ये सच्चा और भरोसेमंद साथी हमेशा यूं ही हमारा साथ निभाता रहे, इसी उम्मीद के साथ आज के इस विशेष मौके पर आकाशवाणी परिवार की ओर से अपने सभी श्रोताओं और देश के सभी कर्मयोगियों को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे ही सुनते रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि प्रसारण केवल आवाज़ों का सफ़र नहीं है, बल्कि विचारों की यात्रा भी है। रेडियो ने समय समय पर हमें देश के इतिहास, संस्कृति और उन वीर सपूतों की कहानियाँ सुनाई हैं जिन्होंने अपना वर्तमान हमारे भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। जब भी हम अपने स्वतंत्रता संग्राम को याद करते हैं, अनेक ऐसे नाम सामने आते हैं जिनके साहस और बलिदान ने पूरे देश में आज़ादी की लौ को जलाए रखा। आइए बात करते हैं ऐसे ही एक अमर स्वतंत्रता सेनानी की, जिनकी निर्भीकता, संगठन क्षमता और अदम्य देशभक्ति आज भी हर भारतीय को प्रेरित करती है। ये हैं राष्ट्र की सेवा में अपनी जान देने वाले अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले के भावरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर तिवारी बचपन से ही निडर, स्वाभिमानी और तेजस्वी थे। उनके माता पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने, लेकिन शायद नियति ने उन्हें भारत माता की सेवा के लिए चुना था। साल 1921 गांधी जी के असहयोग आंदोलन की लहर पूरे देश में थी। उस समय चंद्रशेखर जी की उम्र मुश्किल से 15 वर्ष थी, लेकिन मन में देशभक्ति की ज्वाला किसी अनुभवी योद्धा से कम नहीं थी। आंदोलन में भाग लेने पर उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? निर्भीक स्वर गूंजा, आज़ाद। फिर पूछा गया, पिता का नाम? उत्तर मिला, स्वाधीनता। तीसरा प्रश्न था, घर कहाँ है? और जवाब आया, जेल। एक किशोर के इन तीन उत्तरों ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती सी दे दी। उस दिन अदालत ने भले ही उन्हें सजा दी हो, मगर पूरे देश ने उसी दिन उन्हें एक नया नाम दिया, चंद्रशेखर आज़ाद। यह केवल एक नाम नहीं था दोस्तों, यह एक संकल्प था। संकल्प कि जीवन की अंतिम सांस तक अंग्रेजों की गिरफ्त में जीवित नहीं आएंगे। आज़ाद जी ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि को समर्पित कर दिया। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख स्तंभ थे। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के बाद इस क्रांतिकारी संगठन को नई दिशा देने की एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ही निभाई। वे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे महान क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक, साथी और प्रेरणा स्रोत थे। 27 फरवरी 1931 का दिन, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके साथियों को अंग्रेज पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। लगातार गोलियां चल रही थीं, पर आज़ाद का साहस अडिग था। उन्होंने अपने साथियों को सुरक्षित निकल जाने का अवसर दिया और अकेले ही अंग्रेज़ों का सामना करते रहे। आखिर में उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची, पर उन्हें अपना वर्षों पुराना प्रण याद था कि दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। उन्होंने ठीक यही किया। इसी लड़ाई में इसी दिन अपनी ही पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और अपने वचन को अमर कर दिया, अंग्रेज़ उन्हें जिंदा नहीं पकड़ पाए। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत

0: केवल एक वीर गाथा नहीं बल्कि आत्मसम्मान का सर्वोच्च उदाहरण है। आज उनकी जयंती पर हम सब इस अमर क्रांतिकारी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे, देश की उन्नति में अपना योगदान देंगे और उन बलिदानियों के स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। भारत को विश्व पटल पर एक मजबूत देश बनाने का सपना देखने वाले एक और महापुरुष थे दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए खुद तो कोशिशें की ही, साथ ही देश के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। आज के कार्यक्रम में ज्ञान सागर में बात करेंगे इन्हीं के बारे में एक अंतराल के बाद।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

अंतराल के बाद दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम मजदूर मंडल में। और हम बात कर रहे थे दोस्तों लोकमान्य तिलक की। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुए बाल गंगाधर तिलक बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वे कॉलेज में पढ़ाई करने वाली पहली भारतीय पीढ़ी के लोगों में से थे जिन्होंने गणित, संस्कृत और कानून की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षक बने, वकालत भी की, समाज सुधार के कार्य किए, पत्रकारिता के जरिए अंग्रेजों का विरोध किया और आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर शामिल रहे। उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी कि लोगों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी, यानी लोगों के नायक। अंग्रेजी और मराठी भाषा में वह केसरी नाम का समाचार पत्र चलाते थे। इसमें अंग्रेजी शासन का विरोध करते, इसके चलते कई बार अंग्रेजों ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। कई बार कई कई वर्षों तक वे जेल में ही रहे, लेकिन आज़ादी की जंग में कभी पीछे नहीं हटे। वे चाहते थे कि भारत का हर नागरिक शिक्षित हो, जागरूक हो और अपने अधिकारों को पहचाने। तिलक जी केवल शिक्षक या पत्रकार ही नहीं थे, जन जागरण के महानायक थे जिन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के सबसे बड़े माध्यम के रूप में सिद्ध किया। अपने अखबार के जरिए उन्होंने अंग्रेजी शासन की नीतियों का निर्भीकता से विरोध किया और देशवासियों में आत्मसम्मान की भावना जगाई। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, उनका यह वाक्य आज भी हर देशवासी को जोश से भर देता है। यह केवल एक नारा नहीं था दोस्तों, बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल में आज़ादी की लौ जलाने वाला मंत्र था। उस समय जब अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध खुलकर बोलना बहुत हिम्मत का काम था, तब तिलक जी ने जनता को संगठित किया और स्वराज की अलख जगाई। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती जैसे आयोजनों को सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का माध्यम बनाया। इन आयोजनों ने लोगों को एकजुट किया और स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए इस महान राष्ट्र नायक को शत शत नमन करें और उनके विचारों से प्रेरणा लेकर पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन का संकल्प लें। हमेशा यही कोशिश करें कि अपने देश की आन बान शान को कभी धूमिल नहीं पड़ने देंगे, अपनी राष्ट्रीय संपदा की रक्षा करेंगे, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेंगे। ऐसा ही हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों, हमारा अपना तिरंगा जो हमारे देश की शान है। तो आज के मेरा देश मेरी शान सेगमेंट में अब कुछ बातें अपने इसी शानदार तिरंगे की जो जब भी लहराता है करोड़ों देशवासियों।

0: को गर्व से भर देता है। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने इस तिरंगे की रूपरेखा तैयार की थी, जिसे 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया। तीन रंगों में समाया हमारा यह तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं है दोस्तों, बल्कि देश की एकता, अखंडता और देशवासियों के स्वाभिमान का प्रतीक है। ध्वज में सबसे ऊपर मौजूद केसरिया रंग देश के शूरवीरों के साहस और बलिदान का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि देश की रक्षा और प्रगति के लिए निस्वार्थ भावना से काम किया जाए। बीच की सफ़ेद पट्टी शांति, सत्य और पवित्रता का संदेश देती है। यह रंग हमें याद दिलाता है कि भारत सदैव विश्व शांति और सद्भाव का समर्थक रहा है। ध्वज के निचले हिस्से का हरा रंग हरियाली, संपन्नता और हमारे किसानों, मजदूर भाई बहनों की मेहनत का प्रतीक है। यह समृद्ध भारत की खुशहाली को दर्शाता है। सफ़ेद पट्टी के ठीक बीच में बना नीले रंग का अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियां हैं, वह हमें यह संदेश देता है कि समय निरंतर बहता रहता है और हमें भी बिना रुके, बिना थके देश की प्रगति के लिए आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के बलिदानों, संघर्षों और भावनाओं का प्रतीक है। इसीलिए इसका सम्मान करना हम सब का कर्तव्य है। तिरंगे का उपयोग गरिमा और सम्मान के साथ करना चाहिए। जब भी राष्ट्रध्वज फहराया जाए, उसके सम्मान से जुड़े नियमों का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। राष्ट्रध्वज कभी धरती को स्पर्श न करे, उसे फटे या मैले रूप में ना फहराया जाए और ध्वज को उतार कर भी पूरे सम्मान के साथ रखना चाहिए। यानी ध्वज के सम्मान का मतलब केवल सलामी देना ही नहीं है, बल्कि उसके गौरव को हर परिस्थिति में बनाए रखना भी है। जिस तरह तिरंगा कभी झुकता नहीं, उसी तरह हम भी अपने कर्तव्य, ईमानदारी और मेहनत के मार्ग पर अड़िग रहेंगे। यही हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति हमारा सच्चा सम्मान होगा कि अपने देश के लिए अपनी जान देने में भी कभी पीछे नहीं हटेंगे।
1: बल्ली के थे
2: ओ देश।

श्रमिक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। और दोस्तों, कार्यक्रम में अब बारी है पिछले हफ्ते की देश दुनिया की कुछ खबरों की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत शुक्रवार को देश की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इसे मेक इन इंडिया का सफल उदाहरण बताया। यह हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है। देश में जल्द ही प्लास्टिक के नोटों की शुरुआत होने वाली है। पहले 10 और 20 रुपए के छोटे नोटों से ट्रायल किया जाएगा, फिर बड़े पॉलीमर नोट चलन में लाए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉलीमर नोटों की छपाई की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। सुरक्षा विशेषताओं से युक्त पॉलीमर शीटों के निर्माण और आपूर्ति हेतु वैश्विक टेंडर आमंत्रित किया गया है। ये कदम इसीलिए उठाया गया है दोस्तों, क्योंकि प्लास्टिक के करेंसी नोटों में सुरक्षा के ज़्यादा मजबूत इंतजाम किए जा सकते हैं। इनकी नकल बनाना आसान नहीं होगा, तो फर्जी नोटों की समस्या पर भी रोक लगेगी। उम्मीद है कि अगले 3 से 6 माह में पॉलीमर नोट की शुरुआत कर दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दिलाने वाले पोर्टल जन समर्थ को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबद्ध करने का आदेश दिया है। साल 2022 में शुरू किए गए जन समर्थ पोर्टल पर आम लोग सरकारी योजनाओं के तहत लोन के लिए अपनी पात्रता जांच सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अभी इस पोर्टल पर 46 योजनाएं हैं। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऋण आवेदन खारिज होने की वजहों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएं, अपनी कर्ज प्रबंधन प्रणाली को सीधे जनसमर्थ पोर्टल से जोड़ें ताकि कागजी कार्रवाई खत्म हो और कम समय में पैसा सीधे ग्राहक के खाते में पहुंच सके। भारत के औषधि महानियंत्रक ने डेंगू से बचाव के लिए देश के पहले टीके क्यूडेंगा को बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है। इस टीके को जापानी कंपनी टोकेडा ने बनाया है। कंपनी का दावा है कि यह डेंगू के चारों विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करेगा। यह टीका त्वचा के नीचे लगाया जाएगा और 3 माह के अंतराल में इसकी 2 खुराक दी जाएंगी। भारत सहित 43 देशों में इस टीके को मंजूरी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत इस वर्ष स्नातक उत्तीर्ण करने वाली 50,000 मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है। प्रत्येक कॉलेज की टॉप 5% उन छात्राओं को स्कूटी मिलेगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम है। मेधावी छात्राओं के साथ साथ दिव्यांग, निराश्रित और सेना में शहीदों की बेटियों को भी स्कूटी दी जाएगी। इन छात्राओं के लिए अंक प्रतिशत और आय सीमा की भी कोई शर्त नहीं है। यह लाभ सभी राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, राजकीय एडेड व निजी डिग्री कॉलेजों की छात्राओं को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी बात देश दुनिया की खबरों की। और अब बात अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन दिनों में कुछ सेहत टिप्स की। आजकल का बरसात का मौसम सुहाना तो लगता है, लेकिन इस मौसम में सावधान रहना भी ज़रूरी है, खासकर उन साथियों के लिए जो रोज़ खुले आसमान के नीचे खेतों में, निर्माण स्थलों पर, कारखानों में या सड़कों पर काम कर रहे हैं। यदि काम करते वक्त भीग जाएं, तो कोशिश करें कि जल्दी ही जूते और कपड़े बदल लें, क्योंकि नमी से त्वचा संक्रमण या खुजली हो सकती है। बरसात में फिसलन और जल भराव हो जाना भी एक समस्या है, तो जल भराव वाली जगहों से हमें बचकर निकलना चाहिए। और अगर फिसलन वाली जगह पर हों तो कभी जल्दबाजी ना करें। यदि सिर पर या कंधे पर कोई वजन उठाकर चल रहे हैं तो छोटे कदम रखिए, जहां तक संभव हो रेलिंग या किसी और सहारे का उपयोग करें। इस तरह की सावधानी हमें बड़ी चोट लगने से बचा सकती है। इन दिनों किसी भी विद्युत उपकरण

को छूने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि हाथ सूखे हों और आसपास पानी ना जमा हो। बरसात में खुले तार, गीले बोर्ड या पानी के पास रखे बिजली के उपकरणों में करंट आ सकता है, तो कहीं स्पार्किंग दिखाई दे या तार टूटा हो तो तुरंत विद्युत विभाग को सूचित करें। घर के तारों और उपकरणों को भी दुरुस्त रखें। निर्माण कार्य करने वाले साथियों के लिए एक और ज़रूरी बात, गीला सीमेंट और चूना लंबे समय तक त्वचा के संपर्क में रहे तो हाथ पैरों में जलन, रूखापन या घाव हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे कामों में दस्ताने ज़रूर पहनें। काम के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ पैर साफ कर लें। नारियल तेल या कोई दूसरा मॉइस्चराइजर लगाना भी ठीक रहेगा। बरसात में मच्छर भी तेज़ी से बनपते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, इसीलिए मच्छरों से बचाव के इंतज़ाम भी कीजिए। सबसे अच्छा उपाय है घर के कोनों में नीम या कपूर का धुआं करना। घर पर या कार्यस्थल पर गंदा पानी जमा नहीं होने देंगे तो इससे मच्छरों की संख्या कम होगी और बीमारियों से बचाव होगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारे कई मेहनतकश भाई बहन अक्सर दर्द, बुखार या थकान को यह कहकर टाल देते हैं कि एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन यही लापरवाही डेंगू, चिकनगुनिया या गंभीर संक्रमण का रूप ले सकती है। इसीलिए यदि तेज़ बुखार, बदन दर्द, लगातार कमजोरी, पैरों में सूजन या सांस लेने में तकलीफ हो तो बिना देर किए डॉक्टर के पास या स्वास्थ्य केंद्र जाएं। बीमारी छिपाने से काम नहीं चलता, समय पर इलाज ही सबसे बड़ी समझदारी है। दोस्तों, देश दुनिया की और परिवार की उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं। हमारी मेहनत से घर का चूल्हा जलता है, बच्चों के सपने पूरे होते हैं और देश की तरक्की की इमारत खड़ी होती है। इसीलिए काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। बारिश के मौसम में सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भीगते भिगोते मौसम का मज़ा लीजिए। कार्यक्रम मजदूर मंडल के साथ, गीत संगीत के साथ।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो स्वयं बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भंग करने के लिए जिम्मेदार लोगों को शीघ्रता से दंडित किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने आज बताया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए कुल 1000 तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि विदेश मंत्रालय स्वयं के खर्च पर यात्रियों को परिवहन, आवास, भोजन, चिकित्सा परीक्षण, मार्गदर्शन आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है। सिक्किम में नामची जिले के समरदुंग में एनएचपीसी तीस्ता जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे सभी 25 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही 4 दिन के बाद बचाव अभियान समाप्त हो गया। सिक्किम सरकार ने इस दुखद घटना के कारणों का पता लगाने के लिए 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को 15

0: दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ये कदम विशेष रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में व्यापक अनियमितताओं का पता चलने के बाद उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोटरोसेनी पैलेस में राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। इस दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में शनिवार तक तेज बारिश की संभावना है। प्रशासन ने पुणे और कोंकण की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत को 126 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found. Prime Minister Narendra Modi announced that the centre will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks and asserted that protecting students' future remains the government's top priority. In a social media post, the Prime Minister said that nothing is more important than the welfare and future of the youth of the country. His statement comes amid the ongoing student protests at Delhi's Jantar Mantar over the NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Both Houses of Parliament had been adjourned for the day following the opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses as per the date and duration desired by the opposition. Mr. Rijiju appealed to the Congress party not to impose conditions, stating that such conditions may be seen as an attempt to avoid discussion. Union Minister and Leader of the House, J.P. Nadda, criticized the opposition, terming its conduct as highly irresponsible. He alleged that the opposition neither wants a discussion nor is willing to allow for the House to function. Leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, demanded the resignation of the Union Education Minister, saying that without his resignation, the discussion will not happen. He said that Congress is not shying away from discussion. Delhi police has clarified that the powers of detention granted under the National Security Act to the Delhi Police Commissioner is

0: not new, as it is a routine extension or renewal of powers. In a statement, the Delhi police said this order is issued every 3 months and the present renewal was issued on the 7th of July for the period 19 July to 18th October this year. It said the renewal was issued well before the commencement of the students' protests. In Sikkim, all the 25 bodies have been recovered, trapped inside the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage 6 hydroelectric project at Samardung in Namchi district. With this, the rescue operation came to an end after 4 days. Multiple agencies of the centre and Sikkim government were involved in the rescue measures. The Sikkim government has also constituted a 4-member inquiry committee to find out the reasons for the tragic incident. The committee has been asked to submit a report within 15 days. President Draupadi Murmu arrived in Bucharest, Romania today on the final leg of her three-nation visit. After her arrival at the Cotroceni Palace, President Murmu was accorded a guard of honour. During her visit, she will hold delegation-level talks with her Romanian counterpart Nicoșor Dan. Several MOUs will be signed after the talks. The President of Romania and the First Lady will host a state dinner in the honour of President Murmu tonight. The 23rd Commonwealth Games CWG will begin today in Glasgow, Scotland. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalist Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lavlina Borgohain are set to represent India at the CWG 2026. In men's cricket, Zimbabwe have set a target of 126 runs against India in first T20 international of the three-match series in Harare. In reply, India was 68 for 2 in 6.2 overs when reports last came in. Earlier put into bat, Zimbabwe posted 125 runs for the loss of 7 wickets in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर था 1530 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 हुए हैं और ये वक्त है कार्यक्रम विविधा का। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर मुरारी लाल अग्रवाल की वार्ता रेडियो की विकास यात्रा। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
2: जब जनसंचार के आधुनिक उपकरणों का विकास नहीं हुआ था तब मनुष्य पुकार कर संदेश देता था, अपने चारों ओर एकत्रित व्यक्तियों की छोटी सभा को संबोधित कर देता था। ये परंपरागत तरीके आज भी प्रचलित हैं, परंतु इन तरीकों से दूर स्थित विशाल जनसंख्या तक पहुंच पाना संभव नहीं था। अपने संदेश को विशाल जनसंख्या तक पहुँचाने के लिए मनुष्य ने अपनी संचार क्षमताओं में निरंतर प्रगति की है। इसी क्रम में उसने मुद्रित कागजों का जाल फैलाकर अपनी संचार क्षमता में बढ़ोतरी की, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। मुद्रित कागज बोल नहीं सकता, उसे केवल पढ़ा जा सकता है। इसलिए कागज से संदेश ग्रहण करने के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, और फिर दूरस्थ गांवों, घने जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और दूरस्थ घाटियों में रहने वाली जनसंख्या तक मुद्रित कागज भेज पाना अत्यधिक कठिन कार्य है। इसी समस्या से निपटने के लिए रेडियो का आविष्कार किया गया। रेडियो आधुनिक युग में जनसंचार का सबसे सुलभ और सस्ता माध्यम है। अन्य जनसंचार माध्यमों की अपेक्षा इस माध्यम की पकड़ एक विशाल वर्ग पर है। वर्तमान युग में जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में टेलीविजन, इंटरनेट, ईमेल आदि जैसे अनेक प्रकार के नए संसाधन जुड़ते चले जा रहे हैं, उसके बावजूद भी रेडियो की उपयोगिता कहीं भी नहीं घटी, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों ने उसे अधिक से अधिक अपनाने का प्रयास किया है। आज तो यह विभिन्न संचार माध्यमों में सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त रूप है। भारत के लिए तो रेडियो संचार का ऐसा माध्यम है जिसके बिना संचार तंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। भारत की अधिकांश जनता गांवों में बसती है, करोड़ों की जनसंख्या आज भी अनपढ़ और गरीब है। ऐसे में रेडियो जैसा दृश्यहीन माध्यम उनके लिए वरदान है। इसके द्वारा दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुविधा मिलती है। जहां तक पहुंचने के लिए यातायात के संसाधन नहीं हैं और न ही बिजली की व्यवस्था है, वहां तक रेडियो की सुविधा पहुंच सकती है। केवल रेडियो ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वे पूरे भारत और विश्व के

जुड़ सकते हैं। अनपढ़ और नेत्रहीन लोगों के लिए तो रेडियो ही ऐसा माध्यम है जो उनके जीवन में रस भर देता है। आज भी गांवों और शहरों की प्रत्येक झुग्गी बस्ती में, गरीबों के घरों में रेडियो की आवाज़ सुनी जा सकती है। टेलीविज़न भी रेडियो के समान तत्काल सूचनाओं को प्रसारित तो कर सकता है, लेकिन उसके पास विशाल श्रोता समूह नहीं है। साथ ही जिन क्षेत्रों में बिजली की सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, वहां पर टेलीविज़न भी असहाय हो जाता है। ऐसे में रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो आकार में छोटा होने के कारण व्यक्ति के पास हमेशा रह सकता है, जिसके द्वारा तुरंत ही उसे किसी भी स्थान पर घटने वाले समाचार की सूचना प्राप्त हो जाती है। रेडियो का आविष्कार 19वीं शताब्दी में हुआ। वास्तव में रेडियो की कहानी सन 1815 ईस्वी से आरंभ होती है, जब इटली के एक इंजीनियर गुगलियो मार्कोनी ने रेडियो टेलीग्राफी के जरिए पहला संदेश प्रसारित किया। यह संदेश मोर्स कोड के रूप में था। रेडियो पर मनुष्य की आवाज पहली बार सन 1906 में सुनाई थी। यह तब संभव हुआ जब अमेरिका निवासी इंजीनियर ली डी फॉरेस्ट ने प्रयोग के तौर पर एक प्रसारण करने में सफलता प्राप्त की। उसने यह परिष्कृत निर्वात नलका का आविष्कार किया जो आने वाले संकेतों को विस्तार देने के लिए थी। डी फॉरेस्ट ही था जिसने सर्वप्रथम 1916 में रेडियो समाचार प्रसारित किया। यह समाचार वास्तव में संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम की रिपोर्ट थी। सन 1920 में अमेरिका के पिट्सबर्ग में प्रथम प्रसारण केंद्र की स्थापना की गई। सन 1920 के बाद तो अमेरिका और ब्रिटेन ही क्या, विश्व के कई देशों में रेडियो ने धूम मचा दी। इसी अवधि में यूरोप, अमेरिका तथा एशियाई देशों में बहुत से शोध कार्य हुए, जिनके परिणाम स्वरूप रेडियो ने अभूतपूर्व प्रगति की। कालांतर में इलेक्ट्रॉन तथा ट्रांजिस्टर की खोज ने रेडियो, ट्रांजिस्टर तथा दूरसंचार के क्षेत्र में बहुत विकास किया। भारत में रेडियो का इतिहास अगस्त 1921 से आरंभ होता है, जब पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग द्वारा द टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग से मुंबई में संगीत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जून 1923 में मुंबई के एक रेडियो क्लब द्वारा पहला कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। इसके बाद एक प्रसारण सेवा की स्थापना हुई, जिसमें भारत सरकार और एक निजी कंपनी भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड के बीच समझौते के तहत 23 जुलाई सन 1927 को मुंबई और कोलकाता में एक साथ प्रायोगिकी के आधार पर रेडियो प्रसारण शुरू किया गया। सन 1930 में भारत सरकार ने मुंबई और कोलकाता स्थित दो निजी ट्रांसमीटरों का अधिग्रहण करके भारतीय प्रसारण सेवा की स्थापना की, और सन 1935 में लियोनेल फिल्डन को भारत में प्रसारण नियंत्रक नियुक्त किया गया। जनवरी 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया, जो सन 1957 में फिर बदलकर आकाशवाणी हो गया। स्वतंत्रता के समय सन 1947 में रेडियो स्टेशन केवल मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ तथा चंडीगढ़ में थे, जिनकी संख्या मार्च 2015 तक देश भर में 414 तक पहुंच गई है। आकाशवाणी कई वर्षों से त्रिस्तरीय प्रणाली का उपयोग राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय प्रसारण में कर रहा है। वह अपने स्टेशनों के माध्यम से महाद्वीपीय आयाम और बहुलतावादी समाज में श्रोताओं की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी करता है। ये केंद्र 23 भाषाओं और 146 बोलियों में समाचार, संगीत, बातचीत शब्द और अन्य कार्यक्रम पूरे देश की 99.1% जनसंख्या तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के प्राय हर देश में रेडियो प्रसारण की स्थिति में क्रांतिकारी प्रगति हुई है, और इस जन माध्यम को व्यापक समाज मुक्त हृदय से अपना चुका है। रेडियो कार्यक्रम के श्रोताओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। रेडियो के श्रोता अब भी बहुत हैं। नए नए कार्यक्रम उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, नए नए रेडियो प्रसारण उन्हें बांध रहे हैं। अब केवल समाचार या मनोरंजन परक गीत, फिल्मी गीत आदि कार्यक्रम ही रेडियो पर प्रसारित नहीं होते, बल्कि ऐसे नए कार्यक्रम भी सुनने को मिलते हैं जो श्रोताओं को अपने में बांध लेते हैं। भारत सरकार ने रेडियो की महत्ता को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी को अलग विभाग के रूप में गठित कर दिया है। आज सूचना एवं प्रसारण

0: मंत्रालय के सभी विभागों में आकाशवाणी सबसे बड़ा उपक्रम है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मुरारी लाल अग्रवाल की वार्ता रेडियो की विकास यात्रा। इसी के साथ कार्यक्रम विविधा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेपर लीक मामले में जिम्मेदारों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध होगा प्रदेश। अयोध्या में आज विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय संत समाज की हुई अहम बैठक। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और व्यवस्थाओं में परिवर्तन का किया गया स्वागत। और प्रदेश में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से गंगा, घाघरा, शारदा नदी उफान पर। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आज प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के इस फैसले का विद्यार्थियों ने स्वागत किया है। बाराबंकी के छात्र निहाल अग्रवाल ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने की सरकार की ये पहल सराहनीय है।
4: इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम सरकार अकाउंटेबिलिटी ले रही है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आगे चीजें ऐसी ना हो। इसके लिए मोदी जी ने ट्वीट किया है कि वो फास्टैग कोड बनाएंगे, जो जिम्मेदार हैं उन पे एक्शन लेंगे। हमारी यही मांग थी कि जो भी अकाउंटेबल लोग हैं, जिनसे गलती हुई है, जिन्होंने ऐसा काम किया है, उनको सजा मिले। हमारी सरकार से यही मांग थी, सरकार हमारी मांग पूरी कर देगी।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के पेपर लीक के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोड बनाने के फैसले को राष्ट्र की निर्णायक आवाज बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नए भारत में युवाओं का हित सर्वोपरि है। उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कानून शीघ्र और कठोर दंड देगा।

0: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। विपक्ष सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करें ताकि छात्रों से जुड़ी चिंताओं का समाधान हो और भविष्य में उनके साथ ऐसी घटनाएं न हो।
1: लोकतंत्र में चर्चा का चर्चा से ही समाधान निकलता है और सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है और सदन में हम उसको स्पष्ट भी करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए युवा देश का सबसे बड़ा हमारा भविष्य है। प्रधानमंत्री जी हमेशा हर नौजवान को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं और हमारी सरकार तैयार है कि देश के नौजवानों के साथ कोई भी अन्याय ना हो।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जिले के पहले 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में सुदृढ़ हुई कनेक्टिविटी का उल्लेख करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं विकसित भारत की संकल्पना को नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आवागमन को आसान बनाने का माध्यम है और आवागमन का माध्यम जितना अधिक तेज होगा उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी और समृद्धि भी आएगी।
2: ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी, फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है।
0: अयोध्या में कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक के बाद आज विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय संत समाज की बैठक हुई। मणिरामदास छावनी में हुई इस बैठक में रामलला मंदिर की धार्मिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में संतों ने ट्रस्ट द्वारा धार्मिक समिति के पुनर्गठन का स्वागत किया। इससे पहले कल हुई ट्रस्ट की बैठक में मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की परंपरागत प्रामाणिकता और शुद्धता बनाए रखने के लिए धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया गया था। बैठक से संत समाज ने स्पष्ट संदेश दिया कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में हो रही जांच पर भरोसा रखा जाए और जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर न पहुंचा जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में साल 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती नवीनतम उपलब्ध तकनीकों का उपयोग करके देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा। इस मौके पर अमरोहा के गजरौला स्थित रेडियो संग्रहालय के संस्थापक राम सिंह बौद्ध ने कहा कि मौजूदा दौर में भी आकाशवाणी ज्ञान और विज्ञान को फैलाने का सशक्त माध्यम बना हुआ है।
4: आपको राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की और विशेषकर रेडियो सुनने वालों की हार्दिक शुभकामनाएं और ये आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य को ज्ञान विज्ञान मनोरंजन की ओर सब लोग

0: वो अपना विषय बताया कि उसके अपने उद्देश्य के प्रति निरंतर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात रेडियो पर शुरू करकर रेडियो पुनः लोगों के हाथों में आ गया है और इसके सुनने वालों की संख्या लगभग 50 करोड़ तक पहुंच चुकी है।
1: आगामी 30 जुलाई से शुरू होने वाले सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश के कई जनपदों में तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। इसी क्रम में हापुड़ में यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने 17 कांवड़ मोबाइल बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल बाइक पुलिसकर्मी कांवड़ मार्गों, प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर निरंतर पेट्रोलिंग करेंगे। वहीं वाराणसी में शिवभक्तों और कांवड़ यात्रियों की संभावित भीड़ के मद्देनजर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा स्वच्छता के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में आज से गंगा नदी में इलेक्ट्रिक यात्री नौकाओं का संचालन शुरू हो गया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण और गेल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से इलेक्ट्रिक वोट कन्वर्जन पायलट परियोजना के तहत ये शुरुआत की गई है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। इस बीच वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा का जलस्तर भी खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक मामले में जिम्मेदारों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध होगा प्रदेश। अयोध्या में आज विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय संत समाज की हुई अहम बैठक। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और व्यवस्थाओं में परिवर्तन का किया गया स्वागत। और प्रदेश में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से गंगा, घाघरा, शारदा नदी उफान पर। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर 33,530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी की आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय प्रसारण दिवस के अवसर पर विशेष परिचर्चा। प्रतिभागी हैं डॉक्टर राज बहादुर राज, अनुर डंग, दिलीप रघुवंशी, अखलाक हुसैन, डॉक्टर महेश धाकड़। संचालन कर रहे हैं अनेंद्र सिंह।
4: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज की इस विशेष परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल मीडिया जगत से जुड़ा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र, संस्कृति, समाज और जनजीवन की गहराइयों से जुड़ा हुआ विषय है। आज की हमारी परिचर्चा का विषय है कि लोक प्रसारण के जो बदलते आयाम हैं, परंपरा है, तकनीक है, सूचना, संस्कृति, जनविश्वास, इन सभी आयामों पर आज हम अपने सम्माननीय अतिथियों के साथ उनके विचारों को जानने, उनको समझने का प्रयास करेंगे इस परिचर्चा के माध्यम से। भारतीय प्रसारण दिवस की अगर बात करें तो करीब करीब एक शताब्दी की ये यात्रा आज 99 वर्ष पूरे कर रही है और इस अनवरत यात्रा

0: 1917 में रेडियो ने स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना से लेकर राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, साहित्य, संगीत, खेल, विज्ञान और तकनीक, समाज के हर वर्ग को इनसे जोड़ने का कार्य किया है। आज का युग डिजिटल युग है और जब मीडिया का स्वरूप भी तेजी से बदला है, डिजिटल स्ट्रीमिंग हो, FM रेडियोज हो, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आजकल AI, इन सब ने सूचना के स्वरूप को बदल कर रख दिया है। और ऐसे समय में ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोक प्रसारण यानी हमारी अपनी भूमिका क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या होगी, उसका भविष्य क्या होगा। आज के अतिथियों से आपका परिचय करा दूं, जिन विशिष्ट अतिथियों को आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सबसे पहले श्री अरुण डंग साहब हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं।
1: नमस्कार।
0: अखलाक हुसैन साहब हैं, जो मीडिया कर्मी रहे हैं, और दिलीप रघुवंशी साहब हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। राज बहादुर राज जी हैं, जो साहित्यकार भी हैं और संस्कार भारती जैसे सांस्कृतिक संगठन से जुड़े हुए चिंतक हैं। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर महेश धाकड़ जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। शुरुआत में आदरणीय डंग साहब से करना चाहूंगा कि आप साहित्य और समाज दोनों के करीब रहे हैं, आपके विचार में लोक प्रसारण की सबसे बड़ी ताकत वो क्या है? क्या ये केवल सूचना का माध्यम है या समाज की एक सामूहिक स्मृति या सांस्कृतिक चेतना का संवाहक है?
1: हम मानते हैं कि 90वां वर्ष हुआ ऑल इंडिया रेडियो को स्थापित हुए, लेकिन इतिहास जैसा कि आपने अभी कहा के 100 साल का है, और मैं समझता हूँ इससे भी पूर्व का है। 3 साल पूर्व भी इस 100 साल से बॉम्बे रेडियो क्लब बन गया था और उसके तुरंत बाद कलकत्ता में भी बना, और ये बनाया था कुछ उत्साही लोगों ने
0: जी।
1: इसका एक लंबा इतिहास है। इसकी जो एक चीज हमेशा कायम रही वो थी विश्वसनीयता
0: जी।
1: ये विश्वसनीयता का दौर इसका कभी भी खत्म नहीं हुआ, और इसने कई रूपों में और कई चरणों में कई चीजों को देखा और कई चीजों का ये साक्षी रहा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि शुरू में जो मेरा बाल्यकाल था उसमें एक लकड़ी के बक्से के अंदर रेडियो रखा जाता था, और उसमें जो ट्यूब होती थी वो बड़ी देर में गर्म होती थी, लेकिन लोग इंतजार करते रहते थे। और उसके बाद में इसने एक बदलते इतिहास को भी देखा। इस इतिहास में शुरू में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की भी एक स्थापना की, और उससे पहले मोहन स्वरूप कैप्टन और राज बिहारी बोस ने भी इसके अंदर काम किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने
0: जो महिला
1: काफी इसके अंदर उनका भी नाम रहा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसमें काफी ऊंचाइयां प्रदान की। सही मानों में देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले 1944 में कस्तूरबा को राष्ट्रीय माता, और उसी साल कुछ महीनों में गांधी जी को राष्ट्रपिता का, ये रेडियो स्टेशन से उन्होंने सबसे पहले कहा था। और देश की आजादी के बाद भी जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो उद्बोधन दिया उसको भी रेडियो स्टेशन से ही प्रसारित किया गया था। और इसका कितना बड़ा विश्वसनीयता रहती थी कि जब देश का बंटवारा हुआ, देश के बंटवारे में जिसमें मेरा परिवार भी था, शरणार्थी या विस्थापित लोगों का था, उनको कई अखबारों कई समाचारों पर यकीन नहीं आता था, आता था तो केवल मात्र रेडियो के ऊपर ही आता था
0: जी जी।
1: मुझे बताया जाता था क्योंकि देश की आजादी के बिल्कुल कुछ समय पश्चात ही मेरा जन्म, तो घर के अंदर सारी चर्चाएं यही हुआ करती थी, और उस समय एक रेडियो लगा दिया जाता था। गांधी जी कभी इसके बहुत पक्ष में नहीं थे आकाशवाणी के, लेकिन उन्होंने मिलना था कुरुक्षेत्र के अंदर जहां 2 लाख शरणार्थी थे, तो उन्होंने कहा ये संभव नहीं है, दिवाली के दिन में आप नहीं मिल पाएंगे। तो गांधी जी ने रेडियो स्टेशन दिल्ली में प्रवेश किया, आज भी उनका वहां चित्र लगा हुआ, और जिस तारीख को किया ये 1947 नवंबर का दिन था
0: जी।
1: उसको लोक प्रसारण दिवस आज भी हम लोग मनाते हैं, और उन्होंने 2 लाख लोगों से संपर्क करने का भी जो माध्यम चुना वो आकाशवाणी थी,
0: रेडियो ही था।
1: तो आकाशवाणी का बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन, और आज भी बदलते स्वरूप के साथ में इसने भी अपना स्वरूप बदल लिया। कहां एक बक्सा था, कहां फिर हमारा पोर्टेबल ट्रांजिस्टर आ गया, बैटरी के साथ में आ गया, और आज तो आपके नेटवर्क से होता हुआ आपके मोबाइल के अंदर भी है और जन जन के पास में है।
0: ठीक बात। अखला साहब, आपने पारंपरिक रेडियो और आधुनिक जो डिजिटल स्वरूप है उसका, उसको बड़े निकटता से देखा है, आपकी नजर में डिजिटल क्रांति ने प्रसारण की दुनिया को किस तरह से बदला है? सूचना की

0: अधिकता आप महसूस करते हैं और विश्वसनीयता जो है वो महत्वपूर्ण है आज के दौर में?
1: देखिए, मैं समझता हूं कि जो आपका सवाल है आज के दौर में ज्यादा महत्वपूर्णता है इसकी, क्योंकि जितने रिसोर्सेज आ रहे हैं, तमाम तरीके की सूचनाएं, और इस वक्त अपने आप की वो जो एक सब्सक्रिप्शन और अपने व्यूज की होड़ है, जो डिजिटल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, उसके माध्यम में ऐसी कोई भी सनसनीखेज वारदात को परोस देना, तो ऐसे में आज मैं भी कमर्शियल काफी रेडियोज में रहा हूं, लेकिन आज भी चूंकि प्रोडक्ट आकाशवाणी से हूं मैं, तो इस ऑथेंटिसिटी को मैं यही कहूंगा कि पहली प्रमाणिकता तो आज भी हमें रेडियो पर और सरकारी विभाग से प्रदत्त जानकारी पर ही जाती है।
0: बिल्कुल ठीक। सोशल मीडिया पर सूचना की जो गति होती है वो बड़ी तेज होती है
1: जी।
0: ऐसे में लोक प्रसारण की विश्वसनीयता, उसको आप किस तौर पे आज महसूस करते हैं? क्योंकि अब आप डिजिटल युग में अगर देखें तो कोई भी सूचना मोमेंट लाइव उसको फीड मिलती है
1: जी।
0: लेकिन हमारा जो लोक प्रसारण है वो कहीं ना कहीं उसकी जांच परख करके तब खबरों को जनमानस तक पहुंचाता है। तो वो सूचना की महत्वपूर्णता को आप ज्यादा वजन देते हैं या तीव्र गति को?
1: देखिए, मैं ये भी कहूंगा कि वर्तमान में हो सकता है कि हमारा जो पारंपरिक और सरकारी तंत्र से जो प्रसारण होता है उस तक लोग शायद अपने मोबाइल्स में, अपनी गाड़ी में ना रखते हों, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि यदि वो उपलब्ध होगा तो वो पहले वो उसे सुनेंगे। उसका रीजन ये है कि आज भी जब कोई खबर आती है तो वो कम से कम 10-15 चैनल पर जाते हैं कि यहां क्या कहा जा रहा है, वहां क्या कहा जा रहा है, इस यूट्यूब चैनल पर क्या है, तब जाके वो छान पाते हैं। तो इस छनन से ही पता लगता है कि विश्वसनीयता की चाहत उनको भी है। तो कहीं ना कहीं जो अब हमारे एरा के लोग हैं वो आज भी किसी सरकारी चैनल पर जाने का प्रयास करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से अगर मैं रेडियो नहीं सुन सकूं तो उन शख्स से पता कर लूं जो इन रेडियो को सुनते हैं।
0: डॉक्टर महेश जी, आने वाले सालों में अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियो और डिजिटल मीडिया की जो भूमिका है उसको आप एक कॉम्पिटिटर के तौर पे महसूस करते हैं या एक दूसरे को कहीं कॉम्प्लीमेंट करते हुए देखेंगे?
2: मैं इन दोनों को एक पूरक के रूप में देखता हूं, क्योंकि जिस तरीके से एफएम रेडियो ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है और जो प्रोफेशनल्स लोग हैं जो दूर दूर तक अपने नौकरी और उसके लिए जाते हैं, तो गाड़ी में अक्सर देखा गया है कि एफएम रेडियो ही चलता हुआ दिखाई देता है। और जहां तक डिजिटलाइजेशन की बात है तो इसने रेडियो की रीच को और बढ़ाने का काम किया है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो तकनीकी कारणों से कभी कभी प्रसारण कुछ क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाता है तो डिजिटलाइजेशन के जरिए वो प्रसारण वहां तक पहुंचता है। तो इस लिहाज से देखें तो परस्पर निर्भरता भी है। और जहां तक बात रेडियो की है कि रेडियो अपना स्वरूप तो बदल सकता है पर रेडियो का अस्तित्व सदैव के लिए बना रहेगा, मेरा ये मानना है। दूसरी चीज ये कि जो सोशल मीडिया का आज जमाना है, सोशल मीडिया ने भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे पहले हम लोग जब वार्ता करते थे तो उस वार्ता की सूचना सिर्फ अखबारों में छपती थी, अब लोग सोशल मीडिया पर भी उसको डालते हैं और मुझे लगता है कि उससे जो लिसनर्स की संख्या है उसमें भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा आकाशवाणी के भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और उसके अपने ऑफिशियल पेज और अपने ऑफिशियल चैनल्स हैं, उन पर भी वो सुरक्षित रहता है, तो जो लोग उस वक्त नहीं सुन पाते हैं वो बाद में सुन लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आकाशवाणी या रेडियो का जो अपना महत्व है उसे कमतर करके हम नहीं आंक सकते, बल्कि डिजिटलाइजेशन के बाद ये और एनरिच ही हो रहा है
0: जी जी,
2: तो इसलिए इसका अस्तित्व बना रहेगा।
0: राज साहब
1: जी,
0: भारत की सांस्कृतिक विविधता दुनिया भर में उसकी मिसाल नहीं है। लोक प्रसारण ने भारतीय संस्कृति को, भारत की लोक कलाओं को, भारत की लोक भाषाओं को और जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनके संरक्षण में जो अपनी भूमिका निभाई है, आज के वैश्वीकरण के दौर में भी अगर देखें तो सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करने में आकाशवाणी की भूमिका और दूरदर्शन की भूमिका, इन दोनों लोक प्रसारकों की भूमिका को आप कितना महत्वपूर्ण पाते हैं और उसके योगदान को आप किस तरह से डिफाइन?
3: निश्चित रूप से श्रव्य और दृश्य, ये दो, यानी सुनना और देखना
0: जी,
3: ये दोनों ही माध्यम इतने सशक्त हैं कि जो लोक जीवन पर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। जैसा कि इतिहास बताया है, प्रसारण का इतना लंबा इतिहास है, तो जैसे जैसे देश काल वातावरण के अनुसार परिवेश बदलता है, उस परिवेश के अनुरूप ही भाषा, व्याकरण, व्यवहार, आचार संहिता, ये सब कुछ बदलती चली जाती है। बहुत कुछ रेडियो ने अपने माध्यम से जो प्रसारण का बहुत प्रयास किया कि स्वरूप को बदला जाए, वो बदलता गया भी है, लेकिन वर्तमान में जो चूंकि एक साहित्य का

0: विद्यार्थी हूं मैं, इसलिए एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज भाषा के बीच में अंग्रेजी और हिंदी, इसके बीच की एक ऐसी भाषा पैदा हो गई है जो हमारे विचारों का संप्रेषण जो होना चाहिए उस संप्रेषण में कहीं ना कहीं बाधा पैदा करती है। आकाशवाणी के लिए थोड़ा सा प्रयास यही करना है कि जो भी परसंवाद, कविता पाठ या अन्य जो भी माध्यम से हम श्रवण करा रहे हैं समाज को, उसमें कितनी भाषा की शुद्धता और विषयानुकूल भाषा का ये बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि संप्रेषणता उसी से होती है जब हम जो हृदय से निकली हुई बात है और वो बात सीधे सीधे जाकर के प्रभाव करती है। आज एक और चुनौती है, एक और युवा पीढ़ी को हमें देखना है, उस युवा पीढ़ी तक आज के जो विचार हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से जा रहे हैं, तो आकाशवाणी रेडियो स्टेशन के माध्यम से हम उन युवा पीढ़ियों को भी आकर्षित करना चाहते हैं और उनके अनुरूप हम इस प्रकार के कुछ कार्यक्रमों को जिनसे उनकी संस्कृति, संस्कार और सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी है उससे वो परिचित हों, तो उसके लिए निश्चित रूप से हमको उनके अनुरूप जो भाषा का गठन कर रहे हैं। और एक और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक संस्कार है, वो ग्रामीण अंचल, दूर दराज वनवासी वहाँ भी हैं, क्योंकि भारत तो विविधता में एकता लिए हुए है और विविध रंग हैं सांस्कृतिक हमारे, तो हमको सबको समेट करके लेना है, इसलिए हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा उनके लिए जो भाषा का प्रयोग है वो सहज सुबोध, सहज सरलता, बोधगम्य रू होना चाहिए। तो ये सब चीजें देखते हुए हमको ये प्रयास आकाशवाणी के द्वारा हो भी रहे हैं और आगे भी होने चाहिए कि हम भाषा की शुद्धता
1: बनाए रखें। डंग साहब, कविता हो, कहानी हो, नाटक हो या लोक भाषाएं हो, जिस प्रकार रेडियो ने इन सबको घर घर में पहुंचाया है, क्या आज भी आप उसकी उसी सांस्कृतिक भूमिका को देखते हैं?
2: जी बिल्कुल, और उससे भी आगे बढ़कर देखता हूं। शुरू में मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो जो था वो अपने आप में पूर्ण नहीं था, इसके पीछे जो कल्पना थी वो ज्ञान की विविधता को आयाम देने की थी, मनोरंजन नहीं था
1: जी।
2: काफी समय तक फिल्मी संगीत को अलग रखा गया जबकि वो हमारे जीवन का एक
1: अहम
2: हिस्सा।
1: ठीक बात।
2: और जो शुरू में भी जो कि बहुत घाटे में गई और आज भी कई स्टेशन ऐसे जो खोलते हैं, आर्थिक दृष्टि से वो ऐसे कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर जो सोच पैदा हुई कि ऑल इंडिया रेडियो के सुनने वाले कम होते गए और पास में ही एक छोटा सा द्वीप जो भारत के सामने बहुत ही कम संख्या का था, श्रीलंका, रेडियो सलोन ने सारा का सारा शो चुरा लिया, सब उसको देखने लगे क्योंकि मनोरंजन का अभाव था और ज्ञान की विविधता थी, कृषि का था, महिलाओं की शिक्षा का था, मजदूरों को सशक्तिकरण की बातें थी और भी इसका बड़ा भारी महती योगदान था, लेकिन व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ और भी रुचिकर चीजें चाहिए। इसके लिए बाद में विविध भारती की स्थापना की गई और उसने आके इसे पूर्ण किया,
1: शिक्षा, सूचना और मनोरंजन
2: जी। और आज बहुत इसे मनोरंजन का साधन मानने लग गए क्योंकि सुनने वाले इसमें ज्यादा, जैसा अभी आपने बताया कि एफएम रेडियो ने एक बिल्कुल ही एक नई दिशा दे दी क्योंकि उसमें स्पष्टता बहुत है, सुनने में सुलभता बहुत है और खड़खड़ की आवाज जो शुरू में मैंने बचपन में रेडियो में सुनी अब वो नहीं है। इंटरनेट
1: की उसमें बड़ी भूमिका रही,
2: बहुत बड़ी भूमिका रही और इसने स्वीकार किया, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है इसने इसे स्वीकार किया, अपने रूप को भी बदल लिया, अब वो डब्बे से निकल के आके आपके कंप्यूटर इंटरनेट पे आ गया, ये एक बहुत बड़ी चीज है। आज मैं कार में भी जाता हूँ, रेडियो में एफएम सुनता चला जाता हूँ, उसके बाद में रेडियो क्या कर रहा है उसमें चर्चाएं भी हैं, परिचर्चाएं भी हैं, कविताएं भी हैं, इसमें है, इतने प्रोग्राम
1: मिलते हैं,
2: हम होते हैं कि आपको अपने रुचि के अनुसार करते चले जा रहे हैं। और मैं अस्पताल के अंदर भी देखता हूँ, सैनिकों के अंदर भी मैं देखता था जो कि अस्पताल में जाके मिलता था, तो वो भी और कुछ नहीं अपने साथी के रूप में जब उन्हें मिलने वाले लोग आते थे तो मिलने वाले लोगों के बाद में उन्हें कोई अपना साथी उनके जाने के बाद लगता था, तो ऑल इंडिया रेडियो ही लगता था और उससे वो मनोरंजन करते थे अपने आप को।
1: ठीक। दिलीप रघुवंशी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो रंगमंच से संबद्ध हैं। दिलीप जी, रेडियो, नाटक, रंगमंच, इन सब का बड़ा पुराना रिश्ता रहा है
3: जी।
1: आपके विचार में रेडियो ने भारतीय रंग कर्म को किस तरह से समृद्ध किया है?
3: देखिए,

0: थोड़ी सी एक विधा अगर रंगमंच की और हम आकाशवाणी की देखें तो थोड़ा सा फर्क है
1: जी।
0: मगर वो एक फर्क एक चुनौती के साथ प्रस्तुत होता था क्योंकि वहां एक नाटक में काम करने वाले कलाकार दिखाई नहीं देते थे तो आवाज से ही वो अभिनय पैदा करना पड़ता था कि आदमी को लगे सुनने वाले श्रोता को कि वो लाइव हमारे सामने एक अभिनय मंचित हो रहा है। एक बहुत लंबी परंपरा हम देखते हैं नाटकों की श्रृंखला में तो उसमें एक पुराना बहुत महत्वपूर्ण नाम मुझे याद आता है चिरंजीत जी का। वो एक लेखक भी थे अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे और उनका एक नाट्य संग्रह रेडियो पर जो प्रसारण उनके नाटकों का हुआ वो भी प्रकाशित हो चुका है। तो वहां से इस परंपरा को एक पॉपुलर कहें लोगों की वो आकर्षित करने के लिए ढोल की पोल नाम से एक सीरीज उन्होंने आकाशवाणी पर शुरू की थी और वो लगातार फैलती गई और उसके बाद हमारे पास के जिले मथुरा में भी आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ वहां से भी नाटकों का प्रसारण जारी हुआ और उसके बाद फिर आगरा में तो मैं वहां का नाटक का एक कलाकार था मथुरा में और उसके बाद आगरा आने के बाद भी मैं निरंतर नाटकों से जुड़ा रहा। बहुत से धारावाहिक की एक श्रृंखला लगातार हम आकाशवाणी की ही ये परंपरा थी और एक स्टोरी टेलिंग के लगातार एक सिनेमा के गीतों के माध्यम से एक कहानी प्रस्तुत गीतों भरी एक कहानी प्रस्तुत की जाती थी जो इतनी रोचक होती थी कि सब कुछ छोड़ के हम लोग अपना कान रेडियो के स्पीकर पर लगा लिया करते थे और खाना पीना सब भूल जाया करते थे। वो इतनी मनोरंजक होती थी और यहाँ मैं एक बात का जरूर स्मरण करना चाहता हूँ बारंबार मेरे ध्यान में जब 26 जनवरी की परेड निकला करती थी तो वो देखने का हमको कभी सौभाग्य नहीं मिलता था उस दौर में तो जसदेव सिंह जो आंखों देखा प्रसारण सुनाते थे तो कहीं भी हम लोगों को यह महसूस नहीं होता था कि वो झांकी यहाँ झांकी जो है उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे हैं तो ऐसे मतलब बहुत दिनों तक हम सिर्फ उनकी आवाज के दीवाने थे हमें नहीं मालूम था कि वो सरदार है कौन है। बाद में उनके चित्र देखे तो पता चला कि वो इतने महान है या आज हम मेट्रो स्टेशन जो दिल्ली के हैं उसमें शम्मी नारंग की आवाज सुनते हैं इतना ठहरा इतना बेस मतलब जो उसमें यात्रीगण यात्रा करते हैं हर स्टेशन के आने से पहले शम्मी नारंग की आवाज बर बस हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। और यहाँ मैं एक बात और बता दूं आकाशवाणी के स्तर की अगर हम बात करें या दूरदर्शन के स्तर की तो शम्मी नारंग का जो सिलेक्शन हुआ था वो 1,00,000 लोगों की जो टेस्ट दिया गया था उसके बाद उनकी नियुक्ति हुई थी तो माने जो एक स्तर की जो गहराई थी एक जो पकड़ थी एक परिपक्वता थी वो हम उस दौर के नाटकों में देखते हैं। यहाँ एक मिसेज राजपूत हुआ करती थी
1: ऋतु राजपूत
0: नाटक निर्देशक उनके निर्देशन में मैंने भी कई नाटकों में काम किया और बहुत ही गुणी कलाकार थी और हमारे एक आगरा इप्टा के साथ ही जो आगरा केंद्र पे भी रहे थे विनोद शर्मा या उससे पहले हम पुराने दौर की बात करें तो डॉक्टर अचला नागर आकाशवाणी का ही हाँ आकाशवाणी के
2: नाटकों में दिलीप भाई हवा महल का भी
0: जी हवा महल भी और वो फिर
1: उसने जो है लोगों को जितना अपने साथ जोड़ा है
0: बिल्कुल
1: और शायद आज भी जोड़े हुए
0: बिल्कुल।
1: अखलाक जी मैं आपको यहाँ बीच में लाना चाहूंगा आज के पॉडकास्ट और जो स्टोरी टेलिंग की बात की ऑडियो स्टोरी टेलिंग रेडियो नाटक नए स्वरूप में क्या इनके माध्यम से फिर से लोकप्रिय हो सकते हैं
3: इतना बेहतर लोकप्रिय हो सकते हैं मतलब मेरा तो कहना है कि इससे ज्यादा लोकप्रिय हो सकते हैं जो हम वर्तमान में जो देखते हैं स्थितियां। मैं अगर यहां से प्रसारित होने वाली किसी कहानी की बात करूं रेडियो ने एक जमाने से हम इसी जहां स्टेशन पे हम बैठे हैं यहीं की बात थी कि उसमें जो इफेक्ट्स चलते थे पीछे तो जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे उस जमाने में घोड़ा चलने की आवाज थी या वगैरह वगैरह आज उसके लिए फॉली एक कोर्स होता है वो किया जाता है तो रेडियो अब से 15 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं तब भी इन चीजों के साथ काम कर रहा था और अभी एक वर्तमान में मैं किसी प्राइवेट चैनल को सुन रहा था आज भी वो उन इफेक्ट्स का आज इस्तेमाल कर रहे हैं जो रेडियो उस जमाने में
1: करता था।
3: ये इफेक्ट्स का इस्तेमाल अगर मैं कहूं ऑडियो में तो आकाशवाणी से और रेडियो से, प्रसारण जो हमारा है भारतीय सरकारी प्रसारण, इसमें होता था।

0: अगर आज हमने स्टोरी अपना ली और वो विधाएं और वो मेहनत जो यहां होती है जो बाहर नहीं देखी जाती, तलफ्फुज की बात कहें, मैं आज देखता हूं ना जा जा खा खा, ये आकाशवाणी से निकला हुआ ब्रीडी समझती है इस तलफ्फुज को, तो जितनी खूबसूरत ये पैदा कर सकता है स्टोरी तमाम चीजों के साथ, तमाम डायमेंशंस के साथ, उतना मैं समझता हूं कमर्शियल भी नहीं कर पाएगा आज।
1: आवाज के जरिए आप लोगों तक उन संवेदनाओं को पहुंचाते हैं तो उसका एक अपना स्तर होता है। और रंगमंच की बात हम कर रहे थे दिलीप जी से
2: जी।
1: आज का जो युवा कलाकार है उसको लोक प्रसारण के मंचों से जोड़ने के लिए आप किन प्रयासों को समझते हैं कि वो ज्यादा कारगर होंगे, कौन से ऐसे प्रयास हैं जिनको आज किया जा सकता है जहां नए जो युवा कलाकार हैं वो लोक मंचों से जुड़े?
2: देखिए, जहां तक हम बात करें जैन जी शब्द इन बच्चों के लिए बोला जा रहा है आजकल, उन बच्चों में बहुत आकर्षण है निश्चित रूप से, मगर वो दरअसल आकर्षण एक दूसरी दिशा की तरफ हम देखने को पाते हैं और इतना समर्पण और इतना सब्र दरअसल उनमें नहीं है। रंगमंच या नाट्य प्रस्तुति, चाहे वो आकाशवाणी पर हो या रंगमंच पर, उसमें बड़ी पेशेंस की जरूरत है और बड़े अभ्यास की जरूरत है और निरंतरता की आवश्यकता है। उनका जो एक लक्ष्य मैं देखता हूँ या पाता हूँ, वो चाहते हैं कि अब दूरदर्शन के प्रति भी उतना आकर्षण उनका नहीं रहा, वो सिर्फ फिल्मों की तरफ,
1: उसमें भटकाव ज्यादा है, उसमें उसमें जल्दीबाजी ज्यादा है,
2: तो वो एक उसको एक माध्यम के रूप में, एक सीढ़ी के तौर पर सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके अंदर डूबना कतई नहीं चाहते हैं, एक शॉर्टकट की तलाश के लिए है। मगर कुछ ऐसे नौजवान हैं जिनको आज रंगमंच के प्रति लगाव भी है और एक समर्पण का भाव भी है, और कुछ ऐसे युवा भी हैं हमारे साथ भी जो काम करते हैं जो फिल्मों की तरफ उतने ज्यादा आज भी आकर्षित नहीं है।
1: राज बहादुर जी
0: जी,
1: नई पीढ़ी को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में लोक प्रसारण की भूमिका क्या हो सकती?
3: बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है यदि इस पर आगे बढ़कर के कार्य किया जाए, और हो भी रहा है। लोक प्रसारण में लोक संस्कृति है, लोक संस्कृति से ही नई पीढ़ी में संस्कारों का संप्रेषण हो सकता है और वो आकाशवाणी कर सकती है यदि उनके वो चयनित जो विधाएं हैं, कार्यक्रम हैं, गतिविधियां हैं, उनको लाया जाए। उदाहरण के तौर पर जो हमारे लोक गीत हुआ करते थे, उन लोक गीत के अंदर हमारी लोक परंपराएं, लोक संस्कृति, आचार विचार, ये सब निहित हुआ करते थे, लेकिन वो अब धीरे धीरे विलुप्त होते चले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आकाशवाणी का इसमें बहुत बड़ी पहल हो सकती है, क्योंकि गांव देहात में मैं जाता हूं तो देखता हूं कि वहां तो लोग आज भी आकाशवाणी के उन सभी कार्यक्रमों को जो लोक विधाओं से संबंधित हैं बड़ी रुचि से सुनते हैं, लेकिन इनको आज की नई पीढ़ी जो आज की जनरेशन है उनमें कैसे रुचि जागृत की जा सके, इसके लिए आकाशवाणी बहुत बड़ा एक माध्यम बन सकता है।
1: महेश जी, पत्रकारिता का मूल आधार होता है ऑथेंटिसिटी, विश्वसनीयता। आजकल के दौर में फेक न्यूज या सूचना का अतिरेक जो है, लोक प्रसारण को अगर देखें तो आज भी निष्पक्ष, प्रमाणिक और जिम्मेदार पत्रकारिता का आधार जो है वो कहीं न कहीं लोक प्रसारण को माना जाता है, आप क्या कहेंगे?
4: मैं इसमें एक सवाल उठाता हूं कि जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर रेडियो से समाचारों का प्रसारण हुआ करता था, तो उसको हमने लोकलाइज्ड क्यों नहीं किया? अगर हम उसी तरीके से समाचारों को अगर आगरा स्टेशन से, मथुरा स्टेशन से प्रसारित करने लगे, तो मुझे लगता है कि अफवाहों पर काफी हद तक विराम लग सकता है, क्योंकि एक अखबार को छपने में करीब 24 घंटे का अंतराल होता है, लेकिन आकाशवाणी उस सूचना को आधिकारिक तौर पर और विश्वसनीयता के साथ त्वरित जो है प्रसारित कर सकती है, और जो अफवाहें जिस तरीके से फैलाई जाती हैं, जिनसे कई बार दंगे भी हुए हैं, कई बार इस तरह की स्थितियां हुई हैं कि प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं लगाम लग सकता है। अगर हर स्टेशन लोकल न्यूज भी अगर प्रसारित करने लगे मनोरंजन और अन्य सूचनाओं के साथ साथ, तो मैं समझता हूँ शायद जनसंचार का एक बहुत ही सॉलिड साधन हमारे लिए खड़ा होगा। हालांकि उसमें मानव संसाधन कुछ लगाना पड़ेगा, मगर वो जो जनहानि होती है अफवाहों से या जो दुर्घटनाओं से और दंगों से, उसे बचाया जा सकता है। और आकाशवाणी हो या कोई अन्य रेडियो हो, वो एक जिम्मेदार माध्यम तो होता ही है, क्योंकि वहां जो भी प्रसारित किया जाता है उसकी

0: पुष्टि करके ही उसको प्रसारित किया जाता है और बड़ा जिम्मेदारी वाला काम होता है, तो इसलिए वहां से ऐसी कोई भी गलती या कोई भी लापरवाही नहीं होगी।
1: डिजिटल दौर में अखलाक जी, भविष्य की पत्रकारिता में सत्यापन, नैतिकता या जनहित, इन सब चीजों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है?
2: डिजिटलाइजेशन में वर्तमान में सरकार के जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं वो अगर कुछ लाते हैं तो लाते होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ

0: संस्था या किसी ऐसे ही संस्थानों से निर्धारित हो सकता है इतने बड़े स्तर पर। लोकल स्तर पर छोटी छोटी संस्थाएं इस बात की ऑथेंटिसिटी को प्रमाणित करने के लिए काम करती हैं। भाई साहब बैठे हैं थिएटर से, इनके थिएटर से भी जब कोई नाटक होता है तो हम उसको ऑथेंटिक मानते हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर फैलाना और इतने संसाधनों के साथ जाना, ये यहीं से पॉसिबल हो सकता है और कहीं से पॉसिबल नहीं हो सकता।
1: आज का जमाना डंग सर एआई का है, डिजिटल मीडिया हो, पॉडकास्ट हो या ऑन डिमांड कंटेंट आजकल मौजूद है। क्या लोक प्रसारण इन तकनीकों को अपनाते हुए अपनी मूल पहचान या विश्वसनीयता को बनाए रख सकता है?
2: देखिए, अभी एक शब्द प्रयोग में लाया गया था, जेन जी। ये वो तबका है जो पैदा ही स्मार्टफोन लेके हुआ, उसका एक्सपोजर बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। आज नई युवा पीढ़ी को अंडर असेस करना ही गलत है, वो हमसे कहीं ज्यादा ज्ञान युक्त हो चुके हैं और दुनिया को खूब समझ रहे हैं। इसके साथ साथ वो नई टेक्निक को भी स्वागत करने के लिए दो कदम आगे बढ़ाते हैं। हम लोग तब भी पुरानी चीजों के लिए दख्यान्यूसी हो सकते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी से मुझे बड़ी उम्मीद है, आशावान है। वो छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर भटकी नहीं है, किसी और टेक्निक के सहारे वो आगे बढ़ रही है। ये बिल्कुल सही है कि प्रसार भारती, आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो या रेडियो की उसमें इनका एक अलग तरह का योगदान है। उसको भी वो स्मार्टफोन के अंदर इस रूप में देख रहे हैं कि शब्द जो है वो बिल्कुल सही तरीके से उनके कान पे।
3: लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेपर लीक के मुद्दे पर आज भारी हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल भी सदन चलने देने के लिए विपक्षी सदस्यों से अपील की थी। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं से उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बातें की हैं कि आपका जो सुझाव है उस पर लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन इसमें सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में सहयोग करें और सदन को चलने दें। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से पेपर लीक के मामले पर राजनीति न करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया। शोरगुल और हंगामा देखकर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनके चैम्बर में आए और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाए। नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा कराई जाएगी। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कहा कि सदस्य सदन की कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते। उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठकर सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन श्री सैकिया ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामले को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं है। बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा न थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की व्यापक समस्याएं दर्ज नहीं की गई हैं। मुख्य रूप से आम जनता की

टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से इंजन के कार्य निष्पादन, माइलेज और वाहन के घिसाव से संबंधित कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं। देशभर में E15 मिश्रित पेट्रोल का 3.5 वर्ष से अधिक समय से और E19 E20 ईंधन का 2.5 वर्ष से अधिक समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श, क्षेत्र में परीक्षण और मिश्रण वृद्धि के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के माध्यम से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर E20 के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया गया था। अध्ययनों से कार और दोपहिया वाहनों के इंजनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं पाई गई। इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि E20 ईंधन से चलाने पर पुराने वाहनों के कार्य निष्पादन में भी कोई अधिक बदलाव नहीं आया और न ही उनमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई। चालन क्षमता, स्टार्ट करने की क्षमता, धातु अनुकूलता और प्लास्टिक अनुकूलता जैसे मानदंडों में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। E20 ईंधन के उपयोग के कारण वाहन के माइलेज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार, वाहन विनिर्माताओं और इंजन परीक्षण एजेंसियों ने भी यह स्पष्ट किया है कि वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार से नहीं बल्कि कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श के माध्यम से लागू किया गया है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर 100 से अधिक समय से हो रहा है और ब्राजील जैसे देश दशकों से उच्च एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन लगभग 448 बिलियन घन मीटर किया गया। वार्षिक निष्करण योग्य भूजल संसाधन लगभग 407 बिलियन घन मीटर और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247 बिलियन घन मीटर आंका गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के आकलनों की तुलना से ये ज्ञात होता है कि भूजल संसाधन परिदृश्य में समग्र सुधार हुआ है। सरकार ने अस्थिर भूजल निष्कर्षण की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय समय पर भूजल संसाधन का आकलन और भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, जल बजटिंग और सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए ये प्रयास स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विकास और पुनरुद्धार किया गया, जिससे जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण में सहयोग मिला है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जल भृत प्रबंधन योजनाएं साझा की गई हैं। इसके बाद जल की कमी वाले भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, तटीय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिजोल्यूशन वाली जल भृत जानकारी प्राप्त करने और प्रबंधन कार्य नीतियां तैयार करने के लिए नेक्यूम 2.

पॉइंटो कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखे जवाब में बताया कि मार्च 1994 में भारतीय घरेलू विमानन को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन, हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और डीजीए से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वो अपने परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। उन्होंने बताया कि सरकार एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में अन्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया सरकार के विनियमन के अधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियमों का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ समेत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार सामान्यतः बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, हालांकि ये सतर्क निगरानी की भूमिका को बनाए रखती है। सरकार केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कोविड महामारी के दौरान, महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम की घटना और इंडिगो की उड़ान में व्यवधान जैसी परिस्थितियों के दौरान। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित एयर फेयर शिकायत मॉड्यूल को विकसित किया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के लगातार चौथे दिन आज भी गतिरोध कायम रहा। कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में चर्चा कराने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वो इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगा जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सदन में आज देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों बारिश सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि देश में जून और जुलाई के दौरान विशेष रूप से असम, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़, वज्रपात तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभापति ने कहा कि इससे संपत्ति, फसलों और सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इन क्षेत्रों की वनस्पति और जीव जंतु भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कुशल सहयोग से बचाव और राहत के कामों में लगी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि बहुमूल्य जीवन की क्षति और लोगों का घायल होना
निश्चित ही दुखद।

0: दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है तथा घायलों और प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके पुनर्वास की प्रार्थना करता है। इसके बाद सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षणों का मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इतनी अच्छी पहल की गई है और इसे देखते हुए दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन ही करना चाहता है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर 31530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शब्द गीत, और आज का शब्द है दिल।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे भीगी रात फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत था रोशन का। अगला गाना हमने लिया है फिल्म मौसम से, आवाज है भूपेंद्र की, गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं मदन मोहन।

शब्द। इस कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, आवाज़ लता मंगेशकर की। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है अनजान ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ एक शब्द कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है, लेकिन फिल्मी गीतों का सिलसिला अगले कार्यक्रम में भी जारी रहेगा, जिस कार्यक्रम का नाम है चित्रपट संगीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, इस विराम के पहले आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में मशरूर सुल्तानपुरी का लिखा गीत संगीत था, जिसमें ओपी नैयर का, फिल्म का नाम था मेरी सनम। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मेरा साया से। आवाज है एक बार फिर से आशा भोसले की। गीतकार है राजा मेहंदी अली खान और संगीतकार है मदन मोहन। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आशा भोसले की गाय फिल्म मेरा साया के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कृपया कर कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
3: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
4: At the level of the Prime Minister,
5: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
4: Who actually committed this crime?
2: उधर केंद्रीय मंत्री

0: पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
1: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौतों में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के

0: राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
0: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.10 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
2: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेड़गांव में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3,000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट

मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार।

0: with her Romanian counterpart Nicosor Dan in Bucharest tonight. Normal life disrupted as heavy rainfall lashes several parts of Gujarat. Prime Minister Modi assures all possible help. 23rd Commonwealth Games set to begin in Glasgow tonight. And Vaibhav Suryavanshi steers India to 7-wicket victory in the first T20 cricket match against Zimbabwe. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा को बात करने के लिए मदऊ किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलात के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का ऐलान किया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर तातुल जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज रात बुखारेस्ट में रोमानिया के अपने हम मनसब निकोशोर डान के साथ वफद की सतह की बातचीत करेंगी। गुजरात के बहुत से हिस्सों में शदीद बारिश के बायस मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। वजीर आजम मोदी ने हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है। 23वें दौलत मुश्तरक गेम्स आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा से ये कहते हुए बात करने की अपील की है कि हुकूमत तमाम मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जारी एहतजाज के तलबा नुमाइंदगान को पिछले 24 घंटों में बात करने की 4 मरतबा पेशकश की गई। उन्होंने एहतजाजी नौजवानों को बात करने के लिए दावत दी। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी वजीर जेपी नड्डा मुजाकरात के दौरान मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये बातचीत मरकजी वजीर जेपी नड्डा की रिहायशगाह या उनके दफ्तर में खुले जहन के साथ की जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि बातचीत के बगैर कोई हल नहीं निकलेगा।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि हुकूमत खासतौर पर इम्तिहान के पेपर लीक होने के मामले पर तालिब इल्मों की तशवीश से बखूबी वाकिफ है। मीडिया के साथ बात करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके इस जिम्न में भरपूर कार्रवाई की है। उन्होंने मजीद कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान का मकसद तलबा और उनके कुनबों को इस बात की फिर यकीन दहानी कराना है कि जो लोग इम्तिहान के वकार को मजरू करने के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज के मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इस दौरान पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों खासतौर से कांग्रेस से अपील की कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस कराने में तआवुन करें। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने एक ऐसी तारीख और मुद्दत तक जिस पर अपोजिशन मुत्तफिक हो दोनों ऐवानों में इस मामले पर बहस कराने की खातिर हुकूमत की रजामंदी के बारे में पहले ही मुतला कर दिया है। जनाब रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी से यह कहते हुए अपील की कि वो शरायत ना रखे क्योंकि इस तरह की शरायत को बहस से बचने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाएगा।
3: वो बहाना ढूंढ रहा आज तो फिर कांग्रेस दोनों सदनों में शुरू में जो बोलता है अपना कंडीशन है मांग है पहले पूरा करो तब चर्चा होगा। अरे मांग चर्चा के दौरान में भी तो आप बोल बोल के मांग रख सकते हैं। आप जब बोलेंगे डिबेट में तो आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, तो डिबेट को कैसे रोक सकते हैं आप? वो चर्चा को ही रोकना चाहते हैं।
1: मरकजी वजीर और ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा ने अपोजिशन की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की कि उनका तर्ज अमल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन न तो बहस के लिए तैयार है और न ऐवान की कार्रवाई चलने देना चाहती है। اپوزیشن کے رہنما ملک ارجن کھڑگے نے کہا

0: कि अपोजिशन बहस के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने मुतालबा किया कि पहले वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस मामलात पर बहस करने के लिए तैयार है। सिद्ध जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंच गई हैं। कोटोसिनी पैलेस पहुंचने के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सदारती महल में रोमानिया के सदर निकोशोरडान ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। वफद की सतह की बातचीत जल्द ही शुरू होने वाली है। अब से कुछ देर बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के अपने हम मनसब जनाब डॉन के साथ वफद की सतह की बातचीत करेंगी। बातचीत के बाद कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। रोमानिया के सदर और खातून अव्वल सदर जमहूरिया मुर्मू के एजाज में आज रात सरकारी इशाइये का एहतमाम करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल भारत रोमानिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अराकीन के साथ बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया के दौरे से तजारत और सरमायाकारी, दिफा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, तालीम, साइंस और इख्तरा समेत अहम शुबों में भारत रोमानिया ताल्लुकात के मजीद मुस्तहकम होने की तवक्को है। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती और आवाम से आवाम के तबादलों को फरोग देना है। रोमानिया यूरोपीय यूनियन में एक काबिल कदर शराकत दार है और भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती माहदे के अख्ताम के साथ आने वाले बरसों में दो तरफा इकतसादी शराकत दारी मजीद मुस्तहकम होगी। आकाशवाणी न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत काबिल तजदीद तवानाई चोटी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2026 2 नवंबर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किद किया जाएगा। आज नई दिल्ली में इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जदीद और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर जनाब प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस 4 रोजा कॉन्फ्रेंस में सरकारों, पॉलिसी साजों, सनअती रहनुमाओं, सरमायाकारों, इख्तराकारों और स्टार्टअप्स और बैन अलावामी इदारों को माहौल के लिए साजगार तवानाई में मुंतकली को रफ्तार देने और बाहमी इश्तराक के फरोग में तआवुन के लिए यकजा होने का मौका फराहम होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। जनाब जोशी ने कहा कि यह समिट मुतालिका फरीकों को दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाली, माहौल के लिए साजगार तवानाई के मार्केट्स और दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मईशतों में से एक में शामिल होने का मुनफरिद मौका फराहम करेगी। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में भारत के गैर रिवायती ईंधन की सलाहियत 300 गीगावाट से भी तजावज कर जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि 2014 में गैर रिवायती ईंधन की सलाहियत महज 75 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर 298 गीगावाट हो गई है। दिफाई तहकीक और तरक्की के इदारे DRDO ने ओडिशा के साहिल से मुत्तसिल APJ अब्दुल कलाम जजीरे से लंबी दूरी के जमीन से फजा में वार करने वाले मिसाइल कुशा की परवाज का पहला आजमाइशी तजुर्बा कामयाबी से मुकम्मल किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO और दीगर मुतालिका फरीकों को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि यह हसूलियाबी भारत के दिफाई तहकीक और तरक्की के इदारे का एक अहम संग मील है। जनाब सिंह ने कहा कि जमीन से फजा में लंबी दूरी तक वार करने वाले मिसाइल तैयार करने की सलाहियत सिर्फ चंद ही ममालिक के पास है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मिसाइल निजाम की मदद से भारत की दरामदी इन्हिसारी में कमी आएगी और मुल्क की फजाई दिफाई निजाम की सलाहियत में नुमाया बेहतरी आएगी। गुजरात में शदीद बारिश जारी है, जिसकी वजह से खासतौर पर जनूबी गुजरात खत्ते के बहुत से हिस्से जेरे आब आ गए हैं। मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। कस्बे और गांव जेरे आब आ गए हैं, जबकि रेल और सड़क नकलो हमल मुतासर हुई है। वलसाड़, सूरत और नवसारी समेत बारिश से मुतासर अजला में बचाव और राहत की कार्रवाइयां मिशन मोड में जारी हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने जुनूबी गुजरात में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज गांधीनगर के रियासती हंगामी ऑपरेशन के मरकज में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। वजीर आला ने बारिश से मुतासर अजला के कलेक्टरों को हिदायत दी है कि वो सैलाब से मुतासरा और नशेबी इलाकों में राहत और लोगों को बाहर निकालने की कोशिशों को तेज करने को अव्वलीन तरजीह दें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तूफानी बारिश ने गुजरात के बहुत से हिस्सों में मामूल की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया है। जनूबी और वस्ती अजला इस बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। नौसारी के खेड़गांव में 16 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सूरत के अमरपाड़ा में आज शाम तक 15 इंच

0: इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। वलसाड़, भरूच और खेड़ा जिलों में भी शदीद बारिश की रिपोर्टें मौसूल हुई हैं। नौसारी में वजीर हर्ष संघवी ने आला हुक्काम के साथ कुदरती आफात के बंदोबस्त के कंट्रोल रूम में हंगामी तैयारियों का जायजा लिया। औरंगा और दमन गंगा जैसे तुगयानी पजीर दरियाओं ने हुक्काम को बहुत सी शाहराहें बंद करने पर मजबूर कर दिया। गोलवाड़ और उम्बेरगांव के दरमियान एक पुल पर सतह आब खतरे के निशान तक पहुंचने के बाद आज मगरबी रेलवे की खिदमात बुरी तरह मुतासिर हुई। इसके बायस बहुत सी ट्रेनों को कलील मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। राहत और बचाव की टीमें जंगी पैमाने पर काम कर रही हैं, जिसमें एनडीआरएफ का अमला फंसे हुए लोगों को महफूज मकाम तक पहुंचाने में मसरूफ है। अहमदाबाद शहर में शदीद बारिश की वजह से बहुत ज्यादा पानी भर गया, जिसके बायस मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। अपर्णा खुंट की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की और रियासत में शदीद बारिश के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आजम ने शदीद बारिश के मद्देनजर राहत और बचाव की कार्रवाईयों और शहरियों के तहफ्फुज के लिए मरकज की जानिब से हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। इसी दौरान वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में शदीद बारिश की सूरत हाल में राहत और बचाव की कार्रवाईयों से मुतालिक मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से भी बात की। मरकजी वजीर दाखिला ने रियासत को इस सिलसिले में तमाम जरूरी इमदाद की यकीन दहानी कराई। सिक्किम के नामची जिले में समरडंग में एनएचपीसी तीस्ता के स्टेज 6 के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जेर तामीर सुरंग में फंसे तमाम 25 लाशों को बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही 4 दिन से जारी बचाव कार्रवाई अपने अख्तितम को पहुंची। सिक्किम सरकार और कई मरकजी एजेंसियां इन बचाव कार्रवाईयों में शामिल थीं। सिक्किम सरकार ने भी इस अलमनाक हादसे की वजूहत का पता लगाने के लिए 4 रुकनी तहकीकती कमेटी तश्कील दी है। कमेटी से 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। आज जम्मू कश्मीर में फलियन मंडल प्राबली के नजदीक दरियाए तवी में अचानक तुगयानी के सबब वहां फंसे 2 अफराद जम्मू पुलिस और आफात से निपटने के रियासती दस्ते एसडीआरएफ ने तेजी से और करीबी तालमेल के साथ बचाव कार्रवाई की और उन्हें बहिफाजत बचा लिया गया। 23वीं दौलत मुश्तरका गेम्स आज से स्कॉटलैंड शहर के ग्लासगो में शुरू होंगे। 74 मुल्कों की टीमें इस 10 रोजा इवेंट में हिस्सा लेंगी। ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहिन दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में भारतीय टीम की क्यादत करेंगी। दूसरी जानब भारत ने इफ्तिताही तकरीब से पहले ही अपने तमगों की मुहिम का आगाज कर दिया है, क्योंकि ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाली बॉक्सर लवलीना ने बाय मिलने के साथ ही सीधे खवातीन के 75 किलोग्राम के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कुरानंदाजी में सिर्फ 5 खिलाड़ी होने की वजह से मुकाबला करने वाले 3 खिलाड़ी जिनमें लवलीना भी शामिल हैं को बराह रास्त आखिरी 4 सेमीफाइनल में पहुंचा दिया गया, जबकि बाकी 2 खिलाड़ी 1 क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। लवलीना 31 जुलाई को सेमीफाइनल्स में तफाकी के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेंगी, जहां जीतने वाली खिलाड़ी को सोने के तमगे के मुकाबले में जगह मिल जाएगी। दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में सिर्फ 10 खेल होंगे, जो बिरमिंघम 2022 के मुकाबले 9 कम है। ये मुकाबले 8 मील के दायरे में 4 मकामात पर खेले जाएंगे। इसमें एथलेटिक्स, तैराकी, 3x3, बास्केटबॉल, ट्रैक साइकिलिंग, वेटलिफ्टिंग, बाउल्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, नेटबॉल, बॉक्सिंग और जूडो शामिल हैं। भारतीय दस्ता पैरा एथलेटिक्स समेत 125 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आज शाम हरारे में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैन अलावामी मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। सूर्यवंशी के 19 गेंदों में शानदार 50 रन ने भारत को सिर्फ 13 ओवर्स और 2 गेंदों में ही 126 रन का जीत का निशाना आसानी से हासिल करने की राह हमवार कर दी। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए थे। इस सीरीज का दूसरा मैच इतवार के रोज इसी मकाम पर खेला जाएगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा को बात करने के लिए मदु किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलात के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का ऐलान किया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर तातुल जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के उनके हम मनसब निकोशोर डॉन के दरमियान बुखारेस्ट में वफद की सतह की बातचीत शुरू हो गई है। गुजरात के बहुत से हिस्सों में शदीद बारिश के बायस मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। वजीर आजम मोदी ने हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है। 23वीं दौलत मुश्तरका गेम्स आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे। और मर्द।

क्योंकि क्रिकेट में भारत ने आज शाम हरारे में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैन अलावामी मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। और इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: आरके वाइट।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइट। इसके अंतर्गत सुनिए सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: रिहान जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हरित चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और हरित हाइड्रोजन की काफी बात हो रही है, तो एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाता है कि हरित हाइड्रोजन क्या है और इसमें हरित क्या है।
3: देखिए, हरित जो है ना, ये जितने भी आजकल डेवलपमेंट है और जो भी हमारी चिंता है वो पर्यावरण को लेकर, और पर्यावरण को लेकर सबसे बड़ी चिंता है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। तो अभी जो आप हरित सुन रहे हैं, हरित का कनेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के होने और ना होने से। जैसे कि किसी एनर्जी को हम या किसी ऊर्जा को हम हरित ऊर्जा कह रहे हैं, वो उसका मतलब ये है कि जिस ऊर्जा को बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा वो हरित ऊर्जा है। इसी तरह से हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन एक बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाली गैस है इंडस्ट्री में। जो इसको बनाने का तरीका अभी तक चल रहा था उसमें CO2 एमिशन था, जो कि पर्यावरण, जैसे कि मैंने बताया, ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण का जो चैलेंज है। तो हरित हाइड्रोजन का मतलब ये है हाइड्रोजन ऐसे तरीके से बनाई जाए जिससे कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ना हो, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड का ना होना, ऐसी हाइड्रोजन जिसे बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकले हैं, वो हरित हाइड्रोजन कहलाएगी।
2: अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने की बात कही है, और देखा जाए तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन एक बड़ा कदम भी सरकार की तरफ से लिया गया है। तो इन सारी चीजों को अगर एक साथ रख कर देखें तो देश में इसके जो अब तक की प्रगति हुई है, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
3: देखिए, इसमें क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का चैलेंज है यानी ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बिजली सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, जब हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली जो बनती थी वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्रोत थी, तो हम बिजली सेक्टर को ग्रीन कर रहे हैं, हरित कर रहे हैं, यानी सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, विंड इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये है कि बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे कि आप अगर उनको इलेक्ट्रीफाई कर दो, जो पहले बिजली से नहीं चलते थे, अब अगर बिजली से चलने लगे तो उनका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो जाएगा। जैसे कि सबसे आम एग्जाम्पल आपके सामने है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अगर हम अपनी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल से ईवी की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए कि ईवी से अगर वो चलेंगी तो एमिशन नहीं होगा या कम होगा। और अगर वो बिजली जिससे ईवी चार्ज हो रही है वो हरित है, ग्रीन है, जो सोलर विंड या हाइड्रो से बनी है, तो आपको डबल एडवांटेज हो गया कि आपने डीजल और पेट्रोल के एमिशन भी हटा दिए और इलेक्ट्रिसिटी भी ग्रीन हुई। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको आप इलेक्ट्रीफाई नहीं कर सकते हो सीधे सीधे, जिनको हम लिटरेचर में हार्ड टू अबेट सेक्टर कहते हैं, जिनको मुश्किल है जिनके एमिशन इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट कम करना। उनमें ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, सीमेंट है, स्टील है, फर्टिलाइजर है। तो हाइड्रोजन वहां जो इस्तेमाल होती है वो ग्रे हाइड्रोजन कहलाती है, क्योंकि उसको बनाने में फॉसिल फ्यूल, जिन्हें हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन, उनका इस्तेमाल होता है। तो अगर हम उस हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे तो उन सेक्टर के कार्बन एमिशन भी कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। अब हरित हाइड्रोजन कैसे बनती है? हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें बिजली का इस्तेमाल करना होगा। आप पानी लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसमें, तो उससे हाइड्रोजन बनती है और निकलती सिर्फ ऑक्सीजन है, तो कोई पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं। तो हमारा जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन जो आपने कहा, ये असल में हमारे राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन का एक्सटेंशन है एक तरह से।

0: हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भी हरित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रांसपोर्ट को भी हरित कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इंडस्ट्री जहां हाइड्रोजन इस्तेमाल होती थी उसको भी हरित हाइड्रोजन से हम रिप्लेस करना चाहते हैं।
1: जी, जिस तरह से आपने तमाम चीजों को जोड़ा है, तो थोड़ा सा अगर पीछे अगर की बात करते हैं तो सरकार का सोलर एनर्जी पर भी काफी फोकस रहा है कि सौर ऊर्जा को अधिकतम देश में बढ़ावा दिया जाए और कई सारी योजनाएं भी सरकार ने लागू की हैं। तो आपको लगता है कि ये दोनों ही पैरेलल चलने वाली चीजें हैं कि सौर ऊर्जा में भी देश काफी प्रगति कर रहा है और आगे भी करेगा, और हरित ऊर्जा का एक मिशन तो हम अब लेकर के चल ही रहे हैं?
0: नहीं, ये दोनों एक दूसरे को एक तरह से पूरक हैं, एक दूसरे को समर्थन करने वाली, एक दूसरे की सहायता करने वाली चीज। कैसे होंगी मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए, हमने पिछले 10-12 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी से हम कहते हैं, जिसमें कि हम सोलर विंड इनको मानते हैं, उसके अंदर बहुत काम किया है और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है हमारे ऊर्जा सिस्टम में। जो सोलर हमारे पास 10-12 साल पहले 1000 मेगावाट भी नहीं था, आज हम 180 हजार मेगावाट से ऊपर चले गए हैं, और हमारे सामने एक बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड लक्ष्य है, 2030 तक हम कितना करेंगे, 35 तक, 2047 तक और 2070 तक। तो हमारी इसमें बड़ी स्ट्रांग और कंसिस्टेंट पॉलिसी थी, और हमारे देश के जो इसमें लक्ष्य भी थे ना, वो बड़े एम्बिशियस रखे गए कि 175 2022 तक करना था, फिर 500 गीगावाट 2030 तक करना है, फिर 2047 का भी है। 2070 में आप जानते हो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत प्रॉमिस कहे हैं, उसमें से एक ये है कि 2070 तक हमें नेट जीरो
1: जी।
0: नेट जीरो का मतलब है कि हम एमिशन कम करेंगे अपने, और अगर कुछ होंगे भी तो उनको एनवायरमेंट में जाने से पहले ही कैप्चर कर लिया जाएगा। तो ये भी टारगेट है। तो इसमें क्या है कि जो बिजली हम बना रहे हैं सोलर और विंड से, उसको इस्तेमाल करके अगर हम हाइड्रोजन भी बनाएंगे, एक तो हमने बिजली के एमिशंस को खत्म कर लिया, और दूसरे हमने जो हाइड्रोजन की वजह से एमिशंस हो सकते थे उन्हें खत्म किया। इसके अलावा सोलर के साथ क्या है कि वो दिन में है, जितनी देर सूरज की रोशनी होगी तो उतनी देर आप बिजली पैदा कर सकते हो उससे। तो हम इस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे पास दिन में बहुत सारी ऊर्जा होगी जो हम सोलर यानी सौर ऊर्जा से बिजली में बनाएंगे। तो अगर हम उसको, जो ऊर्जा हम उससे पैदा कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए, तो हम जो हमारा सिस्टम बढ़ा रहे हैं, हम और सौर ऊर्जा भी बनाते जाएंगे, उसके साथ लगाते जाएंगे, उसी को इस्तेमाल करके अगर और हम ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे तो ये हमें डबल बेनिफिट हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं। ये तो सिर्फ पर्यावरण की बात हुई, लेकिन हमें एक अपनी ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के मामले में हम मोस्टली डिपेंडेंट थे यानी आयात के ऊपर, अब सौर ऊर्जा को कहीं से आयात नहीं करना है आपको, पवन ऊर्जा को कहीं से आयात नहीं करना, लेकिन उसके जो कंपोनेंट है, पैनल जो इस्तेमाल होते हैं, वो आपको बनाने, तो वो उसके ऊपर बड़ा काम हुआ है और पैनल में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं उस सेल में और दूसरे कंपोनेंट में। इसी तरह से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी पार्ट है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइजर यूज होता है, जो मैंने बताया जो पानी को कन्वर्ट करेगा, उसको लेके के यहीं देश में बने, उसके ऊपर ये मिशन का कंपोनेंट है, उस पर भी मिशन काम कर रहा है, और दोनों ही सेक्टर जो है ये रोजगार देने वाले भी हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इनसे हो रहा है।
1: रेहन जी, अभी भारत में रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन एक ऐसे समय पर हो रहा है जब देश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले ही हरित हाइड्रोजन ट्रेन को भी झंडी दिखाई थी। तो इस सम्मेलन को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये केवल एक उपलब्धियों को साझा करने का मंच है, या फिर भविष्य की योजनाएं हैं, जो रोडमैप है उनको साझा करने की दिशा ये प्रदान करेगा?
0: ये अवसर दोनों चीजों के लिए होगा। पहली बात तो ये कि जिस तरह से हमने अपने ऊर्जा क्षेत्र में जिस तरह का परिवर्तन हम लाए हैं, ये ऊर्जा क्षेत्र में एक मिसाली परिवर्तन है। ऐसा एक डेवलपिंग कंट्री, जो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री भी है, जिसको अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करनी थी, और साथ में ये पर्यावरण कह लीजिए, ऊर्जा सुरक्षा कह लीजिए, उन दोनों को देखते हुए जितनी तेजी से हमने ये बदलाव किया है, ये बहुत सारे देशों के लिए इससे क्या प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, सीखने का स्रोत हो सकता है, या वो इसको अपने यहाँ पे भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्योंकि इसमें बहुत काम हो चुका है, लेकिन आगे सालों, जैसे मैंने बताया, इसमें हमारे आगे के सारे टारगेट सेट हैं, जिसे कहना चाहिए हमारा जो विजन और पाथ है वो क्लियर है, तो ये उसके लिए भी मौका है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, किन चीजों को हम और मजबूती देंगे। और तीसरी बात ये कि ये कोई भी जो क्षेत्र है, वैसे भी ऊर्जा क्षेत्र, ग्लोबल वार्मिंग, नेट जीरो, ये सब बहुत बड़े काम है, इसमें अंतरदेशीय इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक दूसरे से सीखना समझना, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है।
1: आप जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो श्रोताओं को हम ये जरूर बता देंगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के एक सदस्य देशों के रूप में काम करता है, और दुनिया के अग्रणी सौर

0: ऊर्जा उत्पादक देशों में भी हमारा नाम शामिल है। तो ऐसे में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका क्या निभाई जा सकती भारत के द्वारा, खासतौर पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि भारत लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और सरकार ऐसे नीतिगत फैसले भी ले रही है कि हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ें।
1: भारत ऑलरेडी इसमें कई सेक्टर में नेतृत्व की तरफ है, और जो आपने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें नेतृत्व भारत का ही है और ये भारत की ही पहल पर बना और बहुत अच्छी पहल है। उसमें अब तो 120 से ज्यादा देश उसमें जुड़े हुए हैं और जो हमारी लर्निंग्स हैं, जो हमने किया वो हम साझा करते हैं उनसे। उसके अलावा एक और भारत का इनिशिएटिव है, इसी से रिलेटेड, उसे कहते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वो भी भारतीय पहल है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उसमें क्या है कि आइडिया ये है कि सूरज तो कभी नहीं ढलता है, आज यहाँ नहीं है तो दूसरे देश में चमक रहा है, नहीं तो तीसरे देश में चमक रहा है, तो कैसे हम एक दूसरे की मदद से उसका और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग में भी, वो सोलर की मैन्युफैक्चरिंग हो या इलेक्ट्रोलाइजर्स की हो, ग्रीन हाइड्रोजन की, उसमें भी तेजी से बड़ा काम हो रहा है, तो इसमें भी हमारे सामने मौका है कि हम इसमें भी नेतृत्व प्रोवाइड कर सकते हैं।
0: रोहन जी, वापस अगर हरित हाइड्रोजन की हम बात करें, तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि स्टील की बात है, फर्टिलाइजर की बात है, रिफाइनरी है, शिपिंग है, भारी परिवहन, जैसा कि ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते, इन क्षेत्रों के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य देखा जा रहा है इस ईंधन का, कि ये ईंधन हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, लागत कम आएगी, रिस्पॉन्स ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, और आगे चल करके जैसा आपने बताया था कि डिपेंडेंसी वाली बात जो है वो उसमें काफी कमी आएगी। आज जो आप देख रहे हैं तमाम चीजें, तो आपको क्या लगता है कि हमारा आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है और साथ ही हम कितना आगे तक जा सकते हैं?
1: देखिए, आवश्यकता की तो आप देख ही रहे हैं, जिस तरह के हालात बने या बनते रहते हैं जियोपॉलिटिकल, उसमें ऊर्जा सुरक्षा तो सर्वोपरि है और ऊर्जा सुरक्षा पे जो काम हो रहा है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में, और हमें जरूर इस पे आगे बढ़ना होगा, करना होगा। और मैं समझता हूं कि पिछले 10-12 सालों में शुरुआती दौर में हम एक एक्सपेरिमेंट टाइप फेज में थे, जब हम ये देख रहे थे कि सोलर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी और जो है वो कितना हम यूज कर सकते हैं, कैसे प्ले आउट करेगा। लेकिन उसके बाद फिर 2014 और 15 के बाद जो हमारा ना, वो एक तरह का एक्सपेंशन फेज था। आज आप देखें कि सोलर एनर्जी एक आम तौर पर एक्सेप्टेड सिस्टम है, लोग अपने आप ही लगा रहे हैं, सरकार की मदद है किसानों और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को जो घरों में लगा रहे हैं। और आप देखो 50 लाख के करीब तो रूफ टॉप सोलराइजेशन हो गए, किसान भी लगा रहा है। तो ये अब हम इस दौर में आ गए हैं कि सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा हमारे मेन सिस्टम रहेंगे और हमारे सिस्टम इसके इर्द गिर्द ही डेवलप होंगे। अब ग्रीन हाइड्रोजन भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे मैंने बताया कि ना सिर्फ ये कि ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की तरफ एक कदम है, लेकिन पर्यावरण की तरफ भी कदम है, मगर साथ साथ ये हमारी नई ग्रिड जो हम बना रहे हैं, जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा होगी मेनली, उसमें भी ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे।
0: सरकार जिस तरह से इन योजनाओं को बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे में सोलर मॉड्यूल, पैनल, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर, ये जो उपकरण है, इन्हें घरेलू स्तर पे अगर बढ़ावा मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के बदलाव देखने को हमें मिल सकते हैं, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो स्वयं का कुछ काम करना चाहते हैं?
1: देखिए, जो टेक्नोलॉजी है उसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी, यानी आम लोगों में उसकी पूरी तरह पहुंच हो जाए, उसमें उसके पर्यावरण के एंगल के साथ साथ उसके पैसे का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। लोग ये भी देखते हैं, जैसे हमने सौर ऊर्जा को किया, आज वो सबसे इकोनॉमिक, सबसे कम कॉस्ट वाली ऊर्जा स्रोतों में से है, तो वो पिछले जो 10-12 सालों की जो डेवलपमेंट थे उसी से हुआ। इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन में क्या है कि अभी कोशिश ये है कि इसकी कॉस्ट ग्रे हाइड्रोजन के बराबर या उससे भी कम लाई जा सके। उसी की तरफ ये घरेलू उत्पादन, जो आपने भी बताया, PLI और सब स्कीम से हम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइजर को भी बनाया जाए, जिससे कि उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो फिर वो उसकी वाइड एप्लीकेबिलिटी और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसी तरह से एक स्टार्टअप स्कीम है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का पार्ट है, MNRE की स्कीम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। उसमें छोटे स्टार्टअप्स, नए नए आइडियाज को भी समर्थन, ना कि तकनीकी सपोर्ट दिया जाएगा बल्कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये सेक्टर एक बहुत हैपनिंग और एक्टिव सेक्टर है, और इसमें बहुत काम हुआ है और आगे भी बहुत काम होता रहेगा, और हम ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण बचाना और साथ साथ जॉब क्रिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं।
0: रिहान जी, बिल्कुल अंत में मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। हमेशा मन में होता है कि यदि कोई नई चीज आ रही है तो आम लोगों तक पहुंचे वो, जैसे हरित हाइड्रोजन, आपको लगता है कि बहुत ही जल्द ये सामान्य लोगों तक इसकी पहुंच हो जाएगी?
1: आम आदमी के लिए डायरेक्टली उसका इस्तेमाल कम है, क्योंकि आप देखिए वो इंडस्ट्री में यूज होगा या बड़े ट्रांसपोर्ट में भी बड़े लेवल पर होगा आम आदमी के लिए। लेकिन कुछ जो कार है, जैसे गाड़ी, उसके अंदर हाइड्रोजन इस्तेमाल में भी काफी अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर सेक्टर में देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन वाइडर एक्सेप्टेंस की तरफ है और अच्छा इसका भविष्य है।
0: रेहान जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका

0: बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: RTY

0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR. दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अवर YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल. यू मे शेयर योर फीडबैक अबाउट दिस प्रोग्राम थ्रू ईमेल एट airnsttalks@gmail.com और WhatsApp ऑन 9289094044.
1: Insights.
2: वीडियो वेव 106

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर 30,530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम साहित्यिक पत्रिका सर्जना। इसमें आइए सबसे पहले सुनते हैं श्रुति सिन्हा की वार्ता। विषय है रेडियो से डिजिटल होती भारतीय प्रसारण की प्रेरक यात्रा।
1: भारत में प्रसारण का इतिहास लगभग 1 शताब्दी पुराना है। इस यात्रा की शुरुआत रेडियो से हुई, जिसने देश के कोने कोने तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने का कार्य किया। समय के साथ तकनीक विकसित हुई और रेडियो से टेलीविजन, उपग्रह प्रसारण, इंटरनेट तथा आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म तक भारतीय प्रसारण व्यवस्था ने लंबा सफर तय किया है। रेडियो भारत का सबसे पुराना और

संचार माध्यम सिद्ध हुआ। इसके बाद भारत में टेलीविजन युग का आगमन हुआ। 1959 में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई और आगे चलकर दूरदर्शन ने भारतीय समाज प्रसारण जगत में नई क्रांति ला दी। 1982 में एशियाई खेलों के अवसर पर रंगीन प्रसारण शुरू हुआ, जिसने भारतीय दर्शकों के देखने के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया। दूरदर्शन के माध्यम से समाचार, शैक्षिक कार्यक्रम, धारावाहिक, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने घर घर तक अपनी पहुंच बनाई। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के साथ निजी टीवी चैनलों का आगमन हुआ। केबल और सैटेलाइट टीवी ने प्रसारण जगत में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई। दर्शकों को समाचार, मनोरंजन, खेल, शिक्षा, संगीत और बच्चों के लिए अलग अलग चैनल मिलने लगे। इससे प्रसारण उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। 21वीं सदी में इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने भारतीय प्रसारण व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। आज स्मार्टफोन, हाई स्पीड इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को केवल दर्शक ही नहीं अपितु कंटेंट निर्माता भी बना दिया है। अब लोग अपनी सुविधा के अनुसार समाचार पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और लाइव कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। डिजिटल प्रसारण के प्रमुख रूपों में OTT प्लेटफॉर्म, वेब टीवी, इंटरनेट रेडियो, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया लाइव शामिल हैं। अब कार्यक्रम देखने या सुनने के लिए किसी निश्चित समय का इंतजार नहीं करना पड़ता। दर्शक अपनी पसंद का कार्यक्रम कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। यही डिजिटल प्रसारण की सबसे बड़ी विशेषता है। आज भारत डिजिटल रेडियो, हाई डेफिनेशन टेलीविजन, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित समाचार प्रस्तुति तथा डेटा विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म दर्शकों की रुचि के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जिससे उपयोगकर्ता का अनुभव और बेहतर हो गया है। हालांकि डिजिटल प्रसारण के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। फेक न्यूज, भ्रामक सूचनाएं, साइबर सुरक्षा, निजता का संरक्षण, कॉपीराइट का उल्लंघन तथा डिजिटल विभाजन जैसी समस्याएं गंभीर चिंता का विषय हैं। इसीलिए डिजिटल मीडिया का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना और मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना आज की आवश्यकता है। भारतीय प्रसारण का भविष्य अत्यंत उज्जवल दिखाई देता है। 5G तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड ब्रॉडकास्टिंग, वर्चुअल स्टूडियो, इंटरैक्टिव मीडिया और डिजिटल रेडियो आने वाले समय में प्रसारण को और अधिक प्रभावी, तेज तथा सुलभ बनाएंगे। सरकार की डिजिटल इंडिया जैसी पहले भी इस परिवर्तन को गति प्रदान कर रही हैं। आगे का समय कितना भी उन्नत हो, भले ही कितनी AI आधारित बहुभाषा सामग्री, डेटा आधारित ब्रॉडकास्टिंग आ जाए, प्रसारण की आत्मा सदा ही मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक उत्तरदायित्व और जन विश्वास पर ही आधारित होंगे। मानवीय संवेदनाएं जिसमें समाहित होंगी, वही प्रसारण व्यवस्था सशक्त होगी। जहां तकनीक साधन तो हो सकती है, लेकिन प्रसारण के मूल उद्देश्यों जैसे जनसेवा, जन जागरण, राष्ट्र की परिकल्पना कहीं भी तिरोहित नहीं होनी चाहिए। भारतीय प्रसारण की आत्मा तो उसकी समावेशी दृष्टि ही है, जिसने भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, विचारों की विविधता को सम्मान देते हुए संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस समृद्ध विरासत को नई तकनीकों के साथ जोड़ते हुए एक ऐसा डिजिटल संचार तंत्र विकसित करें जो विश्वसनीय होने के साथ

0: साथ संवेदनशील, समावेशी और भविष्योन्मुख भी हो। अंत में यही कहना चाहूंगी कि भारतीय प्रसारण की यात्रा केवल तकनीकी विकास की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक प्रगति का भी सशक्त दस्तावेज है। रेडियो ने हमें सुनना सिखाया, टेलीविजन ने हमें देखना सिखाया और डिजिटल मीडिया ने हमें संवाद करना सिखाया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन माध्यमों का उपयोग सत्य, ज्ञान, जागरूकता और राष्ट्र निर्माण के लिए करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे श्रुति सिन्हा से वार्ता, रेडियो से डिजिटल होती भारतीय प्रसारण की प्रेरक यात्रा। श्रोताओ, सृजना कार्यक्रम में अब बारी है कहानी की। डॉक्टर रेखा कक्कड़ से सुनिए उनकी कहानी कोकिला।
2: आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में
3: दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने सोचा बाई होगी, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। दरवाजे के खुलने बंद होने की चरमराहट की अजीब सी आवाज से चिड़चिड़ाहट होती है। मैं अक्सर दरवाजा खुला ही रखती हूँ। अरे कहा ना, भगवान दई आ जाओ, लेकिन नहीं, कोई नहीं। मैं उठी, चश्मा उतारा, पढ़ रही किताब को मेज पर पलट कर रखा। दरवाजे तक आते आते मैं कई बार बड़बड़ाई, जाने कौन है, अंदर भी नहीं आ रहा। भगवान जाने जब भी किताब उठाओ कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। देखती हूँ सांवला रंग, मुरझाया चेहरा, एक महिला बाहर खड़ी, घबराई सी, हाथ से इशारा कर रही। मैं उस ओर देखने लगी, सड़क पर एक ट्रैक्टर खड़ा है और चारों ओर भीड़ है। माजरा क्या है? मैंने घर में ताला लगाया और उसके साथ चल पड़ी। भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी, एक 14-15 साल की लड़की बेहोश पड़ी है। ये तो अच्छा हुआ कि लोगों ने ट्रैक्टर वाले को भागने नहीं दिया। मैं करीब गई, लड़की को देखा, अरे ये तो कोकिला है। उसकी नब्ज देखने को हाथ आगे बढ़ाया तो सामवेद स्वर से आवाज आई, जिंदा है। लोगों की मदद से पास के अस्पताल ले गई। लड़की यानी कोकिला के पैर में फ्रैक्चर हुआ था। ट्रैक्टर वाले को जब पुलिस थाने ले जाने की कोशिश हुई तो झट उसने मोबाइल निकालकर मालिक को सूचना दी। आनंद फानन में मालिक आ गए, 20,000 रुपये देने को राजी हुए और हाथ जोड़कर पुलिस केस न करने को कहा। लड़की बहुत ही गरीब घर से थी, बोलने में असमर्थ अर्थात गूंगी बहरी थी। बिना माँ बाप की लड़की मामा मामी के यहाँ रहती थी। उसके दो भाई बहन थे, वे भी मूक बधिर थे। 20,000 रुपए सुनते ही मामी की आंखें चमक उठी। उधर मालिक भी पुलिस कचहरी से बच गया। मुझे उसका नाम कोकिला इसलिए मालूम है क्योंकि वह अपनी पड़ोसी पूजा के साथ सिलाई केंद्र में सिलाई सीखने आती थी। पूजा उसकी सहेली थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े घर से स्कूल आती और खूब मन लगाकर सिलाई सीखती। कोकिला को घर और मोहल्ले के लोग कुकी कहते थे। नाम सुनते ही मुझे याद आया, मेरे पिताजी के एक मित्र थे। उनके पास अपार संपदा थी, कई मिलों के मालिक थे, लेकिन उनका नाम फकीर चंद था। कोई नेत्रहीन का नाम नयनसुख और कंजूस का नाम दानवीर रख देता है। कुकी बोल नहीं सकती और नाम कोकिला। मिसेस शर्मा निशुल्क सिलाई केंद्र चलाती थी, मेरी मित्र थी। बहुत ही सुशील, दयावान और सहृदय थी। मुझसे कहती, देखो कितनी गरीब हैं ये लड़कियां, यदि इनके घर की तरफ निकल पड़ो तो एक बार चूल्हा तक नहीं जलता। करें भी तो क्या करें, महंगाई किस कदर बढ़ गई है। रोज की जरूरत, आटा, चाय, चीनी भी इतनी महंगी है कि एक बार पहनने को वस्त्र कपड़े तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन कितनों को और कब तक। लेकिन रोज पेट का गुजारा और ऊपर से समय असमय बीमारी का आ जाना, क्या बीतती है इन गरीबों पर। इन्हें देखकर सोचा कुछ सिलाई विलाई आ जाए तो चार पैसे कमा सकती हैं। मिसेस शर्मा ने मुझे बताया कि इन लड़कियों को सिखाना भी कोई आसान नहीं है। मेरे घर के सामने से आंख बचाकर निकलती हैं। मैं पुकार पुकार कर यहाँ बुलाती हूँ, डांटती हूँ, क्यों कहाँ जा रही हो, चलो यहाँ आओ, स्कूल का टाइम है। लड़कियाँ झट कहती हैं, टीचर जी अभी तो घर में खाना बनाना है। दूसरी कहती, मैडम जी नल आ गए हैं, पानी भरना है, अभी टाइम नहीं है, कल आ

0: जाऊंगी। इस सिलाई केंद्र में मोहल्ले की बस्ती की लड़कियां ही अधिक थी, उन्हीं में कोकिला भी एक थी। मैं जब कभी भी शाम को सिलाई केंद्र जाती, स्कूल का समय जो है वो समाप्त हो चुका होता था। मुझे कुकी से मिलने की इच्छा हो रही थी। फोन पर मिसेस शर्मा से बात हुई तो उन्होंने कहा, अभी उसके पैर का प्लास्टर भी नहीं कटा है, मैं आपको उसे घर ले चलूंगी। मैंने जब उसे देखा तो देखती रह गई, कैसी तो गोरी खूबसूरत, नाक नक्श पतली दुबली। कुकी की मामी ने इशारे से कहा, दोनों हाथ जोड़कर वह कुछ बोली, नमस्ते, नाक के अस्पष्ट आवाज से वह कुछ बोली। अरे यह तो बोल सकती है। ना जी ना, जे ना बोल पाती है। परले साल सामने वाले अंकल जी ने गूंगे बहरे स्कूल में दाखिला करवा दिया था, इसका भाई भी वहीं जाता है। गोल गोल आंखें घुमाकर मामी बता रही। पानी, खाना, सोना, जाना, ऐसे शब्दों में कुछ का उच्चारण तो कुछ ठीक था, कुछ नाक की आवाज से अस्पष्ट था। मैंने उसकी मामी से कहा, जो मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, कि आप लोग इसे अभ्यास कराओ, ये बोल सकती है। बहन जी, किसके पास इतना टाइम है, घर का कामकाज करें या इसके साथ माथा पच्ची, उसकी नानी बोली। गूंगे बहरो को स्कूल भेज तो दिया है, यही क्या कम है, घर के सब काम कर लेती है, इशारों से अपने भाई बहन से बातें भी कर लेती है, और क्या चाहिए। मामी उंगली नचाते हुए बोली। मुझे उस दर्जी की याद आ गई जिसने मेरी पार्टी फ्रॉक सिली थी। जब मैं छोटी थी, स्कूल में स्टेज पर ड्रामा करने के लिए मुझे फ्रिल वाली फ्रॉक पहननी थी, तो मैं सिलाई के लिए नुक्कड़ के दर्जी के यहाँ गई थी। काफी उम्र के दाढ़ी वाले अंकल मुझे आज भी अच्छे से याद हैं। जब उन्होंने नाप ली तो मैंने उनसे कई बार पूछा, अंकल अंकल, मेरी फ्रॉक कब सिलकर मिलेगी। वो कोई उत्तर ना देते। मुझे लगा था शायद मुंह में पान है इसलिए ये बोल नहीं पाते हैं। कुछ देर बाद वो चार उंगलियों के इशारे से मुझे समझाने लगे। उनके हाव भाव से मुझे डर लगने लगा था। फिर मैं दूसरे आदमी को देखने लगी जो गोल चश्मा लगाए हुए थे और क्रोशिया से बनी गोल टोपी पहने हुए थे। वो बटन टांकने में व्यस्त थे, लेकिन बीच बीच में नजरें उठाकर मेरी ओर देखते थे। बोले, बेटी ये बोल नहीं सकते, गूंगे बहरे हैं। इस छोटी उम्र में ही मुझे लगा था कि दुनिया में किसी की कैसी भी हालत हो, रोजी रोटी कमाना मुश्किल नहीं है। कितने ढेर सारे रंग बिरंगे तरह तरह की पोशाकें इनकी दुकान में टंगी हैं। ये सुन और बोल भी नहीं पाते, फिर भी कितना काम कर रहे हैं। ये मिसाल देकर मैंने कुकी की मामी को समझाया, कल को कुकी बड़ी होगी, समाज में कैसे कैसे लोग हैं, इसमें आत्मविश्वास जगाइए, आप एक ही काम कीजिए। मिसेस शर्मा की ओर इशारा करते हुए मैं बोली, इनकी शरण में से खूब अच्छी सिलाई कढ़ाई सिखवाइए, जरूरतमंद की भगवान भी सहायता करता है, जहाँ चाह वहाँ राह होती है, एक दिन इसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेडीज टेलर की दुकान खोलकर अपने पैरों पर खड़ी हो, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकेगी। उसके सिर पर हाथ रख शुभकामनाएं देकर मैं घर लौट आई।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नेहा कक्कर से उनकी कहानी कोकिला। सर्जना में अब सुनिए कृष्ण कुमार कनक से काव्य पाठ।
2: आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में जीवन के आशावाद को लेकर लिखा गया ये गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है।

रखी स्वप्न साकार करने की है कामना। चाहते हो सफलता की सीढ़ी चढ़ो,

रखी। और जीवन क्या है? अपने कर्मों को ही अपना दर्पण करें, इसलिए कुछ सुखों का समर्पण करें। लालसा कुछ भी पाने की तब ही रखें, अपने दाता को सब कुछ समर्पण करें। अपने दाता को सब कुछ समर्पण करें। घर की दीवारें परिपूर्ण हो जाएंगी, घर की दीवारें परिपूर्ण हो जाएंगी। अप

उंगलियां। और गीत का अंतिम पंक्ति, जीवन आशावाद के साथ जीना चाहिए, हमें कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में निराशा को गले नहीं लगाना चाहिए। कि मार्ग में साथ कोई चले ना चले, पर तुम्हारा इरादा न हरगिज़ टले।

संभलने की हिम्मत रखी है लकीरों से पहले, तभी उंगलियां भाग्य से पूर्व प्रभु ने भी मेहनत रखी स्वप्न।

मोड़ी है। और गीत का अंतिम बंद, किसी भी साहित्यकार को या कलमकार को कभी निराश नहीं होना चाहिए, निराशा का संदेश भी नहीं देना चाहिए। उस आशावाद को समेटे हुए गीत का अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ। धीरज रखे मन में, बीतेगी एक दिन अंधेरी विभा। धीरज

अभी आप सुन रहे थे कृष्ण कुमार कनक से काव्य पाठ, साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम सर्जना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, ये वक्त है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का, तो आइए इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं वायलिन वादन शंभू दयाल श्रीवास्तव से राग बागेश्वरी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शंभू दयाल श्रीवास्तव से राग बागेश्वरी में वायलिन वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

पीटीएम वेव 196.1 मीटर था 1523 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। अभी कुछ ही देर में हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे जहां से आप सुनेंगे समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी
1: जी विषय पर अपनी बात।
2: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
3: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर आंदोलन

0: और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
2: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा स्थापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। किटरोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहली 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। यूनियन मिनिस्टर डॉ जितेंद्र सिंह हैज अपील्ड टू द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स ऑफ द एनईईटी पेपर लीक इश्यू टू कम फॉर टॉक्स, सेइंग गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशंस ऑन ऑल इश्यूज। टॉकिंग टू मीडिया द मिनिस्टर सेड that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
0: सरकार की ओर से चर्चा